फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 21वीं तिथि, तदनुसार 12 अगस्त 2026 इस समय 5:57 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब आरंभ होता है।

0: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 6 बजे अब समाचार होंगे।
1: ये थी आगे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के विषय में जानकारी। 5:59 हो चुके हैं। अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की पहली अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने इसे कल ही पारित कर दिया है। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है।
1: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी

0: घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायंफ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुए लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन और तेज करने की घोषणा की थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने शेयर बाजारों को वित्तीय नतीजों को जमा करने संबंधी अपने विनियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध ऋण साधन वाले नगर पालिकाओं की समय सीमा में छूट दी है। कल जारी किए गए नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध नगर पालिकाओं को अब बिना ऑडिट वाले पहली छमाही के नतीजे 60 दिनों के भीतर जमा करने होंगे, जबकि पहले ये समय सीमा 45 दिन की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई नहीं बदल सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है।
2: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में जो वहां पर मानवाधिकार का हनन हुआ, जिस प्रकार से लोग मारे गए, एक बार फिर से इस बात को उजागर करता है। और जहां तक लोगों के मानवाधिकार के पक्ष को गारंटी करने की बात आती है, उसमें पाकिस्तान को बहुत कुछ करना है। और हमको लगता है कि जो अभी हाल ही के हिंसा में इतने लोग मारे गए हैं, उस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंता करने की जरूरत है और साथ ही साथ में पाकिस्तान को जवाबदेही ठहराए जाने की जरूरत है।
1: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करुण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 6:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए चिंतन।
4: प्रभु की इस अनुपम सृष्टि में मानव जाति के अनेक गुणों में से एक दिव्य गुण मुस्कुराहट भी है। किसी शिशु बच्चे से लेकर बीच के सभी उम्र के लोगों, यहाँ तक कि बड़े बूढ़ों तक की मुस्कुराहट किसे प्रिय नहीं लगती। मुस्कान ईश्वर प्रदत्त मानव मात्र के लिए एक अनमोल उपहार है। मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी खिले हुए गुलाब अथवा कमल के फूल से कम नहीं होता। इसलिए प्रबुद्ध जनों ने कहा है कि सदैव मुस्कुराते रहो। हंसी अथवा मुस्कुराहट कई तरह की होती है। अलग अलग संदर्भों में इसके कई स्वरूप देखने को मिलते हैं। हंसना व हंसाना किसी कला से कम नहीं है। हंसी के प्रकारों में जैसे मंद मंद मुस्काना, सुसुप्त शिशु की मुस्कान, स्वाभाविक मुस्कान, सामान्य हंसी, खिलखिलाकर हंसना, ठहाका लगाकर हंसना, व्यंग भरी मुस्कान और मूर्खों को देखकर आई हंसी इत्यादि, और भी हंसी के अनेक प्रकार हो सकते हैं। हंसने से मन प्रसन्न और स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा फेफड़ों को अधिक प्राणवायु मिलती है, जिससे रक्त शुद्ध

मनुष्य के अंदर दिन भर की थकावट, अनेक प्रकार के तनाव से ग्रसित जीवन, छोटी मोटी बीमारियां, मन का दुख आदि हंसने से सब दूर हो जाते हैं। हंसने से मनुष्य निश्चित रूप से अपने आप को प्रसन्नचित, स्वस्थ व तनाव मुक्त महसूस करता है। अब सवाल यह है कि हंसा कैसे जाए व हंसी कब आती है। हंसने के लिए दो चार या उससे भी अधिक लोगों के समूह में जब हम स्वस्थ मनोरंजन के लिए आपस में वार्तालाप करते हैं, तब किसी के द्वारा हंसी का कोई संवाद ऐसे लहजे में बोल दिया जाता है कि पास बैठे शेष सभी लोग हंस पड़ते हैं। बात पर इतनी तेज व लंबे समय तक हंसी आती है कि हंसी रुकती ही नहीं, बल्कि बार बार हंसी आती है। यहां तक कि हंसते हंसते पेट में बल पड़ने लगते हैं। चलचित्रों, टीवी सीरियल, प्रहसन, नाटक, सर्कस, मूर्ख सम्मेलन इत्यादि देखने में भी कई जगह ऐसे संवाद और अभिनय के एक्शन मात्र मानव मन को हंसाने के लिए पर्याप्त होते हैं और हंसने वाले को स्वाभाविक रूप से हंसी आ जाती है। अपने इतिहास में व्यंग हंसी का सबसे सटीक उदाहरण शायद ही कहीं मिले। द्रौपदी के द्वारा दुर्योधन के महल में प्रवेश होने व जलकुंड में गिर पड़ने पर जोर से हंसी व संवाद पांडव दल को कितना महंगा पड़ा, जिसका इतिहास साक्षी है। अनेक बार हंसी खुशी व प्रसन्नता देने के बजाय बैर, घृणा, विवादों और झगड़ों में परिणित हो जाती है, जिससे मानव को बचने की सदैव कोशिश करनी चाहिए ताकि हंसी का उजला पक्ष बेमानी होने से बचाया जा सके। हंसाने का मुख्य प्रयोजन किसी दुखी मन को या सामान्य जन को खुशी प्रदान करने का होना चाहिए। इसी में हंसने व हंसाने वाले की सार्थकता है। आजकल के व्यवसायी युग में हंसाने के लिए बड़े बड़े शहरों में अनेक जगह लॉफिंग क्लब खोले गए हैं, जहां प्रशिक्षित लोगों के द्वारा तनाव युक्त दुखी मन वाले, थके हारे लोग, मन बहलाने वाले लोग क्लबों में फीस देकर कुछ देर के लिए हंसी का आनंद लेने के लिए, जहां उनको तरह तरह से हंसाकर उनका भरपूर मनोरंजन किया जाता है, वहीं पर नए लोग प्रशिक्षण भी प्राप्त करते हैं। अनेक ऐसे प्रसंग आए हैं जहां मंद मंद मुस्कान व ठहाके वाली हंसी का प्रदर्शन राजा जनक के धनुष यज्ञ में हुआ है। जो राजा लोग अपने आप को महान बलवान समझकर अति गर्व से उठते हैं और धनुष को उठाना व तोड़ना तो दूर, किंतु तिल भर भी हिला न सके, बल्कि उठाने के लिए अधिक जोर लगाने पर स्वयं ही दूर जाकर गिर पड़ते हैं, तब अन्य सभासद खूब ठहाका लगाकर देर तक हंसते हैं। इसी प्रकार कई राजाओं ने वहां अपनी जमकर हंसी करवाई है। उनमें से एक रावण भी था। अंत में श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र और राजा जनक की आज्ञा पाकर व नमन कर मन ही मन अपने इष्ट भगवान शंकर को नमन कर मंथर गति से मंद मंद मुस्कुराहट के साथ चलते हुए धनुष के पास पहुंचते हैं। वह क्षण मात्र में देखते ही देखते धनुष को उठाकर तोड़ देते हैं, जिससे घोर गर्जना होती है। वह धनुष यज्ञ पूरा होने की खुशी में शंख व बाजा बजने लगते हैं। तब दंभी राजाओं को छोड़कर सारा समाज हंसी खुशी

अभी आप सुन रहे थे चिंतन। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर 6:10 हुए हैं। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना, जिसमें आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में भक्ति गीत। संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम, और मैं निशा भारद्वाज आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, वंदे मातरम केवल एक गीत नहीं है, बल्कि ये तो भारत की आत्मा का अमर स्वर है। और अब जबकि इस गीत ने 150 वर्षों का एक लंबा सफर तय कर लिया है, तो और भी जरूरी हो जाता है कि हम इसके बारे में अधिक जानें, अधिक समझें। तो इस बारे में हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं विश्व भारती विश्वविद्यालय से प्रोफेसर मनबेंद्र नाथ साहा।
1: नमस्कार। इस गीत की महत्व तो सब भारतीयों के लिए बहुत ज्यादा है, अब सभी जानते हैं। ये गीत 1875 7 नवंबर बंकिम चंद्र ने लिखा है। हमारा नेशनल गीत है वंदे मातरम। बंकिम चंद्र एक चिंताविद थे और एक नोवेलिस्ट थे। ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस ओकेशन ऑफ अक्षय नवमी, विच वॉज ऑन 7 नवंबर 1875, ये गीत बंकिम चंद्र ने लिखा। उसके बाद वंदे मातरम फर्स्ट अपीयर्ड इन द लिटरेरी मैगजीन, जो बंकिम चंद्र ने ही संपादना किया था, बंगा दर्शन पर पब्लिश हुआ था 1818। ये भी आप जानते हैं कि ऋषि अरविंदो ने गीत का अंग्रेजी अनुवाद किया है, जिसका नाम था मदर आई गो टू दी। कवि गुरु रविंद्रनाथ 1937 में इसका सुरारोप किया, उसके पहले पहला सुर दिया जदू भट्टो ने। सुर मीन्स इस गीत का धुन बनाया जदू भट्टो। उसके बाद हम जानते हैं कि 1896 पर जब कलकत्ता में नेशनल कांग्रेस हुआ, पहली बार पब्लिक मंच पर ये गीत गाया था, और उसी दिन से या उसी टाइम से गीत का पहला लाइन पॉलिटिकल स्लोगन बन गया, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई में एक नारा बन गया ये गीत। बंकिम चंद्र केवल नोवेलिस्ट नहीं थे, उन्होंने एक इतिहास चेतना की प्रवक्ता थे, जिस चेतना जाति संगठन के लिए एक बड़ी बात है। बंकिम चंद्र वॉज ए नेशन बिल्डर, नॉट ओनली ए नोवेलिस्ट। प्रख्यात चिंताविद रमेश चंद्र दत्त ने कहा, द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century। बंकिम चंद्र को ग्रेटेस्ट मैन ऑफ 19th century कहा गया। बंकिम ने जीवन के हर मोड़ पर हर सच की संधान की। और एक बात है कि बंकिम चंद्र इस गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में किया था, जब बंकिम चंद्र मुर्शिदाबाद में कलेक्टर था। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं मुर्शिदाबाद जिला से बिलोंग करता हूँ। बंकिम के अंदर देश के लिए प्यार था, उनके अंदर तीव्र अत्याभिमान भी था। इस अभिमान की एक्सप्लोरेशन हुआ इस गीत में। बंकिम, मैंने पहले ही कहा कि एक नोवेलिस्ट नहीं थे, एक ऋषि भी थे। He was the pioneer of स्वदेश पूजा। On 1876, वेस्ट बंगाल की हुगली जेला में गोपालचंद्र धर नामक एक व्यक्ति वंदे मातरम गीत देश मल्लार धुन में गाया था। और मैंने बोला कि 1871 में गीत का परिकल्पना मुर्शिदाबाद जिला में हुआ। वंदे मातरम हमारा गर्व है, स्वदेश को आगे बढ़ाने के लिए ये गीत हर वक्त हमारा आदर्श होगा। रविंद्रनाथ टैगर ने उनकी घरे बायरे नामक जो नॉवेल है, उपन्यास है, उसमें एक कैरेक्टर है निखिलेश। निखिलेश ने बोला, देश उसी को है जो देश को प्यार करते हैं। जन्म लेने से देश हमारा नहीं हो जाता। बंकिम चंद्र के अंदर में देश के लिए एक अभिमान थे। उस अभिमान से ये गीत 1875 आज के दिन लिखा गया था। उसके बाद जब आनंदमठ उपन्यास पब्लिश हुआ 1882 में, तब उसका गीत का प्रचार हुआ। उसके बाद ये गीत हमारा नेशनल गीत हुआ। तो मैं

0: ये कहूंगा कि आज के दिन देशभक्ति, देश के लिए प्रेम, देश के लिए स्वाभिमान होना चाहिए। और अगर हम इस बात को दिल में रखें तो बंकिम के प्रति वही होगा सच्चा श्रद्धा। सबको मेरा नमस्कार, बंकिम चंद्र जी के लिए मेरा प्रणाम।
1: इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर मनवेंद्र नाथ साहा जी। और इसी के साथ मैं निशा भारद्वाज लेती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

0: लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 6:30 हुए हैं, लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम कृषि मंच, जिसमें आज का विषय है गेंदा फूल की खेती।
1: राम राम किसान भाई हो, हमन आज गेंदा के खेती के बारे में चर्चा करबो आप मन से। हमर छत्तीसगढ़ में और हमर रायगढ़ क्षेत्र में गेंदा के खेती ला हमन बहुत आसानी से कर सकत हन। एकर लिए कुछ विशेष खर्चा करे के आवश्यकता भी नहीं रहे। हमन खुला वातावरण में गेंदा के खेती ला बहुत अच्छा से कर सकत हन। गेंदा दो तरह के होते विशेष रूप से, एक पीला नारंगी गेंदा जिला हमन खेचा गेंदा करके छत्तीसगढ़ी में जानथन, और दूसरा होते चंदैनी गेंदा। तो पीला वाला गेंदा नारंगी गेंदा के पौधा हा सीधा ज्यादा बढ़ते, और जो चंदैनी गेंदा है वह फैलते ज्यादा। त एकर लिए मैं आप मनला उचित किस्म बताना चाहता हूँ हमार क्षेत्र के लिए। एकर लिए हमन पूसा बसंती गेंदा, पूसा नारंगी गेंदा, पूसा दीप, छत्तीसगढ़ गेंदा वन और पंजाब गेंदा वन, कलकतिया, ये सब ला हमन बहुत अच्छा से लगा सकत हन। हमार क्षेत्र के लिए बहुत उचित है। और चंदैनी गेंदा के लिए हमन पूसा अर्पिता वेराइटी ला उपयोग कर सकत हन। जैसे आप मल्ला खेत के लिए मैं बताना चाहूँ, एकर लिए बलुई दोमट मिट्टी है बहुत अच्छा होते, और पानी के अच्छा निकास रहे ऐसे जगह ला हमन ला चुनाव करना चाहिए। बुआई के लिए जैसे हमन बारिश के सीजन ला चयन करत हन, त हमन ला जून जुलाई या अगस्त सितंबर ला चयन करना चाहिए। और ठंड के लिए सितंबर अक्टूबर में हमन ला रोपाई करना चाहिए, और साथ ही साथ गर्मी में भी हमन लगा सकत हन। एकर लिए हमन ला फरवरी के महीना ला चयन करना चाहिए। किसान भाई हो, हमन ला एकर लिए उपयोग करना चाहिए कि 1.5 किलो, 1 से 1.5 किलो बीज है हमार 1 हेक्टेयर के नर्सरी यानी कि 2.5 एकड़ के लिए पर्याप्त होते। तो अगर बीज से हमन लगाना चाहतन तो हमन ला नर्सरी तैयार करना चाहिए, 21 से 25 दिन में तैयार हो जाते, और एला हमन कटिंग से भी लगा सकत हन ताकि जल्दी फूल प्राप्त हो सके। हमन ला बीज ला 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से जरूर उपचार करना चाहिए, ताकि कोई भी फफूंद बीज या मिट्टी के द्वारा पौधा ला नुकसान झन कर सके। हमन ला बारिश के सीजन में जैसे गेंदा लगाना है तो मिट्टी जरूर चढ़ाना चाहिए, ताकि जल भराव की स्थिति न हो, नाली के माध्यम से पानी है निकल जाए और हमर पौधा के बढ़वार हा बहुत अच्छा हो। 30 से 45 दिन के जो फसल है उमा खरपतवार के समस्या ज्यादा रथे, हमन ला बीच बीच में निंदाई गुड़ाई करना चाहिए। एकर उपज के लिए हमन ला कुछ उर्वरक के जरूरत पड़ते। एकर लिए हमन ला 120 से 150 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, और 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर फास्फोरस, और साथ में 60 से 80 किलोग्राम पोटास के उपयोग करना चाहिए। एकर से हमर जो फूल के खेती है बहुत अच्छा होही।

0: किसान भाई हो, अभी खरीफ में जो हमन गेंदा के खेती करथन ओकर उपयोगिता बहुत अच्छा है, बाजार में मांग बहुत अच्छा है, काबर की अभी सभी त्योहार के सीजन आते, गणेश चतुर्थी, दशहरा और दुर्गा उत्सव और साथ ही दिवाली, तो हमला एकर बिक्री के लिए बिल्कुल चिंता नहीं करना चाहिए। बाजार में एकर रेट बहुत अच्छा रहते, 40-50 रुपया से लेके त्योहार के समय में 100 रुपया 150 रुपया तक एकर रेट चले जाते। किसान भाई हो, मैं आप मल्ला बताना चाहता हूँ कि ये जो हमार गेंदा है एकर खेती से हमला 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ में कम से कम 100 से 150 क्विंटल फूल के उत्पादन प्राप्त होते। हमन एकर से बहुत अच्छा लाभ कमा सकथन। साथ ही हमन खेत में लगाए के साथ साथ पॉली बैग में भी हमन लगा सकथन गेंदा ला, और ओकर से भी हमन फूल बेच के अच्छा आय प्राप्त कर सकथन।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम कृषि मंच। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 MHz पर। 6:35 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद 6:40 पर सुनेगा रामचरितमानस। देश गान का प्रसारण होगा 6:50 पर। चित्रपट संगीत का आप आनंद ले सकेंगे 7:05 पर। प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा का समय होगा 7:35 पर। लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मादर हम आपके लिए लेकर आएंगे 7:45 पर। फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकरंजनी का समय होगा 8:20 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा 9:00 से। कार्यक्रम सुगम संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:10 पर। फिल्मी गीतों की फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय होगा 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा 11:00 से।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, जिसके प्रायोजक हैं सीएफ वन विभाग सरगुजा, का प्रसारण किया जाएगा शाम 5 बजे। पॉप टाइम का समय होगा 5:10 पर। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का समय होगा 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय है उत्पादक और सकारात्मक सोच से बनेगा एक बेहतरीन विश्व, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। साथ ही सुनिएगा क्रम घटना चक्र, क्रम तरणों की पसंद। फिल्म संगीत का आप आनंद ले सकेंगे शाम 6:20 पर, साथ ही शाम 7 बजे। किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल का समय होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय है पशुओं में बाजपन के कारण एवं निवारण। आज की नसीहत में सुनिएगा कृषि रसायनों की खरीदी प्रयोग में सावधानी आवश्यक। साथ ही सुनिएगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव, आज का मौसम। संसद समीक्षा आप सुन सकेंगे दिल्ली केंद्र से रात्रि 8 बजे। चपाल के शेष भाग का समय होगा 8:15 पर। फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा 8:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा रात 9 बजे से। संसद में प्रश्नकाल के रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा रात 10 बजे। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

महामर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 6:40 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए रामचरितमानस। कलाकार हैं रविंद्र साठे, श्रीकांत पारगांवकर, संगीत संयोजन है सतीश भाटिया का।

परशुराम और लक्ष्मण के वाक युद्ध से स्थिति बिगड़ती देख श्री राम ने ऋषि की क्रोधाग्नि को शांत करने के लिए क्षमा याचना की। बालक यदि चपलता भी करते हैं तो गुरुजन तथा माता पिता के हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, अतः समदर्शी सुशील धैर्यवान तथा ज्ञानी मुनि होने के नाते उन्हें इस अबोध दुधमुहे बच्चे को क्षमा कर देना चाहिए। किंतु तभी लक्ष्मण ने मुनि को एक बार फिर छेड़ा। खड़े खड़े मुनिवर के चरण दुख गए होंगे, सो उन्हें क्रोध त्याग कर बैठ जाना चाहिए। यदि टूटा हुआ धनुष उन्हें इतना ही प्रिय हो तो किसी गुणी को बुलवाकर उसे जुड़वा देने का उपाय करना चाहिए। स्थिति गंभीर होते देख राजा जनक समेत उपस्थित जन आतंकित और भयभीत हो गए। श्री राम के शीतल वचन सुनकर परशुराम जी ने कहा, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ, किंतु ये मन का मैला और शरीर से वैसा ही सुंदर है जैसे विष से भरा सोने का कलश। श्री राम ने एक बार फिर उनका क्रोध शांत करने के उद्देश्य से उन्हें सच्चाई से अवगत कराया कि वो नाहक ही उस बालक पर क्रोध कर रहे हैं। वास्तविक दोषी तो स्वयं राम है और जिस प्रकार भी मुनि का क्रोध समाप्त हो वो सभी उपाय करने को तत्पर हैं। किंतु मुनि का क्रोध दूर भी हो तो कैसे, लक्ष्मण तो अब भी उन्हें टेढ़ी दृष्टि से

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर 6:50 हुए हैं। अब प्रस्तुत है देशगान समूह स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे देशकान समूह स्वर में, हम आकाशवाणी के रैगड़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 6:55 होने को है। थोड़ी ही देर में समाचार होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: कर्तुं प्रावधानमस्ति। विधेयकस्यास्य विषये भाषमाणः गृहराज्यमन्त्री नित्यानन्दरायः अवोचत् यत् गतवर्षे केरलविधानसभया राज्यस्य नाम केरलमिति कर्तुं केन्द्रसर्वकाराय अनुरोधप्रस्तावः पारितः आसीत्। तेनोदीरितं यत् मलयालम भाषायां राज्यस्य नाम केरलमिति अस्ति, परं संविधाने एतत् केरल इति लिखितमासीत्। राज्यसभया राष्ट्रिय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयकमपि पारितम्। सहकारिता राज्यमंत्री मुरलीधर मोहिल इत्यनेन उपस्थापितं विधेयकं निगमस्य गतिविधीन् औद्योगिक पण्येषु अपि विस्तारयितुम् अनुमतिं ददाति। उभे अपि विधेयके नीट विप्रतिपत्तिमधिकृत्य विपक्षस्य कोलाहलमध्ये चर्चां विनैव पारिते। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य पूर्व राजस्थान ओडिशा प्रभृति प्रदेशेषु अतिवृष्टेः पूर्वाभासः प्रकटीकृतः। पंजाब उत्तराखण्ड गुजरात क्षेत्रेषु अपि अतिवृष्टिः सम्भाव्यते। आन्ध्रप्रदेश झारखण्ड कर्णाटक प्रदेशेषु विद्युत्पात झंझावाताभ्यां सह अतिवृष्टिपरा सञ्चेतना च प्रसारिता। राष्ट्रिय राजधान्यां तावत् देहल्यां सायंकाले मेघाच्छादनेन सह मन्द वृष्टिः सम्भाव्यते। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। गृहमंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। विधेयक के अंतर्गत संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। लोकसभा ने कल ही इस विधेयक को पारित कर दिया था। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। वहीं लोकसभा में खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और उसे पारित करने की प्रक्रिया होगी। कल विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों ही सदनों की कार्यवाही एक बार फिर बाधित रही। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया है। संसद परिसर में उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा को तैयार है।
2: राहुल गांधी जी कई दिनों से गृह मंत्री अमित शाह का जवाब मांग रहे हैं सदन में। अब जब सरकार तैयार है, गृह मंत्री जी पूरे घटनाओं का बहुत डिटेल में जवाब देने के तैयार है, फिर राहुल गांधी जी भाग रहे हैं। मैंने इसलिए सदन में कहा कि भागना नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माई लाइफ माई स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को संबोधित भी करेंगे। ये आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जीवन की यात्रा का एक अत्यंत व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में व्यापक पौधारोपण अभियान की शुरुआत करेंगे। श्री चौहान की अपील पर वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देशभर के हजारों सदस्य भी अपने अपने गांवों और शहरों में पौधारोपण अभियान चलाएंगे। इस अवसर पर देशभर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। नागरिकों से अपील करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। उन्होंने कहा कि देश के हर त्योहार के पीछे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जीवन को बेहतर बनाने का संदेश छिपा होता है। झारखंड में भाजपा के आह्वान पर बंद के चलते राज्य के कई हिस्सों में कल जनजीवन प्रभावित रहा। रांची में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पुरानी विधानसभा से नई विधानसभा की ओर मार्च करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोककर हिरासत में ले लिया। इस बीच झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों का आंदोलन कल 18वें दिन भी जारी रहा। विधानसभा घेराव के दौरान हुई लाठीचार्ज और झड़प के बाद छात्र नेताओं ने आंदोलन को और तेज करने की घोषणा की थी। भारत ने दोहराया है कि अरुणाचल

0: प्रदेश भारत का विभाज्य तथा अभिन्न अंग है और इस निर्विवाद वास्तविकता को कोई भी बदल नहीं सकता। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि चीन के साथ मजबूत संबंधों के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। श्री जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर मानवाधिकारों का हनन हुआ है। कर्कटिका वावू के अवसर पर आज सुबह सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने कर्कटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांतिमोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग का कहना है कि पंजाब, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 7:05 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट संगीत, जिसमें सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह नेहा कक्कर की आवाज़ में यारिया 2 फिल्म का ये गीत।

0: ना कोई मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
3: कार्यक्रम चितपट संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रेया घोषाल, जुबिन नौटियाल की आवाज में धड़क 2 फिल्म का ये गीत।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप

0: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।
1: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे तुषार जोशी की आवाज में जग्गा जासूस फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, तर्ज बनाई है प्रीतम ने।

0: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्रेया घोषाल की आवाज में पुष्पा 2 फिल्म का ये गीत।
2: पत्थर है वो मुझे रोक टोक।

0: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राज बर्मन की आवाज में मिशन मजनू फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा रोहित शर्मा ने, तर्ज बनाई है राघव सच्चर ने।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा।

0: महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
2: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज और
3: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
4: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर,
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन।
0: मन का सुकून, दिल की आरती,
1: सुरीली संदली।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 7:35 हुए हैं। प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम झरोखा।

नमस्कार दोस्तों, आज के कार्यक्रम झरोका में मैं हूं आपकी मित्र अनुपमा। दोस्तों, युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होते हैं। जिस देश में युवा जागरूक, शिक्षित, मेहनती, आत्मविश्वासी होते हैं, उस देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। युवा केवल देश का भविष्य नहीं है, बल्कि आज की शक्ति और कल की उम्मीद है। उनके विचारों में नई सोच है, हाथ में ऊर्जा है और आंखों में बड़े सपने हैं। दोस्तों, हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य युवाओं की समस्याओं, उनकी क्षमता, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, तकनीक और समाज में उनकी भूमिका पर ध्यान देना है। आज का समय तेजी से बदल रहा है। मोबाइल, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक ने हमारी जिंदगी का तरीका ही बदल दिया है। दोस्तों, ऐसे समय में युवाओं के हाथों में अगर तकनीक के साथ सही ज्ञान भी हो तो वे देश की तस्वीर बदल सकते हैं। दोस्तों, आज का युवा तकनीक से बहुत अच्छी तरह से परिचित है। मोबाइल पर पढ़ाई करना, ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करना, डिजिटल भुगतान करना, नई भाषा सीखना, ऑनलाइन काम करना, ये सब अब सामान्य बात हो गई है। दोस्तों, लेकिन केवल मोबाइल चलाना या इंटरनेट का इस्तेमाल करना ही तकनीकी ज्ञान नहीं है। असली बात यह है कि हम तकनीक का इस्तेमाल अपने ज्ञान और विकास के लिए कैसे करते हैं। अगर एक युवा इंटरनेट का इस्तेमाल नई चीजें सीखने के लिए करता है, ऑनलाइन कोर्स करता है, नई तकनीक सीखता है और अपने हुनर को दुनिया तक पहुंचाता है, तो यह तकनीक उसके लिए सफलता का रास्ता बन सकती है। दोस्तों, गांव का युवा भी इंटरनेट के माध्यम से दुनिया से जुड़ सकता है। वह खेती की नई तकनीक सीख सकता है, ऑनलाइन व्यापार शुरू कर सकता है, अपने उत्पाद बेच सकता है और घर बैठे रोजगार के नए अवसर खोज सकता है। इसलिए आज जरूरत है कि हमारे युवा तकनीक के उपयोगकर्ता ही नहीं बल्कि तकनीक के निर्माता भी बने। तकनीक हाथ में होना अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ सही ज्ञान होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज सोशल मीडिया पर बहुत सारी जानकारी उपलब्ध है, लेकिन दोस्तों, हर जानकारी सही हो ये जरूरी नहीं। युवाओं को चाहिए कि वे किसी खबर को बिना जांचे आगे ना बढ़ाएं, अफवाहों और गलत सूचना से बचें। इंटरनेट का इस्तेमाल सोच समझ कर करें और अपनी डिजिटल सुरक्षा का भी ध्यान रखें। ज्ञान हमें सही गलत में अंतर करना सिखाता है। दोस्तों, शिक्षा हमें अपने अधिकारों, जिम्मेदारियों को समझाती है। इसलिए युवा जितना तकनीकी रूप से मजबूत हो, उतना ही उन्हें विचारों, ज्ञान के स्तर पर भी मजबूत होना चाहिए। आज देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसमें युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है।

नौकरी की तलाश करने वाला युवा अगर अपने कौशल के आधार पर रोजगार देने वाला बन जाए तो इससे न केवल उसका जीवन बदलेगा बल्कि कई लोगों को भी रोजगार मिलेगा। आज युवा स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, छोटे व्यवसाय कर रहे हैं, खेती में नई तकनीक अपना रहे हैं, ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों में नए प्रयोग कर रहे हैं। हमें युवाओं को केवल यह नहीं सिखाना चाहिए कि नौकरी कहाँ मिलेगी बल्कि उन्हें यह भी सिखाना चाहिए कि मैं अपने हुनर से अपना काम कैसे शुरू कर सकता हूँ। यही सोच आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। हाथों में हो तकनीक और ज्ञान, युवा बढ़ाएं देश की मान। आंखों में हो सपनों के रंग, मेहनत से भर दे जीवन के अंग। नई सोच से राह बनाएं, मुश्किल से भी ना घबराएं। गांव शहर को साथ बढ़ाएं, भारत को ऊंचाई तक ले जाएं। इसी मंगल कामना के साथ अनुमति दीजिए अपनी मित्र अनुपमा को और सुनिए ये प्यारा सा गीत।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम चरोखा। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7:45 हुए हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम बाजी मांदर, जिसमें सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं रजनी रजक की आवाज में गाया ये गीत।

कुमान सिंह यादव और लता खापड़े के गाए इस गीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम बाजे मांदर अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7:55 हुए हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम के बारे में। 8:30 पर सुनेगा फरमाशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। कार्यक्रम सुगम संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:10 पर। फिल्मी गीतों के फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश का समय होगा 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा सुबह 11 बजे से।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, जिसके प्रायोजक हैं सीएफ वन विभाग सरगुजा, का प्रसारण होगा शाम 5 बजे। पॉप टाइम का समय होगा 5:10 पर। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युववाणी का समय होगा 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय है उत्पादक और सकारात्मक सोच से बनेगा एक बेहतरीन विश्व, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। साथ ही सुनिएगा क्रम घटना चक्र, क्रम तरणों की पसंद। फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे शाम 6:20 पर, साथ ही शाम 7 बजे। किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल का समय होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय है पशुओं में बाजपन के कारण एवं निवारण। आज की नसीहत में सुनिएगा कृषि रसायनों की खरीदी एवं प्रयोग में सावधानी आवश्यक। साथ ही सुनेंगे आप आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव, आज का मौसम।

0: किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल का समय होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय है पशुओं के बाँझपन के कारण निवारण। आज की नसीहत में सुनिएगा कृषि रसायनों की खरीदी प्रयोग में सावधानी आवश्यक। साथ ही सुनिएगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव, आज का मौसम, संसद समीक्षा हम आपके लिए लेकर आएंगे 8:00। चौपाल का शेष भाग सुनिएगा 8:15 पर। फिल्म संगीत का आनंद ले सकेंगे 8:30 पर। संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण होगा 10:00। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने को अब समाचार होंगे।

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। लोकसभा में खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा का विमोचन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी। और राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में करण सिंह, शेरजिन शांतिमोल और तनिष्का खत्री ने नाइजीरिया में स्वर्ण पदक जीते। और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज राज्यसभा में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 पेश करेंगे। राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर भी विचार और उसे पारित करने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
5: केरल नाम परिवर्तन विधेयक का उद्देश्य संविधान की पहली अनुसूची में राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करना है। इस संबंध में केरल विधानसभा ने जून 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि मलयालम में राज्य को केरलम के नाम से जाना जाता है, जबकि संविधान की पहली अनुसूची में इसका नाम केरल दर्ज है। इस बीच खान और खनिज विकास और विनियम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य खान और खनिज अधिनियम 1957 में संशोधन करना है। इस विधेयक का उद्देश्य देश के बढ़ते महत्वपूर्ण खनिजों की मांग को पूरा करने के लिए भारत के खनन क्षेत्र को अधिक प्रभावी, निवेश के अनुकूल और सक्षम बनाना है। दिलनशी आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा ट्रायम्फ ऑफ द इंडियन रिपब्लिक माय लाइफ माय स्ट्रगल्स का विमोचन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक सभा को भी संबोधित करेंगे। यह आत्मकथा पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीवन यात्रा का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। ये पुस्तक उन मूल्यों, अनुभवों और परिस्थितियों की जानकारी देती है जिन्होंने उनकी यात्रा और सार्वजनिक सेवा को आकार दिया। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। एक रिपोर्ट।
6: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देश भर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। नागरिकों से आग्रह करते हुए श्री चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने वाला त्योहार है। श्री चौहान ने कहा कि प्रकृति के प्रति कृतज्ञता

0: का केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं की जानी चाहिए बल्कि वृक्षारोपण के माध्यम से भी प्रदर्शित की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पौधा लगाना केवल पर्यावरण संरक्षण का कार्य ही नहीं है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, संरक्षित और सुंदर भविष्य की नींव रखने का भी एक तरीका है। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज सुबह भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना करेंगे। ये रैली स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और मजबूत करना है। रैली में बड़ी संख्या में युवा, स्वयंसेवी संगठन और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अभियान के अंतर्गत देशभर के लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करने का आह्वान किया जाएगा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने आज सुबह मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री मांडविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ इस रैली का नेतृत्व किया। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि इस रैली से पूरे देश में फिटनेस का संदेश जाएगा।
2: दिल्ली में माय भारत के 1000 से अधिक वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा के द्वारा देश को फिटनेस का संदेश दिया है। कोई भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनना है तो देश के नागरिक स्वस्थ रहे बहुत आवश्यक है। साइकिलिंग ये फिटनेस का संदेश है, पोल्यूशन का सॉल्यूशन है। चलो हम सब लोग हमारी तिरंगा की आन बान और शान के लिए, देश के युवा फिट रहे, इस हेतु को सिद्ध करने के लिए साइकिलिंग करते रहे।
1: जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलवर्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रैली का नेतृत्व किया जिसमें हजारों विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और समाज के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हुए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य सरकार जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए एक विधेयक लाने की योजना बना रही है। बांकुरा में कल पश्चिमांचल उन्नयन परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जल्द ही एक समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में युवाओं, विशेषकर जेन जी से जुड़ने और कविता के जरिए उनके विचारों को समझने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रंग दे बसंती कैंपेन कल शुरू हुआ और ये 14 अगस्त तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा।
3: कल रात प्रयागराज की हिंदुस्तानी अकादमी में अपनी कविताओं के माध्यम से माफिया संस्कृति पर निशाना साधा। कार्यक्रम समन्वयक विश्वदीप शुक्ला ने बताया कि वीर रस और ओज रस की कविताओं के माध्यम से युवा पीढ़ी की भावनाओं को समझने वाले 8 कवियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रख्यात गीतकार डॉक्टर विनम्र सेन सिंह और अंतर्राष्ट्रीय कथाकार आचार्य शांतनु जी महाराज ने की। अगला कार्यक्रम आज लखनऊ में आयोजित किया जाएगा। कल मुजफ्फरनगर में कॉमिक्स वितरण और संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा जो युवाओं को जोड़ने के लिए कई रचनात्मक माध्यमों को एक साथ लाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: झारखंड में JPSC JSSC परीक्षार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन में प्रवेश कर गया है। विद्यार्थी कथित परीक्षा अनियमितताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, CBI जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। छात्रों ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगें पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज वैज्ञानिक और पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर विक्रम साराभाई को उनकी जयंती पर स्मरण किया। श्री बिरला ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर साराभाई का मानना था कि विज्ञान को केवल प्रयोगशालाओं तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए बल्कि इसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए। कर्कटिका

0: के अवसर पर आज सुबह केरल में हजारों श्रद्धालुओं ने पितृतर्पण देना शुरू किया। हिंदू परंपरा में मलयालम महीने करकटम की अमावस्या को दिवंगत आत्माओं की शांति और आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अनुष्ठान करने का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। अधिकांश मंदिरों में यह अनुष्ठान सुबह 3:30 बजे से 5 बजे के बीच शुरू हुए। समाचार सेवा प्रभाग की विशेष श्रृंखला पर्सन बिहाइंड द स्टोरी के अंतर्गत आगामी कड़ी में आज हम दुनिया के पहले तीनों सेनाओं के महिला नेतृत्व वाले समुद्र यात्रा अभियान का हिस्सा रहीं विंग कमांडर विभा सिंह, स्क्वाड्रन लीडर वैशाली भंडारी और मेजर प्राजक्ता पी निकम से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता इस कार्यक्रम को न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल सुबह 9:10 से किया जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों, सिक्किम, हिमालयी पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, पश्चिम मध्य प्रदेश, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कोंकण, गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रुक रुक कर जारी है, जिसके चलते कई स्थानों में सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। मंडी जिला प्रशासन ने भारी बारिश के कारण भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे के दृष्टिगत मंडी कुल्लू राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 और मंडी जोगिंदर नगर राष्ट्रीय उच्च मार्ग 154 पर यातायात बीती रात से ही पूर्णतः बंद रखा है। 45 विद्युत ट्रांसफार्मर जबकि 82 पेयजल योजनाएं भी प्रभावित है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने आज प्रदेश के 6 जिलों कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई जिलों में आज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।
2: मौसम विज्ञान विभाग ने आज उड़ीसा में व्यापक बारिश का अनुमान लगाया है, जिसमें ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बछौरे पड़ने की संभावना है। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे इलाकों में ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण आज उसी क्षेत्र में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इस सिस्टम से उड़ीसा में बारिश की गतिविधि बढ़ने की उम्मीद है। IMD ने अनुगुल और केंदुझर जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की है। मछुआरों को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: नाइजीरिया के लागोस में आयोजित राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक जीतने का शानदार सिलसिला जारी रखा है। करण सिंह और शेरजिन शांति मोल ने कल रात सीनियर पुरुष स्पर्धाओं में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीते। ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर सबसे ऊपर छाई खबरें हैं। झारखंड में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जारी नोकझोंक। और हाल ही में फुकेट से नई दिल्ली आ रहे एयर इंडिया विमान में अस्थिरता की जांच में सामने आई कुछ नई बातें। लोकसत्य की पहली सुर्खी है पक्ष विपक्ष का आमने सामने प्रदर्शन, संसद में हंगामा। नवभारत टाइम्स ने इसी खबर को सचित्र प्रकाशित करते हुए शीर्षक दिया है ऐसे भिड़े सांसद हो गई धक्का मुक्की। जनसत्ता में इस खबर का शीर्षक है संसद परिसर में सत्ता पक्ष विपक्ष के सांसद आमने सामने, भारी हंगामा। पिछले सप्ताह फुकेट से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के अचानक 300 फुट नीचे आने के मामले में हुई जांच को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए जनसत्ता ने शीर्षक दिया है मारिहुआना के प्रभाव में था पायलट। जबकि अमर उजाला की सुर्खी है एयर इंडिया पायलट गांजा के नशे में था, सहयोगी उड़ा रहा था विमान। पत्र ने पायलट एसोसिएशन द्वारा रखे पक्ष को भी शीर्ष समाचार में जगह देते हुए लिखा है टर्बुलेंस मामले में पायलट एसोसिएशन ने कहा हाइड्रोलिक में खराबी से हुई घटना। दैनिक भास्कर ने मतदाताओं को लुभाने के लिए कुछ राज्यों में बांटे जा रहे उपहारों के मुद्दे को अपनी संपादकीय लेख का विषय बनाया है और शीर्षक दिया है कम से कम गरीब राज्य तो रेवड़ी संस्कृति से दूर रहें।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 8:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी।

फरमाइशी लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंजनी में मैं हूं आपकी दोस्त अनुपमा। नमस्कार मित्रों, छत्तीसगढ़ की माटी की अपनी एक अलग खुशबू है, अपनी अलग पहचान है और इसी पहचान को और खूबसूरत बनाता है हमारा लोक पर्व हरेली। सावन के फुहारों के बीच जब खेतों में हरियाली लहराती है, चारों ओर प्रकृति मुस्कुराती है, तब छत्तीसगढ़ में हरेली का त्यौहार बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। तो आइए इस हरेली के अवसर में अपनी छत्तीसगढ़ माटी की खुशबू को गीतों में महसूस करें और सुनते हैं ये एक प्यारा सा फरमाइशी गीत, जिसके लिए हमें ईमेल और पत्र प्राप्त हुए हैं आप सभी के। मिठ्ठू मुड़ा दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास गेंदू भाई, सोंडूर नगरी से भूपेंद्र नाग पूर्णिमा, तरुणदीप नाग, संभाजी नगर से राजेश राजदीप शीतल पाटिल, नांदघाट से माखन वर्मा चांदनी राहुल गोपी भूपेश दीपेश, नांदघाट से भागसिंह राजपूत भाग्यश्री टिकेश्वर रितु राजपूत, सालेहोना जिला सारंगढ़ भिलाईगढ़ से गजानन निषाद अनुराधा आदित्य यज्ञेश निषाद, हटौत बाजार लाहौर से कमलनाथ पटेल राकेश कुमार पटेल समीर राजकुमारी, भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस अनिल कुमार अजीत कुमार आयुष नंदनी जंगेल, धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित शकुन आरुषि आदित्य अंजलि, कर्मा चौक कवर्धा से अशोक कुमार साहू ललेश्वरी खुशान निशान, चांदनी चौक गड़ई पंडरिया से पवन कुमार प्रभा देवी लक्की विक्की रानू रविंद्र रौनक सेन। साथ ही हमें कुछ मित्रों के पत्र प्राप्त हुए हैं। बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम कुसुम प्रोनिका प्रोनामिका उत्कर्ष नेताम, बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन मधु हिमांशु अंकित देवांगन, महासमुंद से सुभाष शर्मा छाया शर्मा कुमुदनी ओंकार शर्मा। सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत, गायक है रमेश ठाकुर।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। सावन की फुहार आई, संग अपने हरेली लाई, हरे भरे खेत मुस्काए, किसान के चेहरे खिल जाए, माटी की खुशबू मन को भाए, गेड़ी चढ़े मन इतराए। छत्तीसगढ़ की यही निशानी, हरेली में बसती है इसकी कहानी। हर नागर की पूजा होगी, हर आंगन में खुशियां होंगी, माटी खेती प्रकृति का मान, हरेली है छत्तीसगढ़ की शान। दोस्तों, हमें अगला ईमेल प्राप्त हुआ है हमारे इन फरमाइशकर्ताओं का, मदनपुर कवर्धा से श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू, सहसपुर से छोटकू साहू, लोकेश, रामकिशन, दुलीचंद, सतीबाई, सत्यम, मोहित, राम साहू। महामाया चौक मेघापारा से ईमेल प्राप्त हुआ है राम कुशल पटेल, संतोषी, दीपांशु, दिव्या, मिलन यादव, राम सिंह मरावी, राज मरावी, बागबहरा बदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा, कौशल सेन, रोहांसी पलारी से श्यामलाल साहू, युवराज, कुर्राम, धरसीवा से जितेंद्र साहू, बिंदु साहू, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल, राधिका, अनिश्का, तन्मय, बिलाईगढ़ से

रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल, धमनी, राजीम से, समीलाल धीवर, मुन्नी, गोविंद, ममता, कुणाल, युवांश धीवर, बमलेश्वरी, साकरा, सोमनी जिला, राजनंद गांव से, नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय, रुदांश प्रताप, नेहा देवी, दिवेंद्र प्रताप साहू, भाटापारा से, विष्णु पूरब साहू, वीरा, हर्ष, कुमकुम, योगेश्वरी साहू। कुछ मित्रों के हमें पत्र प्राप्त हुए हैं। इंद्रानगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानू, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ, नईम राजा। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीलाल, रेखा देवी, श्रीवास्तव। दुर्ग से पोषण, चंद्रकिरण, प्रीति, छाया मंचोर। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, क्यार साहू, अश्वनी वर्मा, गणेश मिस्त्री। सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत। गायक हैं ध्रुवाराम मरकाम, दुखियाबाई।

मित्रों, हरेली हमारे किसान भाई बहनों के लिए विशेष महत्व रखती है। खेती किसानी में उपयोग होने वाले औजारों की पूजा की जाती है, पशुधन के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है और घर आंगन में सुख समृद्धि की कामना की जाती है। गांव में गेड़ी का आनंद, हरेली के पारंपरिक गीत इस त्यौहार की रौनक को और बढ़ा देते हैं। आपके पसंदीदा फरमाइशी कार्यक्रम लोक रंजनी में अब हम लेने जा रहे हैं हमारे बहुत सारे मित्रों से प्राप्त हुए मेल। ये मेल है जुनवानी दुर्ग से सुरीत रमेश साहू, तारा विद्या, जितेंद्र किशन साहू, हिरेंद्र नीलकंठ साहू, सुनीता ऋषिवन, चंद्रहास संजीव, त्रिलोक साहू, मास्टर रंजीत राजा जी, नवागांव बालो से चंद्रभान हिरवानी, फुलेंद्र नमेंद्र हिरवानी, रानीगांव जिला धमतरी से खिलेश चित्रलेखा, शुभम सेजल साहू, डोंडी लोहरा से डोमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी चंचल कामेश माहिर नेताम, कन्नेवाड़ा से देवेंद्र सुनवानी, राहुल बंटी, आशीष वेद प्रकाश, जशु तामर, दादू गीतिका, गुटकू से भगतराम पटेल किशन, सोनम मानवी पटेल, पिपरिया कबीरधाम से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार किशन, इंद्राणी माया साहू। कुछ पत्र हमें प्राप्त हुए हैं इस गीत को सुनने की फरमाइश की है। बालो से शिव कुमार अंगारे, अंजनी लीना, अंशुमाला, आशुतोष अंगारे, धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता अर्चना, अरुणा अनुराधा अल्पना, रायपुर से छनूलाल यादव, अनुराग अभिषेक अलका नामिका बलदाऊ, रानू खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव, सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत सारथी, वीरेंद्र ब्रजकांत सारथी बेमित्रा से, नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा। सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत। गायक है लता माया खापरडे, रमेश ठाकुर।

आप सुन रहे हैं फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। आपके पसंदीदा कार्यक्रम में अब हम लेने वाले हमारे इन मित्रों के पत्र, जिन्होंने हमें पत्र भेजा है खेरता बाजार से, डोंडीहारा बालो से, जितेंद्र दास मानिकपिरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश, धनवंतरी बाई, मोतिम बाई, साथ ही और ही मित्र हैं रॉबर्टसन, दर्रा मुड़ा से लंबोदर प्रसाद, तरुण कुमार, पीयूष कुमार, आर्यन, रूप बसंत, लक्ष्मण, देवा पटेल, सीताराम निषाद, फैलेंद्र कुमार, सुरेंद्र कुमार, हेमंत कुमार, तुलाराम, मानस, लखीराम, डोंडी लोहारा बालो से देवशंकर, अजय, तुषार, तामुरिया, डॉली, बेबी पूजा, प्रभा देवी, बन भगेरा जिला राजनांदगांव से योगेश शारवा, आशा, नीरज, नीलेश, अंजलि शारवा, गौशाला पारा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना, नेहा, यशु, अंशु गुप्ता, झूलेलाल कॉलोनी रायगढ़ से लक्ष्मण बाधवानी, विमला, मास्टर हर्ष, खुशी, शुभम, कन्हैयालाल लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, आरू साहू। सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

हरेली आई, खुशियां लाई, धरती ने हरियाली सजाई, खेत खिले और मन मुस्काए, सावन अपने रंग दिखाए। हरेली का पर्व सुहाना, प्रकृति ने पहना नया तराना, पत्ते झूमे डाली गाए, सावन खुशियों के रंग सजाए। आओ मिलकर पेड़ लगाए, धरती को फिर हरा बनाए, हरियाली का यही संदेश, प्रकृति बचाए खुशियां पाए। हरियाली के इस पावन अवसर पर हमें जिन मित्रों के मेल और पत्र प्राप्त हुए उनके पसंद के हम गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये मित्र हमारे हैं दतरंगी से विश्राम, पार्वती, प्रतिमा, रीना, लक्ष्मी, यदु, नूतन साहू, महासमुंद से अदालत दास, वैष्णव, मानस, सावी, रीचा, गायत्री, भीषम दास मानिकपुरी, बिलाईगढ़ से खीकराम देवांगन, रजनी, प्रियंका, रेणु, जया रानी, भाटापारा से दानसी रावत, पद्मनी, शुभम, सौरभ, नीरज रावत, पलारी से डागेश्वर राम साहू, नूतन, घनश्याम, अलका, जानवी साहू, भिलाई से सुशील, कल्पना, सैया, सौरभ, सौर्य, शुभम जैन, दुर्ग से ही जैनी, नेहा वर्दे, और साथ ही हमें और भी मित्र के पत्र प्राप्त हुए हैं। सरंगपाल कोस्टापारा जुड़वा चौक से भेजने वाले हमारे मित्र हैं भागवत, पदुम, देवांगन, सुनैना, पिंकी, गीता, यश, प्रियांशी, तन्वी, नीता, सरस्वती, पुन्नी, अमित, नोमेश, युवराज, रामचंद, देवांगन। साथ ही हमें मेल प्राप्त हुए हैं पीपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से दिवेश, पूनम वर्मा, ज्योति, शिवान। सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत, गायक है पंचराम मिर्जा, कुलवंतिन बाई।

हरेली की हरियाली खुशहाली के साथ अब अनुमति दीजिए अपने मित्र अनुपमा को। आप स्वस्थ और मस्त रहें और सुनते रहें अपना पसंदीदा फरमाइशी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंजनी। हमें भेजते रहिए अपने मेल और पत्र। अगले फिर कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 9 बजे है। अब विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।

0: श्रोताओं, गांधी चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं महात्मा गांधी के संस्मरण मेरे समकालीन का धारावाहिक पाठ। इसी क्रम में आज सुनिए अब्बास
1: पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति के लिए साक्षात्कार।

0: दिल धड़कने दो, ये था फिल्म का नाम। याशिता शर्मा, शंकर महादेवन और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी, यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहासे हुजूर।
0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक विविध भारती से।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये था फिल्म का नाम। फरहान अख्तर और साथियों की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। जावेद अख्तर ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर की आवाजों में गीत वजीर फिल्म से अभी आपने सुना। रोचक कोहली का संगीत था, गुरप्रीत सैनी और दीपक रमोला ने इसे लिखा।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले।

शान और श्रेया घोषाल की आवाजों में गीत आप पीके फिल्म से सुन रहे थे। स्वानंद किरकिरे ने इसे लिखा, शांतनु मोइत्रे का संगीत। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं संपन्न होता है।

विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।

0: किसने कहा है यशोदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
1: संगीतकार रविंद्र जैन।
0: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

आज के फनकार कार्यक्रम में बातें उस अभिनेत्री की जिसने फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय, अपने नृत्य और अपनी खूबसूरती से हंगामा मचा के रखा था।

चार बरस की थी श्रीदेवी जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार थुनैवन नामक फिल्म में काम किया था और इसके बाद बतौर बाल कलाकार उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। वो बेबी श्रीदेवी के नाम से जानी गई और केरला स्टेट का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला और आगे चलकर कई तरह के अवार्ड्स श्रीदेवी को मिले। फिर फिल्म जूली आई जिसमें श्रीदेवी ने अभिनेत्री लक्ष्मी की छोटी बहन का किरदार निभाया था। सन 1976 बतौर हीरोइन श्रीदेवी ने फिल्म संसार में कदम रखा तमिल फिल्म मुंडुरु मोडीचू के जरिए। निर्देशक थे महान निर्देशक के बालचंदर। दक्षिण भारत में श्रीदेवी का एक बड़ा ही जबरदस्त और कामयाब करियर रहा है, लेकिन यहां हम उस करियर की बातें नहीं कर रहे, हमें तो भाई हिंदी फिल्मों की बातें करनी है। तो आइए सन 1979 पर आते हैं जहां श्रीदेवी ने बतौर हीरोइन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखा। फिल्म थी सोलवा सावन।

इसकी 4 साल बाद श्रीदेवी ने जैसे मुंबईया फिल्म जगत में तहलका ही मचा दिया। ये फिल्म थी हिम्मत वाला। श्रीदेवी के हीरो थे जितेंद्र।

फिल्म हिम्मत वाला ने जबरदस्त धमाका किया। इस फिल्म के गाने बहुत चले, ये फिल्म भी बहुत चली और इसके बाद श्रीदेवी भी हिंदी सिनेमा में खूब खूब चली। आइए उस दौर की कुछ और फिल्मों की बातें की जाएं। फिल्म तोहफा।

इसके बाद जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी ने उस दौर की कुछ नामी फिल्मों में काम किया। एक छोटी सी झलक इन गानों की, फिल्म मवाली। माना, माना।

मिस्टर इंडिया एक कल्ट फिल्म बन गई और इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने ये गाना भी गाया था पर्दे पर, जिसे असल में गाया कविता कृष्णमूर्ति ने।

जब मिस्टर इंडिया की बात हो तो एक गाने की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सरोज खान की कोरियोग्राफी वाला गाना फिल्म मिस्टर इंडिया।

0: सन 1989 में ही श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म में काम किया। इस फिल्म पर यश चोपड़ा बरसों बरस से काम कर रहे थे और आखिरकार कई हीरोइनों के नाम की संभावनाओं की खबरों के बीच ये तय हो गया कि श्रीदेवी ही हैं यश चोपड़ा की
1: चांदनी। ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
0: जब फिल्म चांदनी की बात हो तो भला इस गाने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है।

सन 1992 श्रीदेवी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण साल बन गया। इस साल श्रीदेवी अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। फिल्म थी खुदा गवाह।

साल 1993, श्रीदेवी की एक ऐसी फिल्म आई जिसे बहुत लोग आज याद नहीं करते। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही थी, रूप की रानी चोरों का राजा। इसके बाद श्रीदेवी संजय दत्त के साथ धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म गुमराह में नजर आईं। निर्देशक थे महेश भट्ट। सन 1994 में श्रीदेवी अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला में दिखी। सन 1997 फिल्म आई जुदाई। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर थे।

0: इसके बाद श्रीदेवी ने जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी रचा ली और वो फिल्म संसार से लंबे समय तक दूर हो गईं। लंबे समय तक फिल्म संसार से दूर रहने के बाद श्रीदेवी ने रुपहले पर्दे पर वापसी करने का मन बनाया। साल 2011 में आई गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश।
1: सॉरी, माय वाइफ्स इंग्लिश इज नॉट वेरी गुड, सो
2: मेरा केविन, दिस मैरिज इज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट इज द मोस्ट स्पेशल फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप ऑफ टू पीपल हु आर इक्वल। लाइफ इज अ लॉन्ग जर्नी मेरा, समटाइम्स यू विल फील यू आर लेस केविन, समटाइम्स यू विल ऑल्सो फील यू आर लेस देन मेरा। Try to help each other to feel equal. It will be nice.
0: इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई।

0: कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ की लोक और जनजाति विरासत की विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बस्तर संभाग में आज से शुरू होगी बस्तर तिरंगा यात्रा। और छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली आज राजधानी

0: रायपुर सहित प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक और जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस स्वागत समारोह एट होम में विशेष स्थान मिला है। भारत की स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के जीवंत लोक तथा पारंपरिक कला परंपराओं के माध्यम से सांस्कृति, समुदाय और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को रेखांकित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की ओर से गेड़ी और मड़िया नृत्य प्रमुख आकर्षण होंगे। छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लगभग 35 कलाकार विभिन्न लोक नृत्यों और पारंपरिक संगीत प्रस्तुतियों में भाग लेंगे। समारोह की संगीत प्रस्तुति को भारत की विविध लोक परंपराओं की एक सांस्कृतिक यात्रा के रूप में तैयार किया गया है। इसकी शुरुआत बस्तर के पारंपरिक अनुष्ठानिक परंपराओं पर आधारित मंगल धुन से होगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बस्तर संभाग में आज से बस्तर तिरंगा यात्रा की शुरुआत होगी। तिरंगा यात्रा आज नारायणपुर से प्रस्थान कर दंतेवाड़ा पहुंचेगी। इसके बाद कल 13 अगस्त को दंतेवाड़ा से बीजापुर के लिए प्रस्थान करेगी। वहीं 14 अगस्त को यह यात्रा बीजापुर से प्रस्थान कर आवापल्ली, उसूर, कलगम, ताड़ापाला होते हुए कुर्रे गुटालू पहाड़ी पहुंचेगी, जहां इस यात्रा का समापन होगा। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि तिरंगा यात्रा बस्तर के अति संवेदनशील और माओवाद प्रभावित रहे इलाकों से होकर गुजरेगी। उन्होंने बताया कि बस्तर संभाग के 90 से अधिक गांवों में आजादी के बाद पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाएगा। यात्रा के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा प्रमुख 31 स्थानों पर पहुंचेंगे, जहां माओवादियों ने जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया था। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सावन माह की अमावस्या को मनाए जाने वाले हरेली पर्व पर किसान अपने कुल देवता और खेती में उपयोग किए जाने वाले औजारों की पूजा कर रहे हैं। हरेली पर्व पर आज सुबह 10 बजे से नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हरेली अमावस्या के अवसर पर आज बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में पाठ यात्रा पूजा विधान के साथ 75 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत होगी। इस दौरान पारंपरिक मांझी चाल की मेंबर मेम्बरिन, पुजारी, पटेल, नाइक, पाइक और सेवादार रथ निर्माण के लिए औजार बनाने ठुरलू खोटला रस्म अदा करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। श्री चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देशभर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। देश भर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का सामूहिक संकल्प लिया गया है। बस्तर के दरभा में कल 3 दिवसीय हरेली बर्ड फेस्टिवल का शुभारंभ वन मंत्री केदार कश्यप ने किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन पक्षी संरक्षण, पर्यावरण जागरूकता और इको टूरिज्म को बढ़ावा देगा। कार्यक्रम में मानव हाथी द्वंद को कम करने के लिए गज संकेत मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। वहीं राजधानी रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में नारायणपुर और धमतरी के किसानों तथा स्व सहायता समूहों को औषधीय पौधों की खेती के लिए 54,36,000 रूपये की अग्रिम प्रोत्साहन राशि वितरित की गई। इस अवसर पर वन मंत्री ने कहा कि औषधीय पौधों की खेती किसानों की आय बढ़ाने का प्रभावी माध्यम है। उत्तर छत्तीसगढ़ में आज गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर और इससे लगे क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ की लोक और जनजातीय विरासत की विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बस्तर संभाग में आज से शुरू होगी बस्तर तिरंगा यात्रा और छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेशभर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 10 बजे हैं। आइए अब आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी ही देर बाद 10:10 पर सुनेगा सुगम संगीत। फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश हम आपके लिए लेकर आएंगे 10:30 पर। विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसार

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट, जिसके प्रायोजक हैं सीएफ वन विभाग सरगुजा, का प्रसारण होगा शाम 5 बजे। पॉप टाइम का समय होगा 5:10 पर। युवा श्रोताओं के कार्यक्रम युवाणी का समय होगा 5:30 पर, जिसमें आज की बात का विषय है उत्पादक और सकारात्मक सोच से बनेगा एक बेहतरीन विश्व, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। साथ ही सुनिएगा क्रम घटना चक्र तरणु की पसंद। फिल्म संगीत का पानन दे सकेंगे शाम 6:20 पर, साथ ही शाम 7 बजे। किसान भाइयों के कार्यक्रम चौपाल का समय होगा 7:20 पर, जिसमें आज की बात का विषय है पशुओं में बाजपन के कारण एवं निवारण। आज की नसीहत में सुनिएगा कृषि रसायनों की खरीदी व प्रयोग में सावधानी आवश्यक। साथ ही सुनिएगा आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव, आज का मौसम। संसद समीक्षा का समय होगा रात 8 बजे। चौपाल का शेष भाग सुन सकेंगे 8:15 पर। फिल्म संगीत हम आपके लिए लेकर आएंगे 8:30 पर। विविध भारतीय कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा रात 9 बजे से। संसद में प्रश्नकाल के रिकॉर्डिंग का प्रसारण दिल्ली केंद्र से होगा रात 10 बजे से। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

कार्यक्रम संबंधी सूचना सुनिए दिनांक 9/3/2025 को मेडिकल कॉलेज रायगढ़ से मर्ग संबंध में डॉक्टर द्वारा लिखित तहरीर पर थाना चक्रधर नगर रायगढ़ में बिना नंबरी मर्ग कायम कर पंचनामा कार्यवाही कर शव को ससम्मान कफन दफन कराया गया है। घटना क्षेत्र खरसिया होने से डायरी प्राप्त किया गया है। मृतक गोविंद राम चौहान उम्र 60 वर्ष का ग्राम कुनकुनी के हर मोहल्ला में आसपास गांव में वारिशान का कोई जानकारी नहीं मिली है। मृतक का हुलिया ऊंचाई करीबन 5 फीट 3 इंच, रंग सांवला, सिर पर बाल नहीं है, पतला दुबला है, शरीर में भुजंग रंग का कुर्ता सफेद रंग का पैजामा पहने हुए पाया गया है। सूचना सुनिए। एक अज्ञात पुरुष उम्र 60 से 70 वर्ष बड़े डुमरपाली के अंबेडकर नगर नहर पार के पास मृत अवस्था में पड़ा है। पता चला है कि उक्त मृतक चपले आसपास के गांव में भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था। शरीर से वृद्ध कमजोर है। सूचना पर थाना करसिया के मर्ग क्रमांक 64/2025 चाककर पंचनामा कार्यवाही कर जांच की जा रही है। उक्त अज्ञात मृतक पुरुष के संबंध में अभी तक वारिसान का कोई जानकारी नहीं मिली है। मृतक का हुलिया है, ऊंचाई करीबन 5 फुट, रंग सांवला, सिर में सफ़ेद बाल हैं, दाढ़ी में सफ़ेद लंबे बाल हैं, शरीर में भगवा रंग का टी शर्ट पहना हुआ पाया गया है। सूचना समाप्त हुई है।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल

0: और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज और
6: सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
7: मुझे याद सब है जरा जरा,
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
3: सुरीली संदली।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

हम आकाशवाणी के रैकेट केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 10:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत, जिसमें सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं गुलाम अली की गाई ये गजल, जिसे लिखा मीर तौकी ने, तर्ज बनाई है गुलाम अली ने।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती।
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती।
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता।
1: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत।
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट।
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हंसी का हवा महल। बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले।
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग।
3: सखी सहेली।
1: बॉम्बे टॉकीज और
4: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
5: मुझे याद सब है जरा जरा।
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
0: मन का सुकून दिल की आरती।
1: सुरीली संदली।
6: कार्यक्रम सुगम संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की गाई ये गजल, जिसे लिखा है चिराग जयपुरी ने, तर्ज बनाई है अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन ने।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम

0: ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com shrotarayagarh यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: कार्यक्रम सुगम संगीत में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भूपिंदर सिंह की गाई ये गजल, जिसे लिखा है नसीम अख्तर ने, तर्ज बनाई है भूपिंदर सिंह ने।

इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले की आवाज़ में नया दौर फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा साहिर ने, तर्ज बनाई है ओपी नैयर ने।

इस गीत को सुनने की फरमाइश की है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, ताजपुर मोरवा से कारी राय, मीना पुंजराज आर्यन, आकर्षण आरती, पिंकी रिंकी, नीतू मोहम्मद फारूक, ललन मिश्रा, ढोली साकरा से जयंत कुमार पैरागी, धरसीवा से छेदुलाल यादव, सीता अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से चन्नूलाल यादव, अनुराग अभिषेक, अलका नामिका, बलदाव यादव, रानू खुशी, प्रवीण साहू, सीएल यादव, छत्रपति संभाजी नगर से राजेश, राजदीप, राशि, शीतल पाटिल। सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: कोई मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
0: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं। काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, आशा भोसले मन्नाडे की आवाज़ में सीता और गीता फिल्म से, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, तर्ज बनाई है RD परमन ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है भाटापारा दत्तरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, जावेंद्र कुमार वर्मा, बेमित्रा से सुरेश, पूर्णिमा सारथी, नवागढ़ कटे से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत सीमा, शारदा दामिनी वर्मा, दुर्गा चौक रायगढ़ से केनलाल श्रीवास, बिहारी पटेल, नरेंद्र साहू, संतोष श्रीवास, दिलीप साहू, गेंदू भाई, रिंगनी, छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। सुनते हैं आप सबकी पसंद का ये गीत।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का

0: और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़।
1: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
2: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
2: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
6: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में सेहरा फिल्म का ये गीत, जिस तरीका हसरत जयपुरी ने तर्ज बनाई है रामलाल ने, इस गीत को सुनने की फरमाइश की है। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, रेखा देवी, बंसी लाल, श्वेता देवी, सुरुचि, दीशा, लंबी श्रीवास्तव, शिवाजी चौक राजीम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य और क्रिश श्रीवास्तव, दतरंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, पिपरिया से दुर्गाराम साहू, कौशाला परा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना नेहा, यशु अंशु गुप्ता, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव, बलविंदर जैतक, मीका बैरक। सुनते आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: कार्यक्रम आपकी फरमाइश में अब हम आपको सुनवाने जा रहे लता मंगेशकर की आवाज में रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है वर्मा मलिक ने, तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश की है कौशाला पारा रायगढ़ से विनोद कुमार गुप्ता, रीना नेहा, यशु अंशु गुप्ता, दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल शिवास, बिहारी पटेल, नरेंद्र साहू, संतोष शिवास, दिलीप गेंदू भाई, केवटा पारा रायगढ़ से मालती पार्वती, अनमोल, मीनू निषाद, इंदिरानगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम राजा।

0: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर 11 बजे हैं। अब विविध भारती कार्यक्रम का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से किया जाएगा।
1: दोस्तों नमस्कार, रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज का रंग तरंग कार्यक्रम विशेष है। इस कार्यक्रम में आज हमने एक ऐसे कलाकार को आमंत्रित किया है जिनके गाने सुनते ही आपके पांव थिरकने लगते हैं, होठ संग संग गुनगुनाने लगते हैं। तो अब आपको बता दें, वो हैं जाने माने गायक, संगीतकार, पियानो वादक अदनान सामी। तो आइए सुने गायक, संगीतकार और पियानो वादक पद्मश्री अदनान सामी से यूनुस खान की बातचीत।
2: बहुत बहुत स्वागत विविध भारती में अदनान जी, और मुझे ये बताएं कि इतना लंबा सफर म्यूजिक की दुनिया में तय करने के बाद भी जब कोई नया गाना रिलीज होता है, क्या चल रहा होता है आपके दिल में?
3: वही चल रहा होता है जो पहले दिन चला था। मतलब कि जिस तरह की बटरफ्लाईज या गुदगुदियां अपने पेट में पहले दिन से थी, शुरू से
2: जी,
3: वो आज भी बरकरार है और आज भी उतनी शिद्दत के साथ होती है और नर्वसनेस होती है, बेचैनी होती है कि हमारी जो

0: मेहनत है वो लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी, और बस यही दुआ रहती है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वो लोगों को पसंद आए। अब तक लोगों ने बेतहाशा प्यार दिया है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बस दुआ ये है कि मैं उनकी जो उम्मीदें होती हैं उन पे मैं ठीक तरह से उतरूँ और उनको वो चीज़ें मैं दूँ। तो आज भी उतनी नर्वसनेस होती है, इसलिए जब मेरी नए गाने की जो वीडियो जब आप देख रहे थे, तो मैं जब आपकी आपके रिएक्शंस सुन रहा था, तो मैं उसी तरह से बेचैनी के साथ सुन रहा था जैसे कि मैं पहली दफ़ा कर रहा हूँ। क्योंकि हर दफ़ा जब आप कोई चीज़ करते हैं तो कोशिश ये होती है कि कोई अलग सी चीज़ करें, कोशिश करते हैं कि नई चीज़ करें, और उसके तहत कुछ पता नहीं होता कि लोगों को जो देख रहा होता है या सुन रहा होता है कि उनको वो चीज़ पसंद आएगी कि नहीं आएगी
1: जी।
0: तो और जितना एक और एक्स्ट्रा चीज जो होती है, जो जो शुरुआत में नहीं होती
1: जी।
0: जब शुरुआत में आप जब काम शुरू करते हैं तो कोई आपका कोई पिछला गाना नहीं होता जिसमें लोग बोले कि नहीं वो ज्यादा अच्छा था। वो पहला गाना जो होता है वो कहते हैं यार वाह क्या बात है, क्योंकि कोई पुराना गाना होता ही नहीं है जिसके साथ वो कंपेयर करें। लेकिन फिर जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाएं तो ये बहस शुरू हो जाती है कि कुछ लोग बोलते हैं नहीं यार ये बड़ा अच्छा था, और फिर कुछ लोग बोलते हैं नहीं लेकिन वो बात नहीं रही you know? या फिर वो बोलते हैं यार वो पिछला गाना ज्यादा बेटर था, you know,
1: तो खुद से मुकाबला होता है।
0: हाँ फिर इंसान खुद से ज्यादा मुकाबला कर रहा होता है
1: जी।
0: तो और क्या है कि एक तरफ से आप ये कहने की कोशिश कर रहे होते हो कि यार वो उस वक्त का था, उसके साथ मत कंपेयर करो। लेकिन मैं समझता हूँ लोगों के जज्बातों को भी कि क्योंकि नए गाने के ऊपर भी ये एक तरह की नाइंसाफी है, क्योंकि आप एक नए गाने को एक पुराने गाने जो आपके अंदर घुसा हुआ है
1: जी
0: पता नहीं कितने सालों से, जिसने वो एक मकाम बनाया हुआ है आपके पास, मैंने वो ओवरनाइट तो नहीं हुआ था
1: जी।
0: आज
1: जी।
0: अगर जिस तरह से लोग तेरा चेहरा के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि जी वाह क्या गाना है, लेकिन उसको भी वक्त लगा था
1: जी,
0: उसको भी वक्त लगा था क्या कहते हैं लोगों के दिमाग में बैठने के लिए। उस वक्त जब तेरा चेहरा आया तो उन्हें कुछ लोगों ने कहा नहीं भीगी भीगी रातों में ज्यादा बेहतर गाना था
1: जी।
0: तो मैंने कहा यार वो गाना जो है आपके अंदर आपके सिस्टम में सालों से बैठ गया है
1: जी,
0: ये नया गाना है इसको थोड़ा वक्त तो दो। अच्छा फिर वक्त के साथ साथ कुछ गाने जो हैं वो ज्यादा मकबूल हो जाते हैं
1: जी,
0: कुछ गाने जो हैं वो फेड आउट हो जाते हैं, यू नो। अब जैसे कि एक मजे की बात ये है कि मेरा गाना है नैन से नैन मिला, अच्छा जब वो रिलीज हुआ था तो किसी को समझ नहीं आई,
1: ओ
0: क्योंकि इट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फॉर एग्जाम्पल
1: व्हाट यू डू नॉर्मली।
0: हाँ मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कभी तो नजर मिलाओ, भीगी भीगी रातों में, तेरा चेहरा, मेरी याद रखना, एंड देन सडनली लिफ्ट करा दे
1: जी, बारिश
0: बारिश, एंड देन सडनली नैन से नैन आ जाता है जहां पे वो क्लासिकल भी है बीच में, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो वो शुरू शुरू में नहीं पसंद आया, लेकिन वो वक्त के साथ साथ इट बिकम अ काइंड ऑफ अ कल्ट सॉन्ग, वो बहुत पॉपुलर हो गए खासतौर पे डांस प्रोग्राम्स में एंड रियलिटी शोज में। तो वो कुछ गाने होते हैं जो बाद में अचानक उभर जाते
1: जी,
0: और कुछ गाने जो होते हैं वो फेड आउट भी हो जाते हैं। तो
1: ऐसे कौन से गाने हैं जो आपके दिल के करीब थे लेकिन पब्लिक से उतना खास रिस्पॉन्स शुरुआत में नहीं मिला लेकिन आपके दिल के करीब आज भी है?
0: दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई थिंक नैन से नैन
1: जी,
0: क्योंकि नैन से नैन
1: ये तो बेशक
0: हाँ मतलब कि नैन से नैन जब मैंने बनाया था
1: जी
0: तो मैं उस गाने पे बहुत उस वक्त उम्मीदों के साथ में बैठा हुआ था कि ये गाना जो है ये एकदम लोगों को पसंद आएगा, और वो उस वक्त नहीं पसंद आया इतना, क्योंकि लोग जो गाने उससे पहले रिलीज हुए थे वो उसी एल्बम के, पहले तेरा चेहरा था, फिर मेरी याद रखना, फिर चैन मुझे आए ना गाना था, अच्छा उसके बाद फिर नैन से नैन आया। तो क्या था कि वो एकदम अलग किस्म का गाना था इन कंपैरिजन टू द प्रीसीडिंग सॉन्ग्स, तो वो कहीं पे लोगों को झटका लगा, तो क्योंकि दे वर कंपेयरिंग इट एट दैट पॉइंट इन टाइम विद द अदर सॉन्ग्स, तो वो वहां उन जॉनर्स में वो फिट नहीं आ रहा था लेकिन मेरे दिल के बहुत करीब था। तो फिर बाद में तो मेरे अंदर थोड़ी सी मायूसी हुई क्योंकि मैंने कहा यार ये तो होना चाहिए, यू नो इसमें राग दरबारी है, ये तो बड़े करीब है हमारे हमारे म्यूजिक में, राग दरबारी के तकरीबन सारे गाने सुपरहिट रहते हैं, राग ही ऐसा है
1: जी।
0: तो आई वाज क्वाइट यू नो स्लाइटली डिसअपॉइंटेड, यू नो तो लेकिन मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा पर ठीक है, यू नो आई मीन जो हुक्म जनता का उसको तो सारा आंखों पर बंदा करता है, यू नो। तो कुछ सालों के बाद मैंने देखा कि इट वॉज सडनली गेटिंग रिवाइव्ड
1: राइट
0: एंड

0: it was getting revived from the reality shows. क्योंकि उसके अंदर रिदम जो था ना वो बहुत यूनिक किस्म का रिदम था
1: जी.
0: तो वो जो डांसर्स थे उनको बेहद पसंद आ रहा था क्योंकि वो इट लेंट इटसेल्फ टू अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ इंटरेस्टिंग डांस.
1: वाओ.
0: तो वहां से अचानक वो गाना जो था
1: वापस आ गया.
0: वो वापस आया और फिर इट बिकेम वेरी पॉपुलर.
1: बिल्कुल.
0: सो मच सो कि फिर और मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात क्योंकि एक होता ना एक वो जो एक निग्लेक्टेड बच्चा होता है वो अचानक जो है उसको अपनी जगह मिल रही है यू नो. तो देन आई हैड टू देन आल्सो इंक्लूडेड इनटू माय कॉन्सर्ट्स.
1: यस.
0: क्योंकि अक्सर इंसान कॉन्सर्ट्स जो है वो उन्हीं गानों को शामिल करता है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर होते हैं
1: जी
0: यू नो. तो उसकी अहमियत ऐसी हो गई थी फिर जिसकी वजह से वो फिर पॉपुलर हुआ.
1: जब आप आशा जी के साथ काम कर रहे थे
0: जी
1: तो वो किस तरह की आपकी कैफियत थी और उनसे जुड़ी कोई यादगार घटना हमारे साथ शेयर कीजिएगा.
0: देखिए जैसे मैंने अक्सर ये जिक्र किया है आशा जी का और मेरा जो रिश्ता था वो एक बहुत ही अलग किस्म का रिश्ता था. एक तरफ से वो मेरी माँ का दर्जा था
1: उनकी. इसकी शुरुआत कैसे हुई है?
0: सबसे पहली मेरी मुलाकात उनसे हुई थी तकरीबन 10-11 साल की उम्र में.
1: Oh.
0: I was a kid in London और वो और पंचम दा दोनों आए हुए थे. उनका कॉन्सर्ट था रॉयल आल्बर्ट हॉल में. तो जो रिकॉर्ड भी हुआ है
1: जी,
0: उसकी रिकॉर्डिंग भी है. तो मैं उस कॉन्सर्ट में था. तो जो ऑर्गेनाइजर्स थे उस कॉन्सर्ट के वो हमारे फैमिली के जानने वाले थे. तो मेरी अम्मी ने उनसे कहा कि देखो हम उनसे मिलना चाहते हैं. और उनको पता था कि यू नो बेटा जो है वो बहुत म्यूजिक में है एंड ऑल दैट. तो उन्होंने उस कॉन्सर्ट के बाद उन्होंने एक मुलाकात करवाई लंदन में क्योंकि वो कॉन्सर्ट के बाद दे वर जस्ट स्पेंडिंग फ्यू डेज एज अ हॉलीडे. तो मैं वहाँ पे गया अपनी वालदा के साथ. तो मैं म्यूजिक 5 साल की उम्र से मैं बजा रहा था. तो लेकिन उस वक्त मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में बजाता था. तो मैं अपनी कैसेट लेके गया हुआ था. कुछ रिकॉर्डिंग्स थी मेरी पियानो पे. तो आशा जी मिली. तो आशा जी को मैंने अपने पोर्टेबल मशीन पे मैंने उनको म्यूजिक सुनाया. उन्हें बेहद पसंद आया. तो उन्होंने कहा कि एक सेकंड ठहरो
1: पंचम
0: ये तो मैं पंचम को मनाती हूँ. ये तुमको पंचम को भी सुनाना पड़ेगा. मैंने कहा जी ठीक है. आई यूज टू लव आरडी बर्मन. बल्कि बचपन में हम जब लिस्बन में रहते थे तो वहां पे हिंदी फिल्में जब आती थी तो मैं बस ये ढूंढ रहा होता था. लोग अक्सर हीरोज या हीरोइंस को देख रहे होते थे. मैं ढूंढता था कि बर्मन नाम कहाँ पे है.
1: वाह वाह वाह.
0: अब बर्मन नाम है तो बस ठीक है मैं देखूंगा फिल्म. और वो यकीनन चाहे वो मुझे अभी तक याद है वहां पे मैंने अभिमान देखी. मैंने यादों की बारात देखी, दीवार देखी, शोले देखी, वहीं पे सब बर्मन. लेकिन मुझे एक उलझन थी कि यार ये SD और RD क्या है.
1: हाँ, बिल्कुल.
0: मुझे समझ नहीं आती. तो ना ही मुझे कोई बताए
1: जी
0: बर्मन है ना बस ठीक है मैं देखूंगा. बाद में पता चला कि बाप बेटे. अब समझ भी आता कि भाई उनका जॉनर जो था जो मिठास थी वो उसमें एक कॉमन DNA था.
1: यस.
0: यू नो सो यू कुड टेल. सो एनी हाउ पंचम दा आए और मैंने उनको कैसेट सुनाई. अच्छा उनका रिएक्शन जो था वो बड़े मजेदार था. उनका रिएक्शन जो था वो थोड़ा शक्की मिजाज का था. तो उन्होंने मेरी तरफ देखा. उन्होंने कहा ये तुमने बजाया? मैंने कहा हाँ जी मैंने बजाया. अगर तुमने बजाया तो बहुत अच्छा बजाया. मैंने कहा अगर क्या मतलब है
1: जी?
0: अगर से मतलब कि अच्छा मैं लियो लियो की शान के खिलाफ है कि अगर आप उसकी
1: गुस्ताखी कर दे
0: या फिर शक करे उसकी बात के.
1: जी, जी.
0: मैं भी फिर जिद में. मैंने कहा हाँ जी मैंने ही बजाया. Then he would turn around and say, हाँ हाँ अगर तुमने बजाया तो वो बहुत अच्छा बजाया. मैंने कहा जी मैंने ही बजाया. अच्छा वो भी उनके अंदर भी एक थोड़ा सा बचपना था. He went into the room next door and he brought out a portable Casio.
1: Oh, just to test you.
0: हाँ मैंने कहा उस जमाने में कैसियोज जो थे ना उनके सबसे नए मैंने कहा नए नए निकले थे कैसियो ब्रांड से which were portable. बाद में दुनिया में बेतहाशा पोर्टेबल आ गए थे लेकिन कैसियो वाज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज दैट स्टार्टेड दीस पोर्टेबल वंस. अच्छा ही ब्रॉट आउट अ कैसियो. मैंने कहा बजा के दिखाओ.
1: ओ हो हो हो.
0: तो मैंने बजा दिया. ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड हाँ तुमने ही बजाया.
1: क्या बात.
0: बहुत अच्छा बजाया.
1: क्या बात.
0: यू नो एंड दैट्स व्हेन ही वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज मी हु हैड प्लेड इट. यू नो
1: मतलब वो इतना नायाब था.
0: जी जी जी.
1: अनबिलीवेबल हो गया था.
0: हाँ
1: द ग्रेट पंचम के लिए बिलीव करना कि ये बच्चा जो है वो इतना शानदार बजा सकता है.
0: हाँ करेक्ट.
1: तो बचपन से आप जादू ही रहे हैं.

0: तो उसके बाद फिर ये हुआ कि मुझे अभी तक याद है आशा जी के अल्फाज कि उन्होंने कहा कि देखो बेटा, अगर तुम इसी तरह से मेहनत करो तो शायद एक दिन तुम म्यूजिक डायरेक्टर बनो।
1: वाह।
0: तो मैंने कहा यार मतलब कि क्या बात है, यू नो आई वाज लाइक वाओ, यू नो दी आशा भोसले सेइंग दिस टू मी। और देखो देखो प्रोफेसीज भी कभी कभी कैसे निकलती हैं कि मेरा पहला रिकॉर्ड और मेरा पहला रिलीज इंडिया में वो उनके साथ था।
1: जी,
0: यू नो आई मीन शी कुड नॉट हैव प्रेडिक्टेड दैट, नोबडी कुड हैव प्रेडिक्टेड दैट।
1: यस,
0: दिस वाज फेट, यू नो, एंड दिस वाज डेस्टिनी, एंड इट हैपेंड। एंड वो खुद इस बात पे हैरान है कि देखो याद है मैंने तुम्हें कहा था। एंड मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल मुझे याद है। एंड आई सेड देखो ऊपर वाले ने किस तरह से हमको इकट्ठे किया कि आपने ये बात बोली और जब मेरा पहला रिलीज हुआ तो आप ही के साथ हुआ। तो मैंने कहा ये ऊपर वाला ही चीजें तय करता है।
1: कुछ बहुत इंटरेस्टिंग वाकयात हुए होंगे इस पूरे एल्बम को बनाने के दौरान, क्योंकि आशा जी वाज वेरी चौली एज वेल एज वो बहुत मेहनत करती थी।
0: मैं आपको एक चीज बताऊं कि जब हम पहले दिन जा रहे थे स्टूडियो लंदन में तो मुझे अभी तक आशा जी यूज टू बी अ वेरी मतलब कि बहुत जॉली मिजाज की थी, बहुत हंसमुख थी और बहुत बबली थी, अपने एटीट्यूड उनका बड़ा ज़बरदस्त था। और एंड शी वॉज वेरी टॉकेटिव, बहुत बोलती थी अलग अलग चीज़ों पे, एंड शी वॉज ऑलवेज फुल ऑफ लाइफ। तो जिस सुबह मैंने उनको पिक किया उनके होटल से, और हमारा रास्ता जो था स्टूडियो का तकरीबन 40-50 मिनट का था, अब वो अनकैरेक्टरिस्टिकली क्वाइट, हम दोनों पीछे बैठे हुए थे और वो बस क्या कहते हैं गाड़ी में बाहर बस देख रही थी और चुप थी।
1: आपके लिए तो बहुत अनकंफर्टेबल हो
0: अच्छा
1: गया।
0: अब मैं यू नो मैं तो एकदम अननर्व हो गया ना।
1: जी,
0: मैं बहुत ज्यादा अननर्व हो गया, मैं बहुत परेशान हो गया कि मैंने कहा यार मुझसे कोई गलती हुई है, मैंने कोई गलत बात बोल दी, पता नहीं क्या चक्कर क्या है, इतनी क्वाइट क्यों है, क्योंकि वो कभी भी इस तरह से मैंने उनको कभी इस तरह से इतना चुप नहीं देखा। तो देयर वाज दिस वेरी अनकंफर्टेबल साइलेंस इन द कार। अच्छा मैंने कोशिश की थोड़ी सी पोलाइट कॉन्वर्सेशन, यू नो ठीक ठाक सोई आप कुछ चीज की, हाँ सब ठीक ठाक, देन शी वुड स्टॉप क्वाइट। मैंने कुछ और मैं बात बोलूं तो एक एक अल्फाज के साथ जवाब दे दिया, ये नहीं कि कोई गुस्से में या कुछ, नहीं बस क्वाइट। थोड़ी देर गुजरी, मैंने कहा हिम्मत करके मैंने आशा जी से पूछा, मैंने कहा आशा जी क्या हुआ है, सब ठीक तो है ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। तो शी सेड मैं सोच रही हूँ। मैंने कहा किस बात की सोच रही हैं आप? सोच रही हूँ कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने कहा क्या कर पाएंगे, मुझे अभी तक समझ नहीं आई। सोच रही हूँ कि मैं ये रिकॉर्डिंग ठीक तरह से कर पाऊंगी कि नहीं। मैंने कहा आशा जी आप ये कह रही हैं, मुझे तो फिर चुल्लू पर पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप दी आशा भोसले इज स्केर्ड और फियरफुल, इफ यू आर स्केर्ड कि आपसे रिकॉर्डिंग होगी या नहीं होगी, तो मैं मतलब कि मैं फिर किधर जाऊं।
1: जी जी,
0: मैं तो बच्चा हूं आपके सामने। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि मैं उनको थोड़ा सा, मैंने कहा आशा जी फॉर गॉड सेक, यू नो एंड ऑल दैट, नहीं समय तुम्हें नहीं पता, यू नो जब भी हम जब नया काम पकड़ते हैं तो ये फीलिंग होती है।
1: जी,
0: तो मैंने कहा अच्छा, यू नो मैं चुप, मैं क्या बोल सकता हूँ। तो अच्छा उनकी बेटी वर्षा
1: जी
0: वो भी उनके साथ आई हुई थी लंदन।
1: जी,
0: तो जब हम पहुंचे स्टूडियो में मैंने वर्षा को फोन किया। अच्छा वर्षा के साथ मेरी बड़ी बहुत क्लोजनेस, बहुत दोस्ती थी, शी वाज अ वंडरफुल पर्सन, गॉड ब्लेस हर सोल। मैंने वर्षा को फोन किया, मैंने कहा वर्षा मुझे एक चीज बताओ, ये आशा जी शी इज वेरी क्वाइट, मैंने पूरा पूरा बताया। अच्छा वर्षा यूज टू बी रियल चिल्ड आउट पर्सन, यू नो आई इज लाइक दैट ओनली। मैंने कहा क्या मतलब? वो डोंट वरी अबाउट इट, वो हर नए प्रोजेक्ट से पहले उनका यही हाल होता है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। और ये करके उसने ठक कर दिया। मैंने कहा यार ये ऐसी कैसी हो सकता है। श्योर इनफ जैसे वो माइक्रोफोन के सामने गई
1: रूप बदल गया,
0: मतलब कि इट वाज लाइक अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द स्पॉट।
1: वाओ,
0: शी सडनली बिकेम अ जायंट।
1: क्या बात, मेटामॉर्फोसिस।
0: मेरे सामने वो मेटामॉर्फोसिस लिटरली जैसे होता है ना।
1: जी
0: माय गॉड, उसके बाद जो एटीट्यूड था ना कि यू नो थ्रो एनीथिंग एट मी आई कैन टेक इट, बल्कि मैं इसको लेके इसको चबा के इसको 10 और तरीकों से, इट वॉज लाइक दैट, इट वॉज लाइक मैं उनको एक लाइन देता था, वो कहती मैं इस तरह भी गा लेती हूँ, मैं इस तरह भी गाती हूँ, इस तरह भी गाती हूँ। मैं कह रही यार मुझे सारे पसंद है, मैं क्या करूँ। आई वॉज लाइक अ किड इन अ कैंडी स्टोर, जिसमें वो होते ना लालच नहीं हो जाती कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। शी कुड इंटरप्रेट मेलोडी इन सो मेनी डिफरेंट वेज दैट शी वुड स्पॉइल यू फॉर चॉइस।
1: क्या बात,
0: एंड शी वुड स्पॉइल द म्यूजिक कंपोजर, क्योंकि

0: में आप किसी और के साथ काम करो ना, क्योंकि बस यही है।
1: तो आपको याद आए कि चॉइस थी
0: कितनी? ऑफकोर्स, मतलब कि यार, मतलब कि इन्होंने आदत खराब कर दी। हाँ, कभी कभी दूसरों के साथ कई दफा काम करके, मतलब यार मुझे एक और ऑप्शन है, बस यही है। तो यू नो, आई मीन द पॉइंट ऑफ द मैटर इज दैट ऑफ कोर्स अदर सिंगर्स आर ग्रेट, दैट्स नॉट अ पॉइंट, बट शी वाज अ फिनोमेना।
1: जी,
0: शी वाज अ फिनोमेना एंड दैट इज व्हाई शी वाज आशा भोसले। यू नो, जैसे लता जी ने कहा, लता जी ने एक बड़ी खूबसूरत बात बोली। उन्होंने कहा, जो गाने मैं गा सकती हूँ वो आशा गा सकती है, लेकिन जो गाने आशा गा सकती है वो मैं भी नहीं गा सकती।
1: वाह,
0: आई मीन दैट कुड,
1: कितनी खूबसूरत,
0: कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी बात।
1: जी,
0: और कौन इंसान कह रहा है, लता मंगेशकर। दैट्स अ ह्यूज थिंग एंड दैट्स प्रोबब्ली वन ऑफ द अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट्स शी कुड हैव गॉटन फ्रॉम एनीवन।
1: जी,
0: तो दैट इज व्हाई शी वाज आशा भोसले। लेकिन मजे की बात, ये तो एक किस्सा था, एक और बड़े मजे का किस्सा जो था
1: जी,
0: वो इसी प्रोजेक्ट में था। अब हम लंदन में रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब हमारा कल्चर और ब्रिटिश कल्चर या यूरोपियन कल्चर जो है वेस्ट का, वो बड़ा डिफरेंट है। इन द सेंस कि हमारा जो एक ट्रेडिशन है हमारे कल्चर में, जिस तरीके से हम बड़ों की इज्जत करते हैं, हम या तो जी लगा देते हैं, या फिर अगर हमारे माँ बाप के अगर दोस्त हों तो वो ऑटोमेटिकली अंकल बन जाते हैं या आंटी बन जाते हैं, यू नो व्हाट आई मीन। तो हम इस तरह की तहजीब जो है हमारे कल्चर में बहुत अंदर है कि हम सबको बहुत इज्जत प्यार के साथ। इसका ये मतलब नहीं कि वेस्ट जो है वो अगर नाम से पुकारते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि वो उनकी इज्जत नहीं करते, बस वहाँ का ट्रेडिशन अलग है।
1: जी,
0: यू नो, तो अच्छा, अब क्या था कि मैं तो जानता हूँ कि हमारा ट्रेडिशन क्या है। अब आशा जी हैं और या फिर आशा आंटी हैं या आशा ताई हैं या जो भी जो हमारे अब जैसे मेरी बेटी मदीना 9 साल की है, वो आशा जी को आशा दादी बुलाती है।
1: वाह,
0: यू नो,
1: क्या प्यारी बात।
0: तो हाँ, तो द पॉइंट इज कि ये हमारे अंदर एक चीज होती है। अब अगर मेरे कोई कॉलीग है तो वो उनको अंकल बुलाएगी या काका बुलाएगी या व्हाटएवर। तो ये चीजें हमने सिखाई, हमारे ट्रेडिशन में है, व्हिच आई थिंक इज अ ब्यूटीफुल थिंग।
1: जी,
0: अच्छा, अब क्या हुआ कि पहली दफा आशा जी मेरे साथ रिकॉर्ड कर रही है लंदन में। तो अब मैंने सोचा, मैंने कहा यार, आशा जी कम्स फ्रॉम एन ओल्ड स्कूल ऑल्सो। मुझे बाद में पता चला था शी वाज वन ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव पीपल आउट देयर, यू नो व्हाट आई मीन, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था उस वक्त। तो मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा यार, ये सारे बंदे जो हैं जो इंजीनियर्स और ये जो सारे जो काम करते हैं, तो सब गोरे, तो ये तो बिल्कुल फट से क्या कहते हैं फर्स्ट नेम बेसिस पे आ जाते हैं बेतकल्फी के साथ। अब उसका ये मतलब नहीं कि वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं, उनका तरीका ही ऐसा है, उनका ट्रेडिशन ऐसा है। लेकिन मैंने कहा अगर आशा जी माइंड कर जाए तो फिर तो मेरी तो ऐसी की तैसी हो जाएगी, मैंने तो रिकॉर्डिंग करनी है उनके साथ अगले हफ्ते, एक मेरे पूरे हफ्ता भर रिकॉर्डिंग करनी है, तो अगर उनका मूड पहले दिन ही खराब हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। तो उन्होंने पूछा, हे, अच्छा, मुझे सैमी बुलाते थे क्योंकि अदनान उस वक्त जरा मुश्किल था। ऑलराइट सैमी, व्हाट्स योर नेम? आई सेड, लिसन, शी इज अ लेजेंड। या, आई नो यू टोल्ड अस बिफोर, शी इज अ लेजेंड, या, बट व्हाट्स योर नेम? मैंने कहा कि यार, अगर मैं उनको बोलूंगा आशा भोसले, हे आशा, यू नो, मैंने कहा यार, ये तो
1: दिक्कत हो जाएगी,
0: ये जो दिक्कत हो जाएगी अगर वो माइंड करेंगे तो फिर मेरा क्या होगा।
1: जी,
0: तो मैंने कहा, हर नेम इज आशा जी।
1: वाओ,
0: तो ही सेड, बट व्हाट्स द फर्स्ट फुल नेम? आई सेड, हर नेम इज आशा जी भोसले।
1: व्हाट अ ट्रिक।
0: हां, तो उन्होंने कहा आशा जी भोसले। आई सेड, या, ओके, फाइन। और वही हुआ, नाम फर्स्ट नेम पे ही बुलाना था ना उन्हें। तो जैसे आशा जी एंटर हुई, क्या कहते हैं, स्टूडियो के अंदर, हाय आशा जी, इट्स अ ऑनर टू मीट यू। अच्छा, आशा जी जो थी बड़ी इंप्रेस्ड हुई
1: जी, और
0: मेरी तरफ उन्होंने देखा, उन्होंने कहा, ये हमारी परंपरा को कितना अच्छा जानते हैं। मैंने कहा, बस देख लो आशा जी। आशा जी, कैन यू जस्ट से दैट वन मोर टाइम, अ लिटिल लाउडर प्लीज। कितने तहजीब वाले हैं ना, वो इतनी खुश हुई कि उन्होंने सब, आई विल मेक इंडियन टी फॉर यू। तो शी वेंट इनटू द किचन, शी मेड कड़क चाय, टिपिकल कड़क चाय सबके लिए, और वहां से शुरुआत हुई हमारी रिकॉर्डिंग की। एंड बाद में बड़े सालों बाद मैंने फिर आशा जी को वो किस्सा सुनाया। मैंने कहा, पता कि वो कैसे हुआ? बड़े शैतान हो तुम, उन्होंने मुझे बताया नहीं इस तरह। मैंने कहा शी सेड, एंड शी हरसेल्फ सेड टू मी, सामी, इस तरह से मैं जानती हूँ उनका कल्चर, मैंने बहुत काम किया उनके साथ, मैं जानती हूँ कि वो इस तरह से। मैंने कहा, मुझे तो नहीं पता था ना
1: जी,
0: तो मैं तो अब चाह रहा था कि आप किसी भी तरीके से ऑफेंड हो जाएं, किसी तरीके से, कि होता है कि भाई कभी कभी कुछ लोग जो हैं वो बुरा मान जाते हैं। तो चीज़ें, नहीं, मैं इस तरह की चीज़ों पर बुरा नहीं मानता। मैंने तो ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग देखे जो ऐसी ऐसी इज्जत करते हैं लेकिन पीछे से छुरा मार देते हैं। तो नाम से कुछ नहीं होता, नियत से होता है, जो बहुत बड़ी बात है, जो सच बात भी है। तो बहुत तरह की बहुत सारी चीजें थी, अपार्ट फ्रॉम म्यूजिक देयर वर मेनी मेनी थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम हर। जैसे मैंने

0: कहना कि वो एक माँ का दर्जा रखती थी मेरे दिल में, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, ना सिर्फ संगीत के बारे में, ना सिर्फ माइक्रोफोन के सामने आने की जो जो जो टेक्निक्स होती हैं, लेकिन जिंदगी के बारे में बहुत कुछ उन्होंने मुझे सिखाया।
1: क्या
0: बहुत छोटी छोटी ऐसी ऐसी बातें उन्होंने मुझे सिखाई जो अक्सर बहुत सारे लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन उनकी बातें, उनकी जो कहावतें थी वो बहुत अनमोल थी और आज भी मेरे दिल में बसती हैं। और बहुत कुछ सीखा और बहुत प्यार वाली थी
1: जी।
0: शी वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन।
1: यस,
0: जो थी वो दिल के सामने और शक्ल पे दिखता था उनका। मुझसे लड़ती भी थी।
1: अच्छा,
0: ओ एंड हाउ, मतलब कि वो मेरे साथ लड़ती भी थी। अगर मैं लेट्स से 2-4 महीने अगर मैंने फोन ना किया किसी वजह से या विजिट नहीं किया तो मतलब कि बरस जाती थी।
1: ओ,
0: अच्छा वक्त आया, अच्छा आगे, अच्छा अब आज कैसे याद आई, फोन गलती से तो नहीं लगा दिया, सार्कैज़म टू द कोर। एंड देन शी वुड गिव इट टू मी एंड आई वुड जस्ट सिट देयर एंड से अच्छा अच्छा जी आप बोलिए जो आपने बोलना है। अच्छा फिर मैं जब उन्होंने कहीं पे पॉज किया तो मैंने कहा हो गया, हाँ हो गया, अब मैं ठीक हूँ, अब बोलो तुम्हें क्या कहना है।
1: जिनसे वो प्यार करती थी उनके लिए खाना भी बनाती थी।
0: ऑफ कोर्स, एंड यू नो शी वुड, वो ताना भी मुझे देती थी इस बात का, तुम भूल गया हो ना, रात के 12 बजे कभी कभी आते थे, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए पराठे और ऑमलेट बनाकर तुम्हें देती थी। एंड दैट इज अ फैक्ट। उनके साथ कोई तकल्लुफ नहीं था
1: जी।
0: उनके साथ वही अपनापन था और वो भी कई दफा शी यूज टू ऑल्सो बी अवेक टिल लेट, तो कभी कभी मैं अगर उस साइड पे होता था तो मैं अचानक आ जाता था तो उन्हें सबसे पहले पूछ खाना खाया तुमने कि नहीं, मैंने कहा नहीं खाया, अच्छा बैठो। नहीं, जो भी उस वक्त किचन में था अगर और कुछ नहीं तो वो ऑमलेट और पराठा बना देती थी। लाइक आई सेड शी वाज वेरी मदरली, तो वो दिल से सब कुछ करती थी, जो भी था दिल में था
1: जी। कितने प्यार से आपने उन्हें याद किया है, कितनी शिद्दत से याद किया है, ये महसूस हो रहा है।

0: जब आप म्यूजिक देते हैं उसमें भी वो प्यार और वो शिद्दत नजर आती है। खासतौर पर मैं उस फिल्म का जिक्र करना चाहता हूँ जिसका जिक्र लोग कम करते हैं, लकी नो टाइम फॉर लव।
1: जी,
0: जितने
1: जी.
0: मीठे और प्यारे गाने आपने बनाए हैं।
1: थैंक यू।
0: आपने और क्यों नहीं किया ऐसा काम?
1: इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा सुस्त हूँ,
0: लगता नहीं आपको देख के।
1: मेरा मतलब है कहने का कि अगर आप मेरा डिस्कोग्राफी अगर आप देखोगे तो आपको
0: देर देर से आते हैं।
1: हाँ, और दूसरी चीज ये कि मेरे में आपको ज्यादा, इफ यू कंपेयर इट टू अ लॉट ऑफ अदर म्यूजिक कंपोजर्स इन हिंदुस्तान, मेरा बॉडी ऑफ वर्क जो है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना उनका है। लेकिन एक चीज जो आपको नजर आएगी, यू विल फाइंड अ वास्ट बॉडी ऑफ वर्क ऑफ अलग अलग किस्म के जॉनर्स। मैंने शुरुआत की इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक की एज अ पियानिस्ट, एज एन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक पियानिस्ट।
0: वहां भी जाकिर भाई जैसे लोगों के साथ बजाया।
1: जी, तो मेरा सबसे पहला प्यार जो था वो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक था और है। अच्छा, हकीकत ये है, मेरे होते ना कि बचपन की जो एम्बिशंस होती हैं, ख्वाहिशें होती हैं, उसमें सिंगर बनने का कोई इरादा नहीं था।
0: ओके,
1: आई वॉन्टेड टू जस्ट बी अ पियानिस्ट एंड अ कंपोजर।
0: जी,
1: गायकी जो थी वो मेरे अंदर कभी वो ख्वाहिश नहीं थी। गाना, मैं इसलिए मैंने गाना शुरू किया क्योंकि हर म्यूजिशियन जो है गुनगुनाता तो है। तो क्या होता था, मैं जब कोई ट्यून कंपोज करता था तो उसका डेमो बनाता था।
0: जी,
1: अच्छा, डेमो में मैं खुद ही गा देता था,
0: जाहिर है।
1: फिर बैठ के मैं फैंटेसाइज करता था, क्या किशोर दा अगर गाएंगे तो क्या बात होगी, या रफी साहब अगर गाए तो क्या बात होगी। अच्छा, अब रफी साहब या किशोर दा, मैं कहाँ बैठा हूँ, लंदन बैठा हूँ या मैं जिधर भी बैठा हूँ, मैड्रिड बैठा हूँ, अब वहाँ पे मेरा क्या एक्सेस है उनके साथ। और फिर उसके थोड़ी देर, कुछ अरसे बाद तो उन सब का भी इंतकाल हो गया। तो मैं एक्चुअली गायकी में इसलिए पढ़ा क्यों, मैं अपने गाने इसलिए मैंने गाने शुरू की क्योंकि और कोई गाता नहीं था। तो मजबूरी के तहत मैंने खुद गाना शुरू कर दिया। और जब भी मैं रिकॉर्ड करता था तो मैं कहता था कि यार ये गाना जो है ना, ये अगर फलाना सिंगर गा, तो थोड़े अरसे बाद लोगों ने मुझे ये कहना शुरू कर दिया कि यार लेकिन तुम्हारी आवाज में भी बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम तो अपनी आवाज में रखो।
0: जी,
1: तो जब मुझे ऐसे लोगों ने मुझे कहना शुरू किया, सवाई मैंने कि मेरी वालदा के अलावा, क्योंकि माँ के लिए तो सबकी आवाजें अच्छी होती है ना, अपने बच्चों की हर चीज अच्छी होती है। तो लेकिन जब क्या कहते हैं दूसरों ने कहना शुरू किया तो थोड़ा सा हौसला बढ़ा मेरा। तो उसमें फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मैं गायकी में आया। तो मेरा जो बॉडी ऑफ वर्क है उसमें इंस्ट्रूमेंटल, इंडियन क्लासिकल भी है, फ्यूजन भी है, वर्ल्ड म्यूजिक, देन इंडिपेंडेंट म्यूजिक भी है, और फिर फिल्म म्यूजिक भी है। तो सिर्फ एक तरह का म्यूजिक नहीं है, एक जॉनर में म्यूजिक नहीं है मेरे। यू विल फाइंड ऑल काइंड्स ऑफ डिफरेंट स्टाइल्स एंड मीडियम्स, इंस्ट्रूमेंटल हो
0: ऑफ कोर्स,
1: यू नो, एंड ऑल दैट। तो वो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ, लेकिन क्वांटिटी ऑफ ईच ऑफ देम माइट नॉट बी एज मच।
0: यस,
1: तो मेरा ये था कि लकी का म्यूजिक मैंने किया, मैंने कुछ और फिल्मों का भी किया। लेकिन फिर मैंने एक और भी चीज महसूस की, मैंने ये अक्सर देखा कि कभी कभी, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, कि बड़ी मेहनत करते हो एक म्यूजिक पे, एक साउंड ट्रैक पे, और फिल्म फ्लॉप हो जाती है।
0: जी,
1: तो क्या होता है कि एवरीथिंग गोज डाउन विद द शिप। अब क्या है कि वो गाना, जो गाने हैं वो आपने बेशक बेहद अच्छे कर दिया हूं, मगर उनको मौका ही नहीं मिला उभरने का, क्योंकि फिल्म जो थी वो पहले दिन ही डूब गई थी। तो अब आप भी उसके साथ ही डूब गए, आपका म्यूजिक भी डूब गया, और फिर किसी ने उसको सुना ही नहीं। तो ये मेरे लिए बड़ी मायूसी की बात थी, क्योंकि मैं बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत के साथ, आई गेट वेरी इमोशनली अटैच्ड टू एवरीथिंग दैट आई डू। आई डोंट माइंड कि मैंने अगर कोई इंडिपेंडेंट गाना बनाया और उसको ठीक तरह से लोगों को मौका मिला उसको सुनने के लिए, और अगर लोगों को नहीं पसंद आया, नो प्रॉब्लम, कम से कम सुना तो सही।
0: जी,
1: उसने कम से कम थोड़ी सी रोशनी तो देखी कि भाई आपको मौका तो मिला उसको ना पसंद करने का, लेकिन अगर आपने सुना ही नहीं
0: तो अफसोस होता है,
1: तो फिर अफसोस होता है ना, जंगल में मोरना चाहे किसने देखा।
0: जी।

0: लेकिन अगर लकी की म्यूजिक की बात की जाए, आपका फेवरेट क्या है?
1: अच्छा, लकी की बड़ी इंटरेस्टिंग मैं बात बताता हूँ।
0: जी जी,
1: वो फिल्म भी फ्लॉप हुई थी
0: लेकिन वापस रिवाइव हुई।
1: नहीं, लेकिन उसकी वजह पता क्या?
0: जी,
1: इसमें आई हैव टू गिव क्रेडिट कि जो प्रोड्यूसर थे विच वाज भूषण कुमार, ही कुड सी दैट इस मूवी में गड़बड़ है।
0: जी,
1: अच्छा, उस जमाने में सीडीज और कैसेट्स का जमाना था और गाने बड़े अच्छे शूट हुए थे
0: बहुत।
1: हाँ, तो अब क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि फिल्म की रिलीज को डिले कर दिया और उन्होंने गानों को भरपूर तरीके से उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया और उस प्रमोशन की वजह से सीडीज और कैसेट्स जो थी वो
0: खूब चली।
1: अच्छा, जिस दिन वो फिल्म रिलीज हुई, अनफॉर्चुनेटली द फिल्म डिडंट डू वेल।
0: जी,
1: ठीक है, इट डिडंट डू वेल फॉर व्हाटएवर रीजन, इट वेंट डाउन immediately, it affected the
0: sales of the music.
1: Sales of the music, but by that time, वो पार हो चुके थे।
0: जी जी जी।
1: They were already declared a super hit because the people loved the songs. ठीक है ना? तो अब that was one of those very few examples in history, musical history, कह लो whatever, कि जहाँ पर the movie didn't do well, but the soundtrack did really, really well.
0: Yes. लोग आज भी याद करते
1: हैं। हाँ, लोग आज भी याद करते हैं। हालांकि कभी-कभी ऐसा भी होता है। अब जैसे कि पंचम दा का शोले।
0: जी,
1: he got the maximum amount of awards and sales because of Shole. But frankly speaking, even he used to acknowledge that Shole is not my best piece of work.
0: Of course, that's the truth.
1: Yeah, and that's the truth. And he used to also say it.
0: जी,
1: but because the film was such a colossal hit, that it automatically helped
0: everything.
1: Everything.
0: Yeah.
1: अच्छा, अगर आपको याद हो लगान पिक्चर, अगर आपको याद हो जब वो शुरू में उसका साउंडट्रैक जब रिलीज हुआ तो किसी को समझ नहीं आ रही थी उसका।
0: जी,
1: and it was, you know, it was people were confused कि यार किस तरह के गाने हैं, किस तरह के, they were not working. The movie released and it became a colossal hit of its time and overnight the music suddenly became a sensation because of the visual and the story line attached to the songs. They were very situational songs. So now people understood those songs. They understood the context.
0: Right.
1: And suddenly people then started to listen to the songs. अच्छा, आई लव द सॉन्ग्स इवन बिफोर द मूवी वाज रिलीज्ड।
0: जी,
1: क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि गाना जो है उसको अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए।
0: वो एक सेपरेट एंटिटी,
1: वो एक सेपरेट, मैं हमेशा उसको ऐसे देखता हूँ। मैं कहा यार, क्योंकि देखो फिल्म जो है वो फेड आउट हो जाती है।
0: जी,
1: गाने जो है वो रहते हैं क्योंकि दे आर वेरी इजी, यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग एनीवेयर ना।
0: राइट,
1: यू कैन लिसन टू अ सॉन्ग इन योर हेडफोन्स, इन ऑन योर फोन, इन योर कार, एवरीवेयर। यू कांट वॉच अ फिल्म एवरीवेयर। ऑफ कोर्स टुडे you have the mobile phones and all
0: still,
1: that lekin phir bhi you don't have the time to watch a film all the time but music stays with you, music always stays with you and it's very convenient. So I always feel that a song should be, yes, it should be situational, it should help the film's narrative, lekin it should stand on its own two feet.
0: Right, very.
1: Ab jaise kuch gaane aise hain jo bade khoobsurat bane hue hote hain lekin uski picturization itni zyada achhi nahi hoti. Kabhi bhi banda kehta hai yaar, काश मैंने पिक्चराइजेशन नहीं देखी होती तो बेटर होता।
0: पल पल दिल के पास,
1: पल पल दिल के पास। मुसाफिर हूँ यारो।
0: जी,
1: मैं जिंदगी भर मैं उसको बचपन से सुनो, मैंने सडनली देखा यार ये तो टांगे पे ऊपर गाना शूट हुआ है।
0: जी,
1: एंड इट वाज ओके, यू नो व्हाट आई मीन। बट यू नो सॉन्ग्स अल्टीमेटली आउटलिव द मूवी, सो देन यू नीड, द सॉन्ग नीड्स टू स्टैंड ऑन इट्स ओन टू फीट। There are very few examples of songs which were part of the narrative, but they still out, even though you would not, like, for example, a song like Julie. Ab Julie ka naam kyun hai? Kyunki film ka naam Julie tha.
0: जी.
1: और उसका मेन कैरेक्टर जूली था, लेकिन आज भी आप अगर सुनो, कितने लोगों ने जूली फिल्म देखी है आज के दौर में, लेकिन गाना कितने लोगों ने सुना है?
0: जी,
1: भूल गया सब कुछ, क्योंकि वो गाना इतना खूबसूरत है।
0: एंड कैन वी बिलीव दैट हम 50 साल पहले की म्यूजिक की बात कर रहे हैं?
1: एग्जैक्टली, एंड इट इज स्टिल सो ब्यूटीफुल एंड रिलेवेंट।
0: रिलीज इन 1975।
1: वाओ, देयर यू गो। तो देखिए, बात ये है ना कि यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी हमेशा यही कोशिश रहती है कि म्यूजिक जो है वो अब इट शुड स्टैंड ऑन इट्स ओन टू फीट। एंड देन व्हाट हैपेंस इज दैट यू सी, क्या था कि वो जो गाने थे, जो अगर फिल्म ने अच्छा काम नहीं किया फॉर व्हाटएवर रीजन, लेकिन द रिकॉर्ड लेबल उस जमाने में HMV थी, तो व्हाट दे यूज्ड टू डू वाज वो उन गानों को पुश करते थे।
0: जी,
1: कंपाइलेशंस में और इस तरह से। तो वो गाने जो थे, यू नो, बेस्ट ऑफ किशोर और या फिर फलाना, you know, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में वो उसको पुश करते थे, और जब वो पुश करते थे तो वो गाने जो थे वो बहुत मकबूल हो जाते थे ऑन देयर ओन। अच्छा, यहाँ आज के और कुछ अरसे से दौर ये है कि भाई अगर फिल्म नीचे गिर गई तो उसकी सारी चीजों को भूल जाओ।
0: जी, ये आज के जमाने की,
1: आज

0: जमाने। तो व्हाट हैपेंड वाज कि ये मेरे साथ दो चार दफा हुआ जहां पे पिक्चरें जो थी वो नहीं चली और वो म्यूजिक जो था वो डूब गया फिल्म के साथ। तो वो मेरे लिए बड़ा वो डिसहार्टनिंग था। तो देन आई सॉर्ट ऑफ सेड यू नो व्हाट आई विल बी वेरी वेरी चूजी ऑफ हुम आई वांट टू वर्क विद व्हेन इट कम्स टू कंपोजिशन।
1: राइट,
0: फिल्म में गायकी तो मैं करता हूँ सबके साथ, लेकिन मैंने कहा जहां तक कंपोजिशन करता, क्योंकि मेरे लिए कंपोजिशन इज लाइक गिविंग बर्थ टू समथिंग।
1: उसमें आपका अपना एक सिग्नेचर होता है जो सुन के ही अगर कीन लिसनर है वो अंदाजा लगा सकता है कि भाई ये आपका म्यूजिक है।
0: हाँ, तो इसके अंदर मैं अपनापन बहुत अंदर से निकालता हूँ, तो वो आई गेट टू इमोशनली अटैच टू इट। जैसे मैंने कहा ना, अगर आपने उस गाने को प्रॉपर प्लेटफॉर्म दिया और उसको एक मौका दिया उभरने के लिए, और वो अगर उसके बावजूद नहीं उभरा तो मैं डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा। मैं कहूंगा यार ठीक है, लोगों को नहीं पसंद आया, चलो ठीक है, विल ट्राई बेटर, लेकिन कम अज कम लोगों ने सुना तो सही। लेकिन यहाँ पर कई दफा होता था कि लोगों ने सुना ही नहीं, उनके तक पहुंचे ही नहीं और वो पहले से डूब गया। अच्छा, कई दफा जब मैं कभी कभी कोई पुराना उस तरह का उन फिल्मों में से अगर कोई गाना मैं किसी को सुना, अरे यार ये तो बड़ा अच्छा है, कब रिलीज हो रहा है, मैं कहा यार ये क्या, मैं
1: ये और तकलीफ
0: बढ़ा, ये और तकलीफ बढ़ाती है, यू नो। अच्छा, लेकिन फिर ये क्या हुआ, मैं चुप हो जाता हूँ।
1: तो उनमें से कौन सा गाना आपके दिल के सबसे करीब है?
0: देयर वाज अ सॉन्ग फ्रॉम अ फिल्म, दिस रादर द साउंडट्रैक
1: ओके
0: ऑफ अ फिल्म कॉल्ड सदियां।
1: जी,
0: the film I really enjoyed making the soundtrack of the film Sadiyan, aur usme bade interesting kism ke gaane hain jo mere dil ke bahut kareeb hain aaj bhi
1: ji,
0: and mujhe bada usse bade bada dukh hua
1: ki film nahi chali,
0: ki wo film nahi chali aur lihaza wo gaane jo the wo reh gaye, lekin wo gaane jo hain wo mere dil ke bahut kareeb hain, agar aap unko sunoge to aap you will understand maybe why maybe I am emotionally very attached to those songs.
1: And Lucky ke kaun se gaane ki baat,
0: sun zara, maine ki sun zara I loved, nahi actually I honestly loved so many of the songs. I loved shayad ye to pyar hai, kyunki meri pehli martaba lata ji ke sath gaane ka honor hua
1: ji,
0: to jo ek again wo ek khwab tha mera.
1: Kitni dhadkane badi hui thi
0: lata ji ke sath, again ek jo experience tha वो अनमोल था। मतलब कि मैं लता जी को पहले से जानता था क्योंकि मेरा आशा जी के साथ आना जाना हमेशा रहता था, तो कई मर्तबा दीदी के साथ भी मुलाकात होती रहती थी, और वो बहुत ही दिलचस्प खातून थी, वो बड़े मज़ेदार, शी वॉज अ ग्रेट कॉन्वर्सेशनलिस्ट, बड़ा मज़ा आता था उनके साथ गुफ्तगू करने का, गपशप मारने का, लेकिन कभी काम नहीं किया। और जब पहली दफ़ा जब उनके साथ इसी गाने के लिए जब मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो मैं तो बहुत नर्वस था, यू नो आई वाज वेरी नर्वस। और अच्छा, पता है ये जो महान लोग होते हैं ना, इज हु आर बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, दे नो देयर ग्रेटनेस,
1: यस
0: दे नो इट, दे आर वेरी मैटर ऑफ फैक्ट अबाउट इट। मतलब उनके अंदर उस तरह का कोई मगरूरपन नहीं होता, लेकिन उनको पता है कि भाई मैं लता मंगेशकर हूँ या मैं अमिताभ बच्चन हूँ, और मुझे पता है कि मेरा असर जो है, ऑरा जो है, वो अगले बंदे जो मुझसे कई दर्जे जूनियर है उसके ऊपर इस वक्त क्या बीत रही होगी। इन्होंने भी, उनको पता है, और उनका सबसे बड़ा जो बड़ापन है
1: जी,
0: वो ये होता है कि वो आपको सबसे ज्यादा, सबसे पहले आपको
1: ईज
0: कराते हैं, यू नो, टू मेक यू रिलैक्स, बिकॉज दे नो दैट आपके अंदर क्या, मतलब कि
1: हवाइयां उड़ी हुई हैं,
0: उनको पता है, तो उनका सबसे पहले तो ये होता है कि आपको जरा काम डाउन करें। तो अच्छा, अब क्या हुआ कि मैं पहली दफा रिकॉर्ड कर रहा था लता जी के साथ, तो मैंने फोटोग्राफर बुलाया। अच्छा, उस जमाने में कहाँ BTS हुआ करता था, कहाँ जिस इस तरह की जो चीजें जो आजकल में होती हैं, और पैप्स तो होते ही नहीं थे, तो देयर वाज नो सच थिंग। तो मैं अपना ही किसी फोटोग्राफर को बुलाया, तो अब मैं बैठा हूँ स्टूडियो में, मैं उनको गाना सिखा रहा था, ठीक है, मैं गाना बता रहा था उनको, मैं कीबोर्ड पे था और वो मेरे साथ बैठी हुई थी। उन्होंने देखा कि एक कैमरामैन है, तो उन्होंने, ये कैमरामैन, अच्छा मैं एकदम घबरा गया। मैंने कहा हाँ जी लता जी, कैमरामैन आप माइंड तो नहीं कर रही अगर कुछ दो चार फोटोज ले ले? हाँ नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, नहीं एक सेकंड मुझे खड़ा होने दो। मैंने कहा खड़ा किस लिए? मैं यहाँ पे खड़ी होंगी और ये, और शी हैड द पेपर विद द लिरिक्स, जब यहाँ पे खड़ी होंगी ना आपके सामने, तो फोटोग्राफ में लगेगा कि मैं आपसे सीख रही हूँ।

0: अरे गजब,
1: मेरा तो जबड़ा गिर गया उस वक्त। She wanted me to have that memory.
0: Wow.
1: कि वो अगला बंदा जब देखेगा उस फोटो को, उसको नजर आएगा कि मैं आपसे गाना सीख रही हूँ। मैंने कहा यार कौन करता है ये?
0: कौन करता है?
1: आप मतलब कि you are giving me that honor that you're standing and wow. learning and giving me that honor as a music director that you're giving me that respect and I'm a kid in front of you. मैंने उस दिन उनसे इतना बड़ा ये एक सबक सीखा कि वहां पर वो करने से वो छोटी नहीं हुई, वो मेरे आंखों में इतनी बड़ी हुई कि मैंने उससे सबक सीखा कि ये होता है genuine humility.

0: देखिए लता जी, आशा जी की बात हुई, बच्चन साहब के साथ भी तो ऐसी कुछ हुआ है।
1: ऑफ कोर्स बच्चन साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ है
0: जी।
1: मैं देखिए उनसे अच्छा मेरा जो यू नो आई मीन ही फॉर मी वाज ऑलवेज यू नो अ स्टार एंड आइकॉन एंड एंड यू नो अ लेजेंड यू नो एंड ही विल ऑलवेज बी। तो उनके साथ जब मैं इंटरैक्ट मैंने करना शुरू किया और सबसे जो खूबसूरत बात थी वो ये थी कि इन सब लेजेंड्स के एक चीज जो कॉमन थी जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती थी वो ये था कि आई वाज एबल टू गेट ए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस टू सी हाउ दे क्रिएटेड देयर मैजिक कि व्हाट वाज द प्रोसेस कि वो किस मरहले से गुजरते हैं और अपने दिमाग को किस तरह से तैयार करते हैं उस तरह के लेवल की परफॉर्मेंस निकालने के लिए कि व्हाट प्रोसेस दे वेंट थ्रू। और हर एक बंदे का अपना अपना तरीका होता है
0: अपने आप।
1: तो वो मैंने बच्चन साहब के साथ भी देखा, मैंने आशा जी के साथ भी देखा, लता जी के साथ भी देखा।
0: उनके साथ शूट कितना डिफिकल्ट था आपके लिए?
1: ओह इट वाज अमेजिंग। अमित जी के साथ तो शूट ऐसा था कि मतलब कि हर एक टेक जो थी वो अनमोल थी।
0: अच्छा।
1: और हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा मुश्किल बात ये हुई जब हम एडिट पे बैठे, क्योंकि उन्होंने हर एक शॉट के हमने 3-4 वर्जन्स किए थे। अच्छा वो इम्प्रोवाइज करते, मैं भी इम्प्रोवाइज करता हूँ क्योंकि मेरा तो क्लासिकल म्यूजिक से ही मतलब कि बैकग्राउंड है और हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में तो सब कुछ इम्प्रोवाइज्ड होता है। तो वो इम्प्रोवाइजेशन का कीड़ा जो है वो मेरे भी बचपन से है, तो वो तो ऑफ कोर्स ही इज अ मास्टर एट दैट। तो वो जब जो अलग अलग टेक्स थी हम कहते यार ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। हम कई दफा ऐसी उलझन में पड़ जाते थे तो वी यूज्ड टू लिटरली फ्लिप अ कॉइन कि कौन सा शॉट रखें, क्योंकि वी डिडंट नो व्हिच वन टू कीप यू नो बिकॉज़ दे वर ऑल सो गुड एंड डिफरेंट इन देयर ओन वे। ही वुड गिव अस एवरी शॉट ही वुड गिव इन अ डिफरेंट वे। तो वो उनके साथ काम करके जो एक्सपीरियंस मिला वाज समथिंग दैट वाज एब्सोल्युटली प्राइसलेस एंड आई लर्न्ड सो मच फ्रॉम ऑल ऑफ दीज पीपल एंड इट वाज सच एन इनक्रेडिबल प्लेजर।

0: ईमेल भेजो छत्तीसगढ़ी गीत सुनाओ। अभी आप श्रोताओं की पसंद पर आधारित ये कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है मीडियम वेव और एफएम बैंड पर। हमारा अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में होगा। ये आकाशवाणी रायपुर है। 11:55 होने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बस्तर संभाग में आज से शुरू हो रही है बस्तर तिरंगा यात्रा। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विद्यार्थियों के अंक बढ़ाने के लिए आने वाले फर्जी कॉल से सावधान रहने की अपील की है। अब समाचार विस्तार से। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बस्तर संभाग में आज से बस्तर तिरंगा यात्रा की शुरुआत हो रही है। तिरंगा यात्रा आज नारायणपुर से प्रस्थान कर दंतेवाड़ा पहुंचेगी। इसके बाद कल 13 अगस्त को दंतेवाड़ा से बीजापुर के लिए प्रस्थान करेगी। वहीं 14 अगस्त को यह यात्रा बीजापुर से प्रस्थान कर आवापल्ली उसूर कलगम ताड़पाला होते हुए कुर्रे गुटालू पहाड़ी पहुंचेगी, जहां इस यात्रा का समापन होगा। उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि तिरंगा यात्रा बस्तर के अति संवेदनशील और माओवाद प्रभावित रहे इलाकों से होकर गुजरेगी। उन्होंने बताया कि बस्तर संभाग के 90 से अधिक गांवों में आजादी के बाद पहली बार इस स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराया जाएगा। यात्रा के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा प्रमुख 31 स्थानों पर पहुंचेंगे, जहां माओवादियों ने जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया था। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सावन माह की अमावस्या को मनाए जाने वाले हरेली पर्व पर किसान अपने कुलदेवता और खेती में उपयोग किए जाने वाले औजारों की पूजा कर रहे हैं। हरेली पर्व आज सुबह 10 बजे से नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हरेली अमावस्या के अवसर पर आज बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में पाट जात्रा पूजा विधान

0: 7 75 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत होगी। इस दौरान पारंपरिक मांझी चाल के मेंबर मेंबरिन पुजारी पटेल नाइक पाइक और सेवादार रथ निर्माण के लिए औजार बनाने ठुरलू खोटला रस्म अदा करेंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर नई दिल्ली में एक व्यापक वृक्षारोपण अभियान का संचालन करेंगे। श्री चौहान के वृक्ष मित्र अभियान से जुड़े देशभर के हजारों सदस्य भी उनकी अपील पर अपने अपने गांवों और शहरों में वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे। देशभर में 50,000 से अधिक पौधे लगाने का सामूहिक संकल्प लिया गया है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार, अंक बढ़ाने या अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उत्तीर्ण कराने के नाम पर आने वाले फर्जी कॉल से सावधान रहने की अपील की है। मंडल ने कहा है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जारी है और ऐसे मामलों में धनराशि की मांग करने वाले लोगों का मंडल से कोई संबंध नहीं है। विद्यार्थी और अभिभावक ऐसे कॉल पर विश्वास न करें, किसी प्रकार का लेन देन न करें और फर्जी कॉल मिलने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं। बिलासपुर जिले के ग्राम रहंगी बिल्हा में 100 बिस्तरों वाले ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना के लिए 5 एकड़ की भूमि को मंजूरी मिल गई है। यह 100 करोड़ रुपए से अधिक की स्वास्थ्य परियोजना है। अस्पताल बनने से बिलासपुर और आसपास के क्षेत्रों में ईएसआईसी से जुड़े पंजीकृत श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। पहले से जेल में बंद कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार कर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रायपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 5 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर भेज दिया गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ में आज गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और एक दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने बलरामपुर, जशपुर, सरगुजा, सूरजपुर और इससे लगे क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल के अंतर्गत बधमरा रेलवे फाटक अंडरपास आज सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक अस्थायी रूप से बंद रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बस्तर संभाग में आज से शुरू हो रही है तिरंगा यात्रा। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है और छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने विद्यार्थियों के अंक बढ़ाने के लिए आने वाले फर्जी कॉल से सावधान रहने की अपील की है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है। संसद भवन परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि विपक्ष आज ही चर्चा के लिए सदन में उपस्थित हो। उन्होंने कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलाने देने की अपील की। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार विपक्ष की मांग पर सहमत हो गई है और गृहमंत्री अमित शाह बयान देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने सत्ता पक्ष और विपक्ष से सहमति बनाने तथा संवाद के जरिए आगे बढ़ने की अपील की। लगातार हंगामा जारी रहने के कारण सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर हंगामा किया, जिस वजह से सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने युवा पीढ़ी से रामनाथ कोविंद के जीवन की कहानी उन्हीं के शब्दों में जानने और उनके लेखन और अनुभवों को पढ़ने का आग्रह किया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए, जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि

0: अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखें। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा, यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
1: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक जरिया भी है। विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 संस्थागत, पारदर्शी और जवाबदेह न्यायाधिकरण प्रशासन की दिशा में परिवर्तनकारी बदलाव का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग को एक मजबूत न्यायाधिकरण प्रणाली के केंद्र में रखता है। एक अंग्रेजी दैनिक के लिखे लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि ये विधेयक न्यायाधिकरणों के मूल अधिकार क्षेत्र में कोई परिवर्तन किए बिना उनकी शासन संरचना को मजबूत करने का प्रयास करता है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि सेवानिवृत्त आरआरपीएस डॉक्टर भूमा वीजी को मॉरिशस के अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड इनोवेशन एआईपीएसआई के कुलपति पद के लिए चुना गया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि एआईपीएसआई मॉरिशस का पूर्व सिविल सर्विस कॉलेज है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम ने मार्च 2025 में संयुक्त रूप से किया था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। ब्यूरा हमारे संवाददाता से।
2: छात्र संदिग्ध परीक्षाओं को रद्द करने, सीबीआई जांच और भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग दोहरा रहे हैं। छात्रों ने कल शाम मौन जुलूस निकाला और कहा कि इसका उद्देश्य अपनी मांगों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से उठाना है। इसके बाद जिला प्रशासन के अधिकारियों की एक टीम जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची और आमरण अनशन पर बैठे छात्रों से बातचीत की। ने दोहराया कि उनकी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रहेगा। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के दूसरे दौर में जावखोरिन सिंदारोव को हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही प्रज्ञानंदा 2 मैचों में 1.5 अंक पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

रंग दे बसंती फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। अभी प्रसून जोशी के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था, नरेश अय्यर, मोहम्मद असलम और साथियों की आवाजें थी। यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गाने छोटे से अंतराल के बाद।

0: दोस्तों, अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती चैनल और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहासे हुजूर।
0: दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। इस उपलक्ष में हमने कुछ ऐसी फिल्में चुनी हैं जिनमें युवाओं की उपस्थिति दर्ज होती है। चलिए आज युवाओं के लिए हम करते हैं ढेर सारी शुभकामनाएं कि उनका भविष्य उज्जवल हो, उनके सारे सपने पूरे हों और उनके हौसले सदा बुलंद रहें। फिल्म 3 इडियट्स, सोनू निगम, श्रेया घोषाल की आवाजें।

வந்தே மாதரம். ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती।

0: 1947 अर्थ इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे सुखविंदर सिंह और साथियों की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल थे, एआर रहमान का संगीत था।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम।

0: जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे उदित नारायण और विजेता पंडित की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे, जतिन ललित का संगीत था।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
3: सखी सहेली।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए अब सुने जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म का गाना। फरहान अख्तर और साथियों की आवाजें हैं।

चक दे इंडिया फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमा सरदेसाई की आवाज में। जयदीप साहनी के बोल थे, सलीम सुलेमान का संगीत था। लागा चुनरी में दाग, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में।

लगा चुनरी में दाग फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल और साथियों की आवाजों में स्वानंद किरकिरे के बोल थे शांतनु मोइत्रा का संगीत। इसी के साथ आज का यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सुरीला सफर। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम सुरीला सफर। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हर रोज हम एक इबारत या टेक्स्ट फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, फेसबुक पेज पर। इसमें वो शब्द समाये होते हैं जिन पर आधारित गाने इस कार्यक्रम में शामिल किए जा सकते हैं। तो आज की जो इबारत है वो हम आप तक पहुंचा देते हैं। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव था, वहां एक प्रेमी जोड़ा था। उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत ख्वाब देखा था, एक छोटा सा घर जिसकी खिड़की से पहाड़ और वादियां दिखाई दें, और आंगन में दोनों के नाम का एक पेड़ हो, उस पौधे में सदा प्रेम के फूल खिलें। लेकिन बीते दिन लौट कर नहीं आते, हालात ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया। वक्त की आंधी में उनके टूटे हुए ख्वाब कहीं बिखर गए। सालों बाद वो फिर उसी गांव में लौटी, मतलब वो यानी लड़की। पहाड़ वही थे, पगडंडियां वही थीं, मगर वो नहीं था। तभी हवा में जैसे उसकी आवाज गूंजी, बुझ मेरा क्या नाव रे, नदी किनारे गांव रे। वो ठिठक गई। ये वही गीत था जिसे उसने कई बार उसके साथ गुनगुनाया था। ये वही जगह थी जहां उसने लिखी थी एक प्रेम कहानी। तो फिर आगे क्या हुआ, यही तो आपको बूझना है आज। आज आपको पूरी करनी है ये कहानी, और दो लाइन में आपको बताना है कि आगे क्या होता है, उसका प्रेमी वापस मिलता है या नहीं। जहां से गाने

की आवाज आई थी वहां उसका प्रेमी आया या नहीं, ये आपको बताना है। दो लाइन की एक छोटी सी इबारत लिखिए और बहुत बड़ी टिप्पणी लिखने की जरूरत नहीं है। दो लाइन में बताइए प्रेमी उसका वापस लौटा या नहीं। अगर लौटा तो फिर क्या हुआ, अगर आप बूझ जाते हैं तो फिर ठीक है, वरना हम प्रोग्राम के आखिर तक तो आपको बताएंगे ही कि आखिर कहानी में आगे क्या होता है। अब बहुत सारे श्रोताओं ने टिप्पणी लिखी है, कहानी का निचोड़ लिखा है किसी ने मिलती जुलती कहानी लिख डाली है, किसी ने अंदाजा लगाया है, लेकिन बहुत लोगों को अंदाजा लगाना बाकी है। तो आप जरा बूझिए कि इस कहानी में आगे क्या होता है, वो प्रेमी जोड़े में जो बिछड़ जाते हैं प्रेमी वापस लौटता है कि नहीं, और साथ में वो शब्द भी बूझिएगा जिससे गाने चुने हमने, वो गानों के बोल भी आप बताते चलिए। फिलहाल बताइए गीतकार का नाम, फिल्म है आज और कल, गीतकार का नाम बूझिए, संगीतकार है रवि, आवाज किसकी है ये तो आप बता ही सकते हैं। फिल्म आज और कल, इबारत में जो शब्द है उन्हीं शब्दों से गाने सुनवा रहे हैं।

साहिल लुधियानवी गीतकार, ये हमने पूछा था आपसे, सभी श्रोताओं ने बहुत जल्द जवाब दिया। संगीतकार का नाम भी सही लिखा, रवि मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म आज और कल। एक श्रोता ने लिखा, छोटा सा घर होगा बादलों की छाव में, रिमझिम सितारों का आंगन होगा, बीते हुए दिन कुछ ऐसे, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। और बहुत सारे श्रोताओं ने गाने के बोल लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है, पर्वत, घर, फूल, वक्त, ख्वाब, नाम, प्रेम, प्रेम कहानी। भाई गाने के बोल भी तो लिखिए, इतनी कंजूसी क्यों? और कंजूसी वहाँ कीजिए जहाँ हमने कहानी पूरी करने की बात कही। सिर्फ एक या दो लाइन में आप कहानी पूरी कीजिए कि क्या होता है वो पर्वत, पर्वतों के बीच में, पेड़ों के झुरमुटों के बीच, जब वो वापस लौटती है। एक बार उनके ख्वाब टूट जाते हैं, अलग हो जाते हैं, जब वो वापस आती है और गाना गूंजता है वादियों में, बूझ मेरा क्या नाम रे, तो उस समय क्या वो उसका प्रेमी वापस आता है या नहीं, ये आपको बताना है। पूरे प्रोग्राम में हम पूछते रहेंगे, आखिर में इसका हम जवाब देंगे, मतलब कहानी पूरी करेंगे। ये अधूरी कहानी हमने दी है आपको। एक श्रोता ने पूरी करने की कोशिश की है, देखते हैं क्या लिखा है। बिछड़ते समय प्रेमी ने प्रेमिका को एक पीला दुपट्टा दिया और कहा, जो इस जगह पहले लौटेगा वो इस पेड़ की ऊपरी शाख पर ये दुपट्टा बांध देगा, तब दोनों को यकीन हो जाएगा कि अभी भी हमें एक दूसरे से प्रेम है और इंतजार है। जब प्रेमिका गांव लौटी तो देखा पेड़ की ऊपरी शाख पर एक

नहीं, अनगिनत पीले दुपट्टे लहरा रहे थे। क्या बात है भाई, हमारी आंखों के सामने तो सीन आ गया है, कैसे दुपट्टे लहरा रहे होंगे। तो जरा आप अपना निजी अनुभव बताइए कि आपने कभी किसी के लिए ऐसा पीला दुपट्टा, नीला दुपट्टा, लाल बांधा है, या फिर किसी के लिए प्यार का धागा बांधा है। वैसे मंदिर में जाते हैं तो अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए हम धागा बांध कर आते हैं। कभी अपने प्यार की खातिर कोई धागा बांधा है, जरा बताइए, वो अनुभव ही साझा कर सकते हैं, हम आप तक पहुंचाएंगे। और इस तरह की मन्नतों वाला धागा जब बांधते हैं तो ये अच्छी बात है, उसमें दुआओं की बाकायदा तावीज होती है। एक श्रोता ने लिखा है, कदम आवाज की दिशा में बढ़े तो देखा आंगन में लहराते उसी पेड़ की छांव में बैठा वो, आज भी उसी के इंतजार में वही गीत गा रहा था। क्या बात है भाई, नजरों से नजरें मिलते ही जैसे सालों की दूरी मिट गई और अधूरा प्रेम हमेशा के लिए पूरा हो गया। आज के शब्द पर्वत, चंबा, ख्वाब, पगडंडी, खूबसूरत गाना और गाने के बोल भी लिखे हैं, लेकिन हम अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आपको बूझते रहना है हम कौन से गाने सुनवाने वाले हैं। अब जरा हमें हीरो हीरोइन का नाम बताइए। फिल्म है आदमी और इंसान।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष तिवारी से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से

विविध भारती से यह है कार्यक्रम सुरीला सफर। आदमी और इंसान फिल्म का गाना हमने आपको सुनवाया था इस प्रोमो से पहले, और आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। धर्मेंद्र और सायरा बानो सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया, जल्दी जवाब दिया। एक श्रोता ने लिखा है कि आज आपने इबारत को पूरा करने का हम साथियों को मौका दिया है, बहुत अच्छा लगा आपका नया तरीका। तो हुआ ये कि जिस समय वो उस जगह पर पहुंची थी, उसी समय वो शख्स भी अपनी पुरानी यादों को पुनः जीने के इरादे से संयोगवश वहां पर पहुंच गया था और वही गीत गाकर खुश हो रहा था। दोनों अपने इस गीत को गुनगुनाते हुए फिर से मिले, क्या बात है भाई। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब प्रेम सच्चा है तो मिलेंगे ही ना, मिले मतलब वो प्रेमी जोड़ा मिल जाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि ये जैसे कि पुनर्जन्म की कहानी हो और अगले जन्म में मिले, एक श्रोता ने ये लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि एक प्रेमी जोड़ा अर्थात मेरी धर्मपत्नी और मैं स्वयं इन दिनों कश्मीर के पर्वतों के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद अभी इस समय एक कश्मीर के हॉलीडे होम में रुके हुए हैं, जिसकी खिड़कियों से पहाड़, वादियां, पेड़ पौधे और खूबसूरत फूलों के अद्भुत नज़ारों का दर्शन कर रहे हैं। और मन बस यही कह रहा है कि धरती पर अगर जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। और इस जन्नत को बचाए रखने के लिए हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी, मतलब हरितिमा बचाए रखना है हम सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमें अभी आपके जवाब का और आपकी कहानी पूरे करने का इंतज़ार है कि देखते हैं कौन सही मंजिल तक पहुंच पाता है, कहानी की थीम को कौन पकड़ पाता है। बहुत सारे श्रोताओं ने पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन आप अपनी जो विचारधारा है वो साझा करते रहिए। अब हम आपको सुनवा रहे हैं सीआईडी फिल्म का गाना, और ये वही गाना है जिसे उसने सुना पर्वतों की वादियों में और इसी गाने के जरिए अपने प्रेमी को याद किया। तो आपको पूछना है आवाज़ किसकी है और गीतकार कौन है और संगीतकार कौन है। फिल्म है सीआईडी।

शमशाद बेगम की आवाज थी मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे ओपी नैयर का संगीत था। श्रोताओं ने सही लिखा है, सीआईडी फिल्म थी। और जरा बताइए कि ऐसा कोई गाना याद आ रहा है जिसमें कि गांव हो, पीपल हो और इसमें गांव का पूरा परिवेश हो, ऐसा कोई गाना याद आ रहा है जिसमें नदी भी हो? क्योंकि आज की इबारत में ये शब्द कई बार आ गए हैं, तो नदी, गांव और पीपल वाले अगर कोई और गाने आपको याद आते हैं तो ज़रूर बताइए, हम आप तक पहुंचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रेमी अक्सर लौटते ही हैं, कुछ या बहुत कुछ खोकर, टूटे हुए ख्वाबों ने हमको ये सिखाया है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सालों बाद लौटने पर जब उसने देखा सफ़ेद स्वेटर जिस पर गुलाब के फूल की बहुत सुंदर कढ़ाई थी, उसे तुरंत ही याद आ गया उसके द्वारा दी गई प्यार के निशाने उसके प्रीतम प्यारे ने पहनी है। क्या बात है, हमारे श्रोताओं के अंदर एक कथाकार भी है, बहुत अच्छा लग रहा है जानकर। बहुत सारे श्रोताओं ने एक कथाकार की तरह पंक्तियाँ लिखी हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ, मेरे दिल के टुकड़ों में चांद की उदासी छिपी और धुंधली कुछ तस्वीरें लिखी रहीं, कहानी सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूँ। एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि नीले पर्वतों की धारा, बहुत ही खूबसूरत छायांकन, पर्वत, झरने, नदियाँ, आपकी इबारत से बिल्कुल मैच कर रहा है ये गाना। एक श्रोता ने लिखा है कि इबारत अधूरी बताई गई है और लिखा है कि हम पूरी करें, मिलना बिछड़ना नियति में था, जब गाना सुना पुराना सजन मिल गया, फूल खिल गए, मिलन हो गया, गिले शिकवे सब दूर हो गए, प्रेम में बड़ी ताकत होती है। सिर्फ प्रेम में बिछड़ने की वजह गिले शिकवे ही नहीं होते हैं, कई बार मर्यादा भी होती है, समाज भी आड़े आता है, परिवार भी आड़े आता है। तो ये अब हम आपको एक क्लू दे रहे हैं, हिंट दे रहे हैं, जरा बुनिए आगे वाली कहानी सिर्फ दो लाइन में, एक लाइन में, हमें पता है कि आप बुन सकते हैं ये कथा। चलिए अब हम आगे बढ़ें और आपको सुनवाएं अमानत फिल्म का गाना। आपको बूझना है कि ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। हमें लगता है कि ये फिल्म आप सबने देखी जरूर होगी, तो बूझिए जरा कि किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया है। संगीतकार का नाम अगर पता है तो वो भी आप बता सकते हैं।

आज की इबारत में जो कथानक है कुछ निचोड़ इस गाने में है। जब प्रेमी जोड़े बिछड़ते हैं तो दिल से दिल की बात होती है, एक पुकार होती है, एक तड़प होती है, पीड़ा होती है। तो कुछ ऐसा ही ये गाना भी था और हमने पूछा था कि इसमें कलाकार कौन है। मनोज कुमार साधना, सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और साहिल लुधियानवी के बोल होते हैं, रवि का संगीत है और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है। फिल्म गोदान, नदिया के पार, नीले गगन तले गाने के बोल भी लिखे हैं बहुत सारे श्रोताओं ने। गांव के परिवेश पर हमने पूछा था कि ऐसा गाना जिसमें नदी है और गांव है तो कोई गाना याद आता है, तो वो भी बताइए। श्रोताओं ने वो भी बताया है और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता लगातार अपने यादों की गलियारों में विचरण कर रहे होंगे और गाने याद कर रहे होंगे। याद कीजिए, बहुत सारे श्रोता अगर एक ही गाना लिखेंगे तो हम वो गाना बजाएंगे भी और बहुत सारे श्रोताओं के लिखे वे गाने भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि वो मुड़ी तो सामने वही खड़ा था, बालों में सफेदी, आंखों में वही प्यार और हाथ में उस पेड़ की एक हरी टहनी जिसे उन्होंने कभी साथ लगाया था। दोनों कुछ नहीं बोले, बस मुस्कुरा दिए, क्योंकि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वो बस सही वक्त आने का इंतजार करता है। एक श्रोता ने लिखा है कि रही बात कहानी की, तो दिल हमेशा उसे ढूंढता रहता है जो कभी मिला नहीं या मिल नहीं सकता। जब उसने वो गीत सुना तो कुछ पल के लिए वो अतीत में चली गई, पर देखा तो एक छोटी सी पहाड़ी पर एक लड़का वो गीत गुनगुना रहा था। जब उसने पूछा कि उसे ये गाना कैसे आता है तो उस लड़के ने बताया कि उसके पिता अक्सर गुनगुनाते रहते थे और कहते थे एक दिन कोई ये गीत सुनकर उसके बारे में ज़रूर पूछेगा। क्या बात है भाई, ये तो एक अलग सी कहानी डेवलप हो रही है। तो ठीक है, आज अपने कहानीकार दिल को टटोलिए और लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर।

मधुमती फिल्म का गाना था। हमने गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था, त्वरित जवाब आया। श्रोताओं की ओर से सही जवाब आया शैलेंद्र और सलील चौधरी। मोहम्मद रफी की आवाज़ थी और श्रोता कोशिश कर रहे हैं कहानी की बात को आगे बढ़ाने की। और अगर आपको नहीं सूझ रहा है तो बस ये तो बताइए कि अंत क्या होता है कहानी में, प्रेमी जोड़े में वो प्रेमी आता है इस गाने को सुनकर या फिर नहीं आता है। जो भी गाने आज बज रहे हैं, मेरे ख्याल से उस प्रेमी तक इन गानों के जरिए आवाज़ पहुंचनी चाहिए, तो जो कहानी इबारत की थीम है उसमें। अब एक श्रोता ने लिखा है कि इंसान बहुत कुछ भूल जाता है पर पहला प्यार नहीं भूल पाता, क्योंकि वो उसकी आत्मा और जहन में पत्थर की लकीर की तरह इंगित हो चुका होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरीला सफर में नदी पहाड़ों के वातावरण में रहने वाले प्रेमियों के मिलने बिछड़ने पर आने वाले गीत सुनने को मिलेंगे। चंबा का गांव और प्रेमी क्या कहते हैं वो भूली दास्तां फिर याद आ गई, बीते दिन वो प्यारे दिन कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, बूझ मेरा क्या नाम रे। बहुत सारे गानों को मिलाया है इन्होंने, एक कड़ी सी बनाई है, अच्छी बात है ये। एक श्रोता ने लिखा है कि वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, हवाएं गुंजायमान है, यही वो जगह है, यही है फिजाएं, यहीं पे कभी आप हमसे मिले थे, यहीं पे कभी हाथों में हाथ लेकर कभी न बिछड़ने का वादा किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि आपकी भावुक सुंदर इबारत की परिपूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं हम। विरह दर्द को आंचल में समेटे, मन की सारी शक्ति बटोरे, वो उस हरे भरे फूल पेड़ के पास पहुंची जो उन दोनों ने लगाया था और बोल उठी, ओ मेरे मनमीत, तेरा नाम है अमर प्रेम, तेरी यादों को दिल से कैसे मिटाऊं, तुम्हें भुलाना नामुमकिन है क्योंकि जन्म जन्म का साथ है निभाने को, सौ सौ बार हमने जन्म लिए। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात आपने लिखी है। और अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है जो हम सुनवाने जा रहे हैं, लेकिन जरा आपको बताना है हीरो

हीरोइन का नाम, किन हीरो पर, किन हीरोइन पर फिल्माया गया है ये गाना, फिल्म महबूबा। जल्द बताइए ताकि अगले सवाल का जवाब आप दे सकें। हीरो हीरोइन लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

महबूबा फिल्म का गाना था। हमने आपसे पूछा था कौन है हीरो कौन है हीरोइन, राजेश खन्ना और हेमा मालिनी। सभी श्रोताओं ने सही जवाब दिया और दरअसल इस गाने का जिक्र भी हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने किया था, तो समझ लीजिए कि आप सभी की फरमाइश पर यह गाना हमने बजाया। तो आज की इबारत से कोई शब्द आपको सूझ रहा है, जिस पर बहुत सारे गाने आपको सूझ रहे, तो वो आप लिख डालिए, फिर वही गाना हम आप तक पहुंचाएंगे। एक श्रोता ने लिखा है कि आज तो हरियाली अमावस्या है, सुरीला सफर में नदी पहाड़ों की बातें हैं और वैसे ही गाने हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आज का सुरीला सफर। एक श्रोता ने लिखा है कि बीते हुए दिन और हालात लौट कर नहीं आते, लेकिन अगर दोनों का प्यार सच्चा और पवित्र है तो बिछड़े हुए प्रेमी फिर से मिल सकते हैं। सच क्या है, बीता हुआ कल जो समय निकल गया शायद वापस नहीं आता, टूटे हुए ख्वाब पुराने जख्मों को भरने में समय लगता है, हालात अगर हालात बदल जाएं तो अलग हुए रास्ते फिर से जुड़ जाते हैं। अब बात बीते हुए दिन की चली है, तो चलिए एक ऐसा ही गाना सुनते हैं। आपको पूछना है किसकी है आवाज और गीतकार का नाम।

सभी श्रोताओं ने सही बताया, सुमन कल्याणपुर की आवाज है, गुलशन बाबरा के बोल हैं। ये बात, ये जानकारी कम श्रोताओं ने दी है। दत्ताराम का संगीत और फिल्म थी फर्स्ट लव। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि उसने देखा कि गाना एक कुटीर से आ रहा है, जाके देखा तो प्रेमी की बेटी गा रही थी, प्रेमी तो गुजर गए थे। ये एंड लाइन हमारे श्रोता ने लिखी है और सब अपने अपने विचारधारा के अनुरूप लिखें कि कहानी का अंत क्या होना चाहिए। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज आप द्वारा प्रस्तुत शानदार इबारत के साथ सुरीला सफर के लाजवाब कमेंट सुनकर पढ़कर मन प्रफुल्लित हो रहा है। हमारा भी मन प्रफुल्लित हो रहा है कि एक जरा सी कहानी है छोटी सी, उसमें आप सभी उसमें शामिल हो रहे हैं, उस छोटी सी कहानी को कितना विस्तार दे रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए अब जरा बताइए हीरो हीरोइन का नाम और कौन से शब्द इस गाने में आते हैं इबारत वाले, और कौन से शब्द वाले गाने बाकी हैं, जरा ये भी तो लिखिए। फिल्म मेरा नाम जोकर, आपको हीरो हीरोइन का नाम बूझना है। और हाँ, अगर वो प्रेमी मिल जाता है तो फिर वहां पर कौन सा गाना होना चाहिए, जरा ये भी बताइएगा।

आप सुन रहे थे ये गाना, फिल्म थी मेरा नाम जोकर, मुकेश की आवाज, हंसर जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत था। और श्रोताओं ने बताया है राज कपूर और सिमी गरेवाल इस फिल्म में होती हैं, इस गाने में। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज आजा सनम मधुर चांदनी में हम ये भी गाना होना चाहिए। अब देखते हैं कि वो मुलाकात कैसी होती है, मतलब वो प्रेमी जोड़े मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, वहाँ पर जब अगर वो जोड़े मिलते हैं तो कौन सा गाना होना चाहिए, ज़रा ये बताइए। देखते हैं, आपने बहुत सारे श्रोताओं ने कोशिश की है कहानी पूरी करने की, अगर वो गाना भी बता देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारी आपकी पसंद बिल्कुल मिलती जुलती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आवाज़ के पीछे गई तो वहाँ कोई नहीं था, बस हवा थी जिसमें उसकी आवाज़ और उसके बीते दिनों की खुशबू घुली हुई थी। उसने आंगन के उस पुराने पेड़ को छुआ जिस पर दोनों के नाम अब भी साथ साथ खुदे थे। गुजरा हुआ वक्त लौट कर नहीं आता, बस उसकी आहटें दिल के किसी कोने में ठहरी रहती हैं। बरसों बाद जब यादों की कोई खिड़की अचानक खुलती है तो बीते दिनों की खुशबू के साथ एक हल्की सी टीस भी लौट आती है। कुछ प्रेम कहानियां इस जमीन पर मुकम्मल नहीं होती, वे बिछड़ कर

आसमान की हवाओं में हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। क्या बात है, एक कहानी आपने रच दी है, बहुत अच्छा लगा। अब बूझिए कि कौन है कलाकार जिन पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। फिल्म है किनारा। गीतकार और संगीतकार का नाम पता होगा आपको शायद, तो लिख डालिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर।

0: मुझसे और कभी लड़ती भी है।
1: किनारा फिल्म का गाना था, भूपेंद्र हेमलता हेमा मालिनी की आवाजें थी, गुलजार के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है हेमा मालिनी पर पिक्चराइज किया गया है ये गाना। और ये गाना हमें अधूरा छोड़ना पड़ा क्योंकि इस गाने में पूरी कहानी निहित थी, इसलिए गाना सुनवाया। और एक गाना अभी ज़रूरी है जिसका जवाब आप सभी ने नहीं दिया, देखिएगा शायद वो आपका भी फेवरेट सॉन्ग हो और आपने भी वही गाना सुना चुना हो। एक श्रोता ने लिखा है कि सच्चा प्रेम तो वो है जिसमें मिलने की नहीं एक दूसरे के लिए सच्चा समर्पण हो, यही प्रेम की पराकाष्ठा भी है। और एक श्रोता ने लिखा है कि सफ़ेद कागज़ पर काली स्याही से लिखी हुई दास्तान हो, इसे कृपया आप पूरा कर दें। ये टिप्पणी पढ़ी जा चुकी है, शायद ये दोबारा और तिबारा भी आई है एक टिप्पणी। और अब वो इबारत मैं आप तक पहुंचा रही हूं जिस इबारत की बात बार बार की इस प्रोग्राम में। पर्वत के पीछे चंबेदा गांव था, वहां एक प्रेमी जोड़ा था, उन्होंने मिलकर एक खूबसूरत ख्वाब देखा था, एक छोटा सा घर जिसकी खिड़की से पहाड़ और वादियां दिखाई दें, आंगन में दोनों के नाम के एक पेड़ हो, लेकिन बीते दिन लौट कर नहीं आते, हालात ने उन्हें एक दूसरे से दूर कर दिया, वक्त की आंधी में उनके टूटे हुए ख्वाब कहीं बिखर गए। सालों बाद फिर उसी गांव में वो लौटी, पहाड़ वही थे, पगडंडियां वही थी, मगर वो नहीं था। तभी हवा में उसकी आवाज गूंजी, बूझ मेरा क्या नाम रे, वो ठिठक गई। ये वही गीत था जिसे उसने कई बार उसके साथ गुनगुनाया था, उसने आंखें बंद की तो लगा जैसे बीते हुए दिन फिर उसके सामने खड़े हैं। कुछ प्रेम कहानियां पूरी होकर भी अधूरी रह जाती हैं और कुछ टूटे ख्वाब उम्र भर आंखों में अपना घर बनाए रहते हैं। अब इस इबारत के मुताबिक तो मिलता है वो प्रेमी जोड़ा, प्रेमी आता है मिलता है, लेकिन एक बेनाम रिश्ते के साथ। वो रिश्ता ऐसा था कि उसका मिलना न मिलना एक समान था, लेकिन कई मुलाकातें ऐसी होती हैं, कई मुलाकात ऐसी होती है कि आपके जहन में बस जाती है, लगता है कि अधूरा प्रेम भी मुकम्मल प्रेम है। अब सुनिए

तो क्या बताइए, आपने ये गाना आखिर में सोचा था कि ये गाना बजाया जाएगा? वापस फिल्म का ये गीत था और अधूरी मुलाकात को हमने मुलाकात पूरी करवा दी और बहुत सारे श्रोताओं ने यही चाहा भी था इस कहानी में कि अंत ऐसा ही हो कि सच्चा प्रेम हो तो ज़रूर मुलाकात होती है, प्रेमी जोड़े मिलते हैं। एक श्रोता ने लिखा भी है कि कभी जिस बरगद की छाँव में बैठ कर वे घंटे बातें किया करते थे, वो बरगद आज भी इतने सालों बाद भी खड़ा है, उसकी शाखाएँ फैल गई हैं, छाया घनी हो गई है, उसके नीचे वो बंसी बजा रहा है और वो दौड़कर अपने पुराने प्रेमी के पास पहुंच गई है, कुछ कहना चाहती है लेकिन कह नहीं पाती। बस वो संवाद जो होता है, मौन की भाषा, वो दोनों एक दूसरे को कहते हैं और समझ लेते हैं। अब आज के प्रोग्राम का सफर पूरा हुआ, सुरीला सफर आज बस इतना ही। सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

नमस्कार, मैं हूं यूनुस खान और आज त्रिवेणी में बातें अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की। हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत साल 2000 में हुई थी, यानी 26 बरस हो गए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने के। वैसे आपको बता दें कि पूरी दुनिया में 15 से 24 साल की उम्र के लोगों का जो प्रतिशत है वो 16% है, और अगर भारत का देखें तो 15 से 25 साल की उम्र के लोग भारत की कुल आबादी का तकरीबन 54% हिस्सा हैं, यानी कि भारत एक युवा देश है और दुनिया में भी युवाओं की अच्छी खासी तादाद है। ये युवा ही हैं जो दुनिया को बदलते हैं, तरक्की के रास्ते पर ले जाते हैं, नई खोजें करते हैं, नए रास्ते निकालते हैं, नई व्यवस्था बनाते हैं, और ये युवा ही हैं जो दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। पर युवाओं को एक दिशा देने की और जिम्मेदारी का बोध कराने की जरूरत है।

इत्तेफाक की बात है कि 12 तारीख को ही भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, पर अगस्त के महीने में नहीं बल्कि जनवरी के महीने में, क्योंकि वो दिन जो है वो स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। यानी राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को होता है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है 12 अगस्त को। जैसा कि मैंने कहा कि ये युवा ही हैं जो बेहतर दुनिया बना सकते हैं, लेकिन किसी भी पीढ़ी के बुजुर्गों से पूछें तो वो यही कहेंगे कि हमारे जमाने के युवा जिम्मेदार हुआ करते थे, आज के युवा तो दिशाहीन हैं। सवाल ये है कि बदलती हुई इस दुनिया में कितने तरह के डिस्ट्रैक्शंस हैं जो ध्यान भंग कर रहे हैं, पर इन तमाम चीजों के बावजूद अगर आप तमाम क्षेत्रों में उपलब्धियों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि युवा आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं। खेलों में हर रोज बनते हुए रिकॉर्ड, यूनिवर्सिटीज में लगातार ऊंचे अंक प्राप्त करने वाले युवा, इसके अलावा विज्ञान, दर्शन, इतिहास, हर क्षेत्र में युवा नई ऊंचाइयां छू रहे हैं, नए कीर्तिमान बना रहे हैं, नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि हम इन युवाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े हों, हम उन पर इल्जाम न लगाएं, हम उनकी गलतियां ना निकालें, बल्कि हम उन युवाओं को एक नई चेतना की तरफ आगे बढ़ाएं।

अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम एक बात और कहना चाहेंगे और वो बात ये है कि हम सबके भीतर थोड़ा न थोड़ा युवा मौजूद होता है। हम सबके भीतर एक जोश है, जुनून है कुछ कर गुजरने का, और इस युवा तरंग में ही दुनिया उपलब्धियां हासिल करती है। इस साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम है वो है विभिन्न परिस्थितियों को पहचानना और युवाओं के जरिए वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना। ये युवा ही हैं जो दुनिया को एक सूत्र में बांध सकते हैं, ये युवा ही हैं जो हर तरह के भेद की दीवार तोड़ सकते हैं, ये युवा ही हैं जो विश्व व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। बस युवाओं पर विश्वास करें और उनके साथ आगे बढ़ते चलें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष से संसद चलने देने का आग्रह। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण आज भी बाधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युवाओं से आत्मकथा पढ़ने और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इस राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं पर लगाया जाएगा। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और ओडिशा में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश का अलर्ट। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंगफील्ड कप के दूसरे दौर में जावोखेल सिंदारोव को हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है और संसद में सदस्यों की ओर से उठाए गए सभी सवालों का जवाब देगी। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री शाह ने कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है और वो चर्चा के लिए तैयार है।
1: आज 3 बजे तक स्पीकर साहब को वो पत्र दे दें, 3 बजे से लेकर कल 3 बजे तक सभी प्रकार की चर्चा के लिए हम तैयार हैं। मैं सदन में ही बैठूंगा, सबको सुनूंगा और सब चीजों का जवाब दूंगा। सरकार के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं, देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए।
0: श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रही।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही मांग रहा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में श्री गांधी ने कहा कि विपक्ष को गृहमंत्री के किसी भी बयान में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वो जवाबदेही चाहता है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों को प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई और अयोध्या राम मंदिर को मिले चंदे में कथित अनियमितताओं का मुद्दा उठाया। श्री बिरला ने विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही चलने देने की अपील की। राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। सदन की कार्यवाही सुबह शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। इस समय दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर राजधानी रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी

0: जारी है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: छात्र नेता रविंद्र पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा उनकी मांगे स्वीकार किए जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों के साथ संवाद करने की अपील की। प्रदर्शनकारियों के अनुसार वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी देर रात आंदोलन स्थल पर पहुंचे और आमरण अनशन कर रहे छात्रों से अनशन समाप्त करने का आग्रह किया। हालांकि छात्रों ने अनशन जारी रखने की बात कही और बताया कि आंदोलन की आगे की रणनीति कोर कमेटी तय करेगी। इस बीच झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र कल निर्धारित समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। परीक्षा विवाद और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर सदन में लगातार हंगामा हुआ। छात्रों का कहना है कि केवल परीक्षा रद्द करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वो अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
2: हमें भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यहीं से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन किया। ये आत्मकथा श्री कोविंद के उल्लेखनीय जीवन सफर का एक व्यक्तिगत विवरण प्रस्तुत करती है। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद का मार्गदर्शन उनके लिए शक्ति का एक बड़ा स्रोत रहा है।
2: कोविंद जी ने ये काम हम सबके लिए किया है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कितना कुछ है जिसमें गरीब वंचित तबके से आए तमाम लोग अपने जीवन की परछाई देख सकते हैं। कैसे एक साधारण परिवार मुश्किल हालातों में भी जीवन की शुचिता और ईमानदारी से समझौता नहीं करता।
0: इस अवसर पर श्री कोविंद ने कहा कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का साधन नहीं है, बल्कि राष्ट्र की सेवा करने का एक माध्यम भी है। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और हाईस्पीड डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया है। संशोधित दरें कल आधी रात से लागू हो गई हैं। इससे प्राप्त राशि को अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए चल रही कल्याणकारी योजनाओं के लिए दिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और विधायक राकेश जम्वाल ने इस फैसले को जन विरोधी बताया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय व्यापार महोत्सव का उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है, जिससे आत्मनिर्भर भारत की दिशा में देश की प्रगति को गति मिल सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। इस अवसर पर वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन्द्र प्रसाद ने कहा कि प्रौद्योगिकी और व्यापार भारत की विकास यात्रा के दो प्रमुख आधार हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप का शुभारंभ करेंगे। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र की विभिन्न लाइब्रेरियों को एक साथ जोड़ने के लिए विकसित किया गया है। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने हथकरघा क्षेत्र में एक बड़े बदलाव का आह्वान किया है। उन्होंने उद्योग को पुनर्जीवित करने और बुनकरों तथा कारीगरों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए नवाचार, बाजार उन्मुख डिजाइन और टिकाऊ उत्पादन पर बल दिया। नई दिल्ली में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले वार्षिक सम्मेलन सूत्र 2026 में श्री सिंह ने ये बात कही। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: इस वर्ष हर घर तिरंगा 2026 अभियान वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के जज्बे को समर्पित है। यह अभियान देशभक्ति, तिरंगे के प्रति गर्व और हमारे राष्ट्रगीत में झलकने वाले मातृभूमि के प्रति प्रेम का जश्न मनाता है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत शुरू किए गए इस अभियान का उद्देश्य लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की आजादी के उपलक्ष्य में उसे फहराने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसकी शुरुआत इस सोच के साथ हुई थी कि राष्ट्रध्वज के साथ हमारा रिश्ता हमेशा व्यक्तिगत होने के बजाय औपचारिक और संस्थागत रहा है, इसलिए एक राष्ट्र के तौर पर सामूहिक रूप से तिरंगे को घर लाना न केवल तिरंगे के साथ व्यक्तिगत जुड़ाव का प्रतीक बन गया बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बन गया। इस पहल का मकसद लोगों के दिलों में देशभक्ति की

0: भावना जगाना और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि वंदे मातरम की भावना ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया और आज भी ये देश की पहचान को मजबूत कर रही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित हर घर तिरंगा बाइक रैली में हिस्सा लेने वालों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कही।
2: इन तिरंगा यात्रा, बाइक एंड साइकिल रैली, कल्चरल प्रोग्राम एंड कंसर्ट, ईच एक्टिविटी हैज अ डिफरेंट फॉर्म बट द sentiment behind them is common. The national flag is the symbol in which every citizen can find a sense of belonging.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस को सम्मान, गर्व और गौरव के साथ मनाने और विकसित भारत का संकल्प लेने का आग्रह किया। सोशल मीडिया पोस्ट में एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने लोगों से हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर मन तिरंगा अभियान के तहत हर घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज युवाओं से देश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उठाने और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में योगदान देने का आह्वान किया। नई दिल्ली में तिरंगा यात्रा के दौरान युवा छात्रों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही। जम्मू कश्मीर में आज श्रीनगर के प्रसिद्ध डल झील के किनारे बुलेवार्ड रोड पर एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में भी हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देशभक्ति का रंग देखने को मिला। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में तिरंगा यात्राओं से लेकर कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
3: स्वतंत्रता दिवस से पहले मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान जोर पकड़ रहा है। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक चल रहे इस अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में तिरंगा यात्रा के साथ की। इसके बाद से प्रदेश भर में तिरंगा यात्राएं, बाइक और साइकिल रैलियां निकाली जा रही हैं। गांवों से लेकर शहरों तक तिरंगा मेले, प्रदर्शनियां, मानव श्रृंखला और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। स्कूल कॉलेजों में भी रंगोली, चित्रकला, निबंध और देशभक्ति गीतों जैसी प्रतियोगिताओं के जरिए बच्चों और युवाओं को अभियान से जोड़ा जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक लोगों से अपने घरों, दुकानों और प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराने की खास अपील की गई है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राज्यसभा में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए चर्चा शुरू हुई। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने ये विधेयक प्रस्तुत किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में और संशोधन करना है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे के लगभग 89% आरक्षित टिकट ऑनलाइन बुक किए जा रहे हैं। वर्ष 2013-14 में ये आंकड़ा लगभग 49% था। श्री वैष्णव ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के एक चौल में भूस्खलन होने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
4: मुंबई के घाटकोपर इलाके में आज तड़के भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई। बृहन मुंबई महानगर पालिका के अनुसार यह घटना चिराग नगर स्थित गौसिया चौल में हुई। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पहाड़ी का एक हिस्सा चौल पर गिर गया, जिससे 2 से 3 मकान मलबे की चपेट में आ गए। घटना के बाद मुंबई की महापौर ऋतु तावड़े और अतिरिक्त नगर आयुक्त पूर्वी उपनगर डॉक्टर अविनाश ढाकने ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और जारी बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। प्रार्थना के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए मुंबई से मैं स्वीटी जैन।
1: वहीं मौसम विभाग ने राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कल तक बिजली चमकने और तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा तट के पास उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण उत्तरी और तटीय ओडिशा के कुछ हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का एक नया क्षेत्र बना है, जिससे उड़ीसा में बारिश बढ़ गई है। भद्रक, केंद्रापड़ा और जगत सिंहपुर में भारी से बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। 25 अन्य जिलों के लिए येलो चेतावनी जारी की गई है। IMD को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उड़ीसा में व्यापक बारिश होगी और आज व कल कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। तटीय इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: और रील्स तथा सोशल मीडिया की शॉर्टकट संस्कृति से बचने का आग्रह। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर का अनाथ और विधवा उपकर लगाया। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में उत्साह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा, वंदे मातरम की भावना देश की पहचान को मजबूत कर रही है। और ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता के दूसरे दौर में जावुखेल सिंदारोप को हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। मेरे हमदम मेरे दोस्त इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में।

0: शनिवार 15 अगस्त 2026 को दिन में 11 बजे केवल विविध भारती पर। विशेष मेगा एपिसोड वंदे मातरम, एक जय घोष।
1: वंदे

0: परख फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र की रचना थी, सलील चौधरी की धुन थी। रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जयो कहा से हुजूर।
3: वो कॉमिक क्रिएटर है।
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
3: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
3: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती।
3: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मेरा गांव मेरा देश फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। शब्दकार थे आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये जिद्दी फिल्म का गाना है, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत।
1: मैं क्या क्या ना बना, मैं तेरे प्यार में क्या क्या ना बना, दिल बदल

जिद्दी फिल्म का गाना था, गीता दत्त और मन्ना डे की आवाजें थी, हसरत जयपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत था। आइए प्रोग्राम के आखिर में सुनते हैं बहू बेगम फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, रोशन का संगीत है। सुनिए प्रोग्राम का आखिरी गाना और इसी के साथ अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सखी सहेली सुनने वाली हमारी सारी सखियां सहेलियां और श्रोता भाइयों को और सोनाली तुम्हें भी दीपा माहेश्वरी का
1: हेल्दी नमस्कार। दीपा आपको और सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
0: बिल्कुल आपका जो नमस्कार है सभी ने उसे
1: स्वीकार लिया है
0: और हेल्थ का ध्यान रखना बिल्कुल अच्छे हैं और हेल्थ का ध्यान रखना सेहत का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है कि बदलते मौसम में देखिए ना घर घर में हम सुन रहे हैं किसी को नजला हो गया है किसी को
1: खांसी
0: हो गई है कहीं बुखार है तो ऐसे में अगर हम पहले से ही थोड़ा सा अपना ध्यान रखते चलते हैं ना तो ये जो बदलते मौसम में तबीयत जो खराब हो जाती है ये जरा संभल जाती है
1: और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं ना दीपा उन्हें मालूम होता है कि भाई अभी बहुत जगह पे इस तरह की बीमारियां फैली हुई है
0: जी।
1: तो पानी उबालकर पीना चाहिए या अपना ध्यान रखना चाहिए यानी बहुत सारी सूचनाएं होती हैं बहुत सारी योजनाएं होती हैं तो हमें रोज अखबार पढ़ते रहना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा और ऐसे ही देखो ना ये मौसम ऐसा है कि यहाँ पे अलग अलग व्यंजन खाने का और बनाने का बड़ा मन करता है। अच्छा चलिए सखियां बनाने का भले मन नहीं करता होगा लेकिन खाने का तो करता होगा ना।
1: मेरा तो मन करता है।
0: बिल्कुल तो वैरायटी सबको चाहिए एक विविधता होनी चाहिए ना सिर्फ अपने जीवन में खाने में भी।
1: हाँ और है ना वही तरह के जब हम खाने खाते हैं ना तो बच्चे क्या बड़े बूढ़े सारे लोग ना परेशान हो जाते हैं कि अरे वही बना लिया। तो ओट्स जो होते हैं ना प्रोटीन से भरे होते हैं तो उसके व्यंजन बहुत सारे व्यंजन हमारी सखियों ने हमारे श्रोताओं ने लिखकर भी भेजे हैं।
0: बिल्कुल
1: किसी ने डोसे का लिखा है किसी ने उपमा लिखा है तो किसी ने खीर लिखा है तो आप भी लिखकर भेजिए कि आपके घर में ओट्स के व्यंजन बनते हैं और नहीं बनते तो क्या बनने चाहिए।
0: बिल्कुल और देखिए थोड़ी मेहनत तो लगेगी लेकिन मेहनत का फिर फल भी तो बहुत मीठा होता है।
1: मीठा होता है।
0: और जब सारे खुश हो जाएंगे और उस मेहनत का जब रंग निखर के आएगा तो फिर देखिए न सिर्फ हर दिन हमारा जीवन भी सवर जाएगा और यही शब्द है हमारा आज
1: मेहनत
0: का।
1: तो आज का है शब्द हमारा विचार आपके इसमें मेहनत है यानी किसी भी क्षेत्र में चले जाओ बिना मेहनत के हमें बहुत सफलता नहीं मिल सकती।
0: बिल्कुल और आजकल की जो हमारी बेटियां हैं उन्हें लगता है साड़ी पहनने में बहुत मेहनत लगती है लेकिन जो अनुभवी महिलाएं हैं वो कहती हैं तुम जितनी देर में ड्रेस पहनोगी हम उतनी देर में साड़ी पहन लेंगे
1: चट से पहन लेंगे।
0: तो साड़ियों का अपना एक सुंदर संसार है और एक महिला जितनी खूबसूरत साड़ी में लगती है किसी अन्य परिवेश में परिधान में शायद कम लगती है। ये आपको क्या लगता है आप जरूर बताइएगा सखियां कि साड़ी पहनना आसान है या ड्रेस पहनना आसान है और अगर आसान ड्रेस है तो खूबसूरत किस में ज्यादा दिखते हैं।
1: और श्रोता भाई भी बताएं कि महिलाएं किस ड्रेस में यानी किस परिधान में ज्यादा सुंदर लगती है
0: जी।
1: तो खंडुआ साड़ी ओडिशा के बारे में हम जानकारी देंगे और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमारे बहुत सारी सखियों ने भी इस विषय में मैसेज लिखना शुरू कर दिया है। साथ ही आज एक खास दिन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है तो सारे युवाओं को भी हम बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देते हैं।
0: बिल्कुल उन सभी को उनकी ऊर्जा को सलाम और उन्हें ये एक सीख भी देते हैं कि अपनी ऊर्जा को एक सकारात्मक पथ पे आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को संवारते चलें
1: जी।
0: और अब हम क्या करें
1: गीत सुनते हैं
0: चलो।

0: सोनाली, कहाँ खोई हुई हो संदेशों में?
1: यहाँ आने के बाद में हम दोनों नहीं होते हैं दीपा, हमारे साथ में इतने सारी श्रोता, इतनी सारी सखियां जो घर में सुनते हैं और हम उनके संदेश पढ़ते हैं।
0: बिल्कुल, तो संदेशों के माध्यम से बहुत सारी हमारी सखियां इस वक्त हमारे साथ हैं,
1: जुड़ी हुई हैं। और आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस।
0: बिल्कुल,
1: तो युवा जो होते हैं ना, किसी भी देश का वर्तमान और भविष्य की सबसे मजबूत नींव होते हैं। उनके भीतर असीमित ऊर्जा, कुछ नया करने की ललक और दुनिया को बदलने का साहस होता है। और इसी ऊर्जा और सामर्थ्य को सम्मानित करने और युवाओं से जुड़े मुद्दे पर वैश्विक ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है। और ये दिन दुनिया भर के युवाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाने का दिन है और समाज निर्माण में उनकी भागीदारी को रेखांकित करने का एक साझा मंच है।
0: बिल्कुल सही कहा। और अगर हमारे देश की हम बात करें तो इस संदर्भ में देखा जाए तो ये दिन और भी खास और जीवंत हो उठता है, क्योंकि हमारा देश जो है वो दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35 वर्ष से कम आयु का है। तो भारत का युवा जो है उसको हम केवल जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड ये नहीं हम बोल सकते, ये आंकड़ा नहीं है वो लोग ये नहीं हम मान सकते, बल्कि देश के आर्थिक, तकनीकी और सांस्कृतिक बदलाव का मुख्य कारक भी हमारे युवा हैं।
1: ये तो बात आपने बहुत सही कही दीपा। और आज का भारतीय युवा केवल अवसरों की तलाश नहीं कर रहा है, बल्कि स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और नए विचारों के जरिए खुद अवसर पैदा कर रहा है। अंतरिक्ष से लेकर खेल के मैदान तक या तकनीक से लेकर सामाजिक क्रांति तक भारत का युवा हर क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और एक देश के युवाओं का ये संगम इस बात का प्रतीक है कि जब युवा सशक्त होता है तो वह न केवल अपने देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है, बल्कि पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाने का भी सामर्थ्य रखता है।
1: बस युवाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे समय का बहुत ध्यान रखना चाहिए।
0: बिल्कुल सही
1: कि ये जो महत्वपूर्ण वर्ष है ना, ये

0: जिंदगी में बार बार नहीं आती
1: बिल्कुल हमारे, और ये ऊर्जा भी बार बार नहीं मिलेगी हाँ, है ना, इसे संगठित करके रखना हाँ, होता है।
0: तो बस ये जो समय है इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। और हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भाई समय का ध्यान रखो, थोड़ा मोबाइल से दूर रहो, थोड़ा पढ़ लिख लो, तो उन बातों को जो युवा ध्यान में रखते हैं ना उनका जीवन उज्ज्वल हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: और सबसे जरूरी बात है मेहनत।
1: जी बिल्कुल सही कहा। और ये वो सुनहरे वर्ष हैं जहां आप जो चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास आजादी है, स्वतंत्रता है, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी जिम्मेदारियां हमेशा बढ़ती जाती है, और उस वजह से कई बार अपने सपनों को हमें पीछे छोड़ना होता है क्योंकि जिम्मेदारी ज्यादा बड़ा रूप ले लेती है। तो आप चाहे जो चाहे वो कर सकते हैं, बशर्ते बस ये ध्यान रखिएगा कि हमारे घर वाले कहीं पे उनका उनकी मानहानि ना हो या उन्हें ऐसा ना लगे कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। अगर आप अपने गांव, देश, प्रदेश कहीं से भी बाहर दूर हैं, तब भी माता पिता को ये लगे जहां भी हमारा बच्चा है बिल्कुल सही है और एक सकारात्मक सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ रहा है,
0: और अपने देश, अपने बड़े बुजुर्ग और अपने घर का नाम रोशन हो, इस बात का युवाओं को ध्यान रखना चाहिए।
1: बिल्कुल। अच्छा एक संदेश आया है, ये पढ़ना चाहती थी सोनाली। इन्होंने आधिकारिक जो थीम है इस साल की वो बताई है, थीम है अलग परिस्थितियां समान आकांक्षाएं। तो इस विषय पर जोर देता है इस साल का ये थीम कि भले ही दुनिया भर के युवाओं की सामाजिक और भौगोलिक स्थितियां अलग हो, लेकिन उनके सपने और जरूरतें एक जैसी हैं।
0: बहुत सुंदर संदेश लिखकर भेजा है, और आप क्या किया जाए।
1: आज थोड़ी हल्की सी फुहार यहाँ पर रिमझिम सी बरसात हो रही है, तो चलिए दोस्तों
0: उसे महसूस करते हैं गीत के माध्यम से।

0: तो चलो चलते हैं
1: साड़ियों के संसार में।
0: हाँ बिल्कुल। अच्छा साड़ियों से संदेश भी आया, लेकिन हम पहले जानकारी दे दें कि ये खंडुआ साड़ी होती क्या है। ओडिशा में इसकी प्रसिद्ध ये साड़ी है, वहाँ की पारंपरिक बांध कला तकनीक से बनाई जाने वाली साड़ी है। वैसे तो ओडिशा के कई क्षेत्र में बुनी जाती है ये वाली साड़ी, लेकिन मुख्य रूप से कटक जिले के नुआपटना और गंगा मणिबंध गाँव में बुनी जाती है।
1: और दीपा इस साड़ी का आध्यात्मिक महत्व भी है। पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी के वस्त्र खंडुआ रेशम से ही तैयार किए जाते हैं, जिन पर जयदेव रचित गीत गोविंद के श्लोक भी बुने हुए हैं।
0: और इक्कत तकनीक से इसमें ताने और बाने के धागों को पहले से बांध कर और रंग कर के पैटर्न तैयार किया जाता है, जिसे बंध कला कहा जाता है। और जो दूसरे ट्रेडिशनल जो सिल्क साड़ियां हैं ना, उनकी तुलना में खंडुआ साड़ी काफी हल्की होती है, जिसे पहनना बहुत आसान होता है। इसके सिल्क और कॉटन दोनों में इसे बुना जाता है।
1: और डिजाइन की बात की जाए तो इसमें मुख्य रूप से हाथी, मोर, कछुआ, शंख, फूल और मंदिर की आकृति यानी टेम्पल बॉर्डर जैसे शुभ प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। और रंगों की बात की जाए तो लाल, पीला, नारंगी और केसरिया जैसे जीवंत रंगों का अधिक इस्तेमाल होता है। और इस विशेष साड़ी के दो और तीन प्रकार हैं, जैसे खंडुआ पाट जो शुद्ध रेशम से बनी साड़ी होती है, इसका उपयोग मुख्य रूप से मांगलिक अवसरों, त्योहारों, विवाह और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है
0: जी। और सूती खंडुआ उसी तरह होती है, लेकिन इसमें शुद्ध कॉटन से बनाई जाती है। ये वाली साड़ी हल्की होती है, ब्रीदेबल यानी कि सांस लेने योग्य। अगर ऐसा नहीं लगना चाहिए कि साड़ी पहन के कुछ भारी सा लग रहा है
1: या चुभ रहा है,
0: वैसा नहीं लगता इसे पहनकर। एकदम आरामदायक होती है ये वाली साड़ी। आप चाहें तो सखियां रोजमर्रा के उपयोग में ले सकती हैं इसको, और गर्मी के मौसम के लिए तो बहुत उपयुक्त साड़ी है ये।
1: और गीत गोविंद खंडुआ, ये खंडुआ का सबसे पवित्र और पारंपरिक रूप माना जाता है। इसके बॉडी या आंचल पर देवनागरी या ओडिया लिपि में गीत गोविंद के श्लोक बुने जाते हैं। इसे मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ के वस्त्रों के रूप में और धार्मिक अनुष्ठानों में पहना जाता है। और एक है टसर खंडुआ, इसमें टसर सिल्क का उपयोग किया जाता है। इसमें साड़ी को एक प्राकृतिक हल्का सुनहरा और मैट टेक्सचर।
0: नहीं पता, केवल साड़ियों के विषय में सुनकर जानकारी बटोरेंगे। आप सिर्फ जानकारी नहीं बटोरेंगे, इस साल उन्हें दिलाएंगे भी।
1: हाँ बिल्कुल, प्रॉमिस चाहते हैं। और एक साथी ने लिखा है कि काश साड़ी परिधान पुरुषों के लिए भी होता, पैंट शर्ट तो महिलाओं के परिधान में सम्मिलित हो चुका है, धोती थोड़ा साड़ी से मैच करती है, पूरी नहीं। पर देखा है ना, आजकल साड़ियों से भी ना पुरुष उसके परिधान बनाते हैं, उसके धोती सिलवाते हैं, कुर्ते बनवाते हैं, जैकेट बनवाते हैं। तो पुरानी अगर साड़ी हो चुकी है तो उससे जो हमारे पुरुष भाई हैं वे भी उससे कुछ कुछ जैकेट्स वगैरह, धोती वगैरह बनवा सकते हैं।
0: बिल्कुल, और वो भी कहीं दिखा सकते हैं कि देखिए हमारा भी अंदाज अलग है,

0: गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो।
1: वंदे मातरम। ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की लेखनी से अवतरित दिव्य रचना जो बनी स्वतंत्रता सेनानियों के लिए तेजोमय प्रेरणा। स्वाधीनता दिवस के पावन अवसर पर सुनिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनुवादों पर आधारित वंदे मातरम एक जय घोष, इस रूपक श्रृंखला की विशेष कड़ी।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली। और एक मैसेज को पढ़ के ना दीपा मैं थोड़ी भावुक हो गई।
1: क्यों?
0: इतना सुंदर मैसेज है। हमारे एक साथी लिखते हैं कि मेरी माताजी के देहांत को 19 साल हो गए हैं, पर आज भी मेरी माताजी के नाम से हर साल एक बार एक साड़ी खरीदता हूँ और यथा उचित प्रसंग नहीं तो उनके जन्म दिवस पर किसी जरूरतमंद बुजुर्ग महिला को ये साड़ी दान में दे देता हूँ। निजी तौर पर जब भी मैं अकेला महसूस करता हूँ तब मेरी माताजी की साड़ी को ओढ़ के सो जाता हूँ, तो मुझे मेरी माताजी की कमी महसूस नहीं होती। इस विषय को आज चर्चा में लाने के लिए आप सभी और विविध भारती का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ।
1: जी, ये कुछ इसी तरह की भावनाएं शायद हमारी बहुत सारी सखियों की भी होती होगी। हम जो हमारे प्रिय हैं, जो हमसे दूर चले जाते हैं, उनकी कोई पहनी हुई चीज सदा हमारे पास रहती, तो एक धरोहर के रूप में
0: हमारे साथ रहती है
1: और याद उनकी ताजा बनी रहती है। तो आपने भी ये अपना अनुभव शेयर किया तो उसके लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं।
0: और भाई देखिए ना, कभी कभी दीपा ऐसा होता है ना कि बहुत सारी साड़ियों के सेल भी लगे होते हैं, उसकी भी सूचना हमें अखबारों से मिल जाती है
1: जी,
0: कि फला फला कंपनी की जो साड़ियां हैं वो बहुत सस्ती और बहुत अच्छी होती हैं, तो उसका हमारे शहर में सेल लग गया, उसमें 50% ऑफ है, तो कभी 25% है, और खासकर बारिश के मौसम में बहुत साड़ियों के सेल लगते हैं।
1: सोनाली, आपका इशारा समझ गए हम, मान गए भाई कि अखबार रोज पढ़ना बेहद जरूरी है,
0: और उसमें सिर्फ सिर्फ साड़ी के बारे में नहीं पढ़ना है, नहीं तो ऐसा है कि उस पन्ना खोल लिया, देख लिया कि कहाँ सेल लगा है।
1: हम महिलाएं यही करती है ना, सबसे पहले उस पन्ने पे जाती है जहाँ पे एग्जीबिशन कहाँ चल रही है, सेल कहाँ चल रही है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं और फिर घर में कहते हैं भाई शनिवार रविवार को हम तो बिल्कुल व्यस्त रहने वाले हैं।
0: नहीं, यानी रंग बिरंगा जो पन्ना होता है ना वो महिलाओं को ज्यादा भाता है। पर ऐसे नहीं है, गृहिणियों को भी सारा पेपर सारा अखबार रोज पढ़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, अखबारों से हमें बहुत बहुत नए नए विषयों की जानकारी मिलती है और बहुत कई बार हम सचेत भी हो जाते हैं दीपा, कि अगर देखिए ना वो जो दुर्घटना घटी, अगर उसमें ऐसा होता यानी कोई मेन होल में गिर गया है, मोबाइल में लगा हुआ था लड़का बच्चा जो था, तो हमें बाहर निकलते वक्त मोबाइल ऐसे मोबाइल में झुककर देखते नहीं जाना है, हमें रास्ते से चलते वक्त सावधानी से जाना है। ये मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे कई सारे ऐसे वाकया होते हैं कि जो हम अखबारों के कारण हम सचेत हो जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और कहीं हमारे शहर के किसी और क्षेत्र में जहाँ बहुत दूर है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हमें सब कुछ पता चलता रहता है, यहाँ तक कि देश विदेश की सारी मुख्य जानकारियां भी हम प्राप्त कर पाते हैं, जो कि ऐसा नहीं है कि महिलाएं हैं तो हमें कुछ बाहर के बारे में ना पता चले, ये जरूरी नहीं है। हर चीज के लिए सतर्क और सचेत रहना आज के जमाने में सबके लिए, उम्र कोई भी हो, बेहद जरूरी है।
0: वैसे दीपा, अखबार केवल कागज के कुछ पन्नों का संग्रह नहीं होता है बल्कि वर्तमान समय का सजीव दस्तावेज होता है। इसमें मौजूद हर तरह का समाचार हमें समाज, देश और विश्व स्तर से जोड़कर रखता है, और जो लोग रोज अखबार पढ़ते हैं वे केवल घटनाओं से परिचित नहीं होते बल्कि बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना भी सीख जाते हैं। और ऐसा होता है ना कि सुबह की चाय की चुस्कियों के साथ जब हम अखबार के पन्ने खोलते हैं तब मानो ज्ञान की एक नई खिड़की खुल जाती है, कहीं विज्ञान की नई उड़ान है, कहीं खेल जगत की नई विजय गाथा है, कहीं संस्कृति की सुगंध है, तो कहीं समाज की चुनौतियों का आईना हमें नजर आता है।
1: ये इसी बात पर देखो एक संदेश आया है, ये संदेश में हमारे श्रोता भाई कहते हैं कि मैं सुबह सुबह हमेशा चाय पीते पीते अखबार पढ़ता हूँ और दोपहर में आराम से क्रॉसवर्ड, जो उसमें सेक्शन होता है जिसमें शब्द खाना पूर्ति करना होता है, वो करता हूँ। इससे मेरे दिन की शुरुआत अच्छी होती है और मूड भी

0: फ्रेश होता है।
1: ये बहुत अच्छी आदत है, ये ना खासकर बुजुर्गों को भी ये करना चाहिए। जो क्रॉसवर्ड होते हैं ना, उससे हमारा दिमाग तेज रहता है, उससे हमारा दिमाग चलता है। तो बढ़ती उम्र के साथ साथ क्या होता है, दिमाग की नसें थोड़ी सी सिकुड़ने लगती हैं, तो क्रॉसवर्ड जरूर हमें बढ़ती उम्र के साथ करना चाहिए। एक हमारे साथी ने लिखा है कि स्कूल में किताब पढ़ने का शौक हुआ स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें, कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उनको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया, जो अब तक साथ है। कितनी अच्छी बात है। वही एक साथी कहते हैं कि अखबार पढ़ना, सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन के प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था। मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया इंग्लिश पेपर पढ़ो, इससे इंग्लिश अच्छी होती है। बस वो आदत दिनचर्या में शामिल हो गई है। बहुत लोग सुबह की चाय के साथ अखबार देखते हैं, जो एक बेहतरीन दिनचर्या है, जो ना सिर्फ देश दुनिया की खबरों से जोड़ता है बल्कि मानसिक विकास में भी मदद करता है।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अखबार जो भाषा का मूक शिक्षक है, इसकी शब्द संपदा हमारी अभिव्यक्ति को निखारती है, विचारों को परिपक्व बनाती है और दृष्टिकोण को व्यापक भी करती है। और संपत्ति लेख जो हम अगर पढ़ते हैं तो उससे हम तर्क करना सीखते हैं, जबकि प्रेरणादायक समाचार जीवन में आशा और उत्साह का संचार करते हैं। और देखो ना सोनाली, आज सोशल मीडिया के तेज बहाव में सूचनाएं क्षण भर में आती जाती रहती हैं, पर लेकिन अखबार सत्य, संतुलन और विश्वसनीयता का दीपक बनकर हमारे विश्वास को प्रकाशित करता है।
1: एक हमारे सखी ने भी लिखा है कि मुझे संपादकीय पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, इसमें तार्किक और गंभीर सोच विकसित होती है। स्क्रीन पर स्क्रॉल करने के बजाय प्रिंट या अखबार पढ़ने से ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ जाती है। वर्षों से सुबह का अखबार निश्चित और शांत होकर पढ़ना चाहती हूँ। सुबह का काम निपटाकर 9 बजे के बाद नाश्ता करने के बाद मैं पेपर पढ़ती हूँ और ज्ञानवर्धन के साथ मेरा बहुत समय अच्छा व्यतीत होता है। किसी कारणवश अगर दिन में पेपर छूट जाए तब भी मुझे समय मिलता है तो रात में मैं पेपर जरूर पढ़ती हूँ।
2: बिल्कुल। और ये संपादीय जो संपादकीय लेख जो है, इसे पढ़ना बेहद जरूरी है बच्चों को भी, क्योंकि अगर आप किसी भी तरीके की प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, कॉम्पिटिटिव और मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पे, तो इसमें ये एडिटोरियल सेक्शन आपको बहुत काम करता है, बहुत मदद करता है जानकारी हासिल करने के लिए। और कहीं पर कुछ ऐसा सेक्शन आता है कि आपको ऐसे या निबंध कहीं पे लिखना है, तो ये खंड आपको आसानी से उसको पार करने में मदद करता है।
1: और आप क्या करना है,
2: हमें तो गीत सुनना है,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो भाई अखबारों से यारी करनी है और थोड़ा ये मोबाइल में भी बैठना जरूरी है, लेकिन स्क्रोलिंग से करना है उतनी नहीं। अगर ज्ञान की जरूरत उसके द्वारा लेनी है तो वो भी लेना जरूरी है। लेकिन एक देखिए संदेश यहाँ पर आया है, हमारे श्रोता ने लिखा है कि अखबार पढ़ना, ये सबसे पहले स्कूल में हर रोज हिंदी की हेडलाइन प्रेयर में पढ़ने के लिए बोला जाता था, और मैट्रिक में स्कूल में टीचर ने बताया था कि इंग्लिश पेपर पढ़ो, तो इंग्लिश इससे हमारी अच्छी हो गई। उसके अलावा एक और संदेश आया है, ये कहता है कि स्कूल में किताबें पढ़ने का शौक हुआ और स्कूल की लाइब्रेरी के कारण, उसके बाद बाहर की किताबें कुछ चुनिंदा लेखकों का पता चला, उसको पढ़ा, फिर अखबार थाम लिया, जो अब तक साथ है।
1: एक साथ ही लिखते हैं, अखबार पढ़ना ये ऐसी आदत है, जिस दिन अखबार की छुट्टी होती है उस दिन बहुत खालीपन लगता है, वो दिन अधूरा लगता है। जो समय अखबार पढ़ने का होता है समय कटता नहीं। मेरा समय दोपहर का है अखबार पढ़ने का, जब काम से फ्री होकर बैठती हूँ तो अखबार पढ़ती हूँ, और इसी समय सखी सहेली कार्यक्रम आता है तो उसको भी सुनते हुए अखबार पढ़ते हुए। अखबार हम जो पढ़ते हैं हमको वही अखबार अच्छा लगता है। जिस दिन गलती से कोई दूसरा डाल जाए तो पढ़ लेते हैं तो मज़ा नहीं आता है उस अखबार। मैंने अपने बच्चों के लिए अंग्रेजी अखबार भी शुरू किया था, दोनों बस स्पोर्ट की खबर पढ़ लेते थे बस, बाकी कुछ नहीं। अखबार पढ़ने की आदत सभी को होना चाहिए, जिससे शहर देश विदेश के समाचार मिलते हैं, जिससे हमारा ज्ञान बढ़ता है।
0: बिल्कुल, और ज्ञान बढ़ाने के लिए मेहनत करना जरूरी है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें, और यही हमारा आज का शब्द भी है। तो बहुत सारे विचार आए हैं, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत सफलता की कुंजी है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कठिन श्रम के बिना तो कुछ भी नहीं मिलता। किसी लक्ष्य को पाने या काम को पूरा करने के लिए किया जाने वाला शारीरिक या मानसिक प्रयास, इसे लोग पुरुषार्थ या श्रम भी कहते हैं, जो सफलता की तरक्की की नींव है। मजदूरी, खेलकूद या खेती जैसे काम जिसमें शरीर की ताकत लगती है, मानसिक श्रम पढ़ाई योजना बनाना या बौद्धिक कार्य जिसमें दिमाग का उपयोग होता है।
1: एक और साथी कहते हैं
0: जी
1: पढ़ना चाह रहे,
0: बस इसमें एक बात और इन्होंने कही है कि इंसान हर कठिनाई का सामना करना सीखता है, मेहनत से व्यक्तित्व का विकास और मजबूती भी आती है।
1: एक कहते हैं कि कहते हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कपाट को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है। यानी इन्होंने पूरा जीवन का सार ही लिख दिया इस छोटे से संदेश में।
0: सही बात है। एक संदेश और ये कह रहा है कि मेहनत हमारा जीवन, मेहनत हमारा नारा, मेहनत में जगमगाता है तकदीर का सितारा। इतिहास गवाह है कि मेहनत हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, बिना मेहनत जीवन में सफलता नहीं, मेहनत सफलता की ऊंचाइयों तक हमें पहुंचने में संभव कर देता है हमारा रास्ता।
1: एक सखी ने लिखा है, हमारी दोनों सखियां मेहनत करके इतने सुंदर और अच्छे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करती है, फिर उन्हें सजाकर प्रस्तुत करती है, हम सभी मिलकर सुनते हैं, उनके बारे में दो शब्द कहते हैं, अंत में हम और आप दोनों ही खुश होते हैं। मेहनत करने के बाद जो मिलता है उसकी खुशी का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए मेहनत तो जरूरी करनी चाहिए। कभी कभी परिणाम देर से मिलता है पर मिलता जरूर है।
0: बिल्कुल सही कहा।
1: और धन्यवाद कहते हैं।
0: बिल्कुल धन्यवाद उन्हें। और देखिए मेहनत सिर्फ सखियां नहीं, आप भी उतनी ही करते हैं। बिल्कुल, कभी कभी तो ऐसा लगता है इस मैसेज को लें, किस मैसेज को छोड़ें, ये भी असमंजसता हमारे सामने आ जाती है। और मेहनत के बगैर तो कहीं कोई सुंदरता आ ही नहीं सकती, जैसे कि इस गाने में ये सुंदरता है।

0: दीपा
1: जी,
0: हमारे इतने सारे श्रोताओं ने, सखियों ने मेहनत पर भर भर के कमेंट्स लिखे हैं। एक साथ ही लिखते हैं कि मेहनत सफलता की पहली सीढ़ी है, मेहनत के बिना कोई भी सपना अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। किसान तपती धूप में खेत में पसीना बहाता है तभी धरती सोना उगलती है। विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई करता है तभी सफलता उसके कदम चूमती है। कलाकार बार बार अभ्यास करता है तभी उसकी कला में निखार आता है। यानी सफलता अचानक नहीं मिलती, उसके पीछे अनगिनत छोटे छोटे प्रयास छिपे होते हैं। याद रखिए, किस्मत का रास्ता दिखा सकती है, अवसर दरवाजा खोल सकता है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का काम मेहनत ही करती है।
1: बिल्कुल सही कहा, बहुत सुंदर बात। और इसी तरह से एक और संदेश आया है, ये कहते हैं कि कभी कभी हम मन में कुछ बातें ठान रहते हैं और कि अमुक काम करेंगे, पर सिर्फ मन में ही सोचते ही रहते हैं और उस कार्य को करते ही नहीं। कार्य सिर्फ सपना बनकर रह जाता है, यानी मेहनत नहीं करने से कार्य सिद्ध नहीं होता है। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्मेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि नाम मनोरथे, यानी कि भाई तभी कोई भी काम पूरा होगा जब आप उसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे।
0: और एक साथ ही कहते हैं कि बिना मेहनत के कोई भी कार्य संभव नहीं है, और इस कड़ी मेहनत से जो प्राप्त होता है उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। परिश्रम से मिली सफलता में जो सुकून है वे कहीं और नहीं है। बेशक सफलता देर से मिले पर निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान बनाने से ज्यादा समय महल बनाने में लगता है।
1: बिल्कुल सही कहा। और एक और संदेश है, ये कहते हैं कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, मेहनत वो सुनहरी कुंजी है जो भाग्य के बंद कबाट को खोलती है, मेहनत ही सफलता का रहस्य है।
0: और दीपा, जब हम कोई व्यंजन बनाते हैं तब भी हमें थोड़ी मेहनत करना पड़ता है।
1: बात तो बिल्कुल सही कही,
0: क्योंकि ऐसा होता है ना कि बोलते हैं कि सिर्फ ये तो 2 मिनट में बन जाएगा। हाँ, बनने में भले ही उसे 2 या 4 या 5 मिनट लगते हैं, पर उसके पीछे जो तैयारी होती है ना, उसमें 1 घंटा चाहिए, कि उसमें

0: जब हमें प्याज काटना होता है, मिर्ची काटना पड़ता है, फिर अगर कुछ हरी धनिया है तो उसे साफ करना पड़ता है, धोना पड़ता है, फिर उसके बाद में फिर बर्तन कौन से, सब चीज़ के जिस चीज़ में बनाना है हमें वो बर्तन अलग अलग चुनने पड़ते हैं, तो उसके पीछे बहुत मेहनत होती है, यानी मेहनत के सिवा हमारा व्यंजन भी नहीं बन सकता।
1: बिल्कुल सही कहा भाई, मेहनत हम करते चलेंगे लेकिन साथ में कैसे बनाना है वो भी सीखते चलेंगे। तो ओट्स की एक रेसिपी आई है सोनाली, ये इसमें सामग्री दिया है, ओट्स को लेना है आधा कप, पानी या दूध ले सकते हैं आप 1 से 1.5 कप तक, सब्जियां लेनी है प्याज टमाटर गाजर या मटर बारीक कटी हुई, आपके पसंद की और भी सब्जियां आप बढ़ा सकते हैं, तड़के और मसाले के लिए घी या तेल ले लें, जीरा हल्दी नमक और लाल मिर्च। बनाने की विधि है कि कढ़ाई में घी या तेल गर्म करें, जीरा और प्याज डालकर हल्का भुनें, बारीक कटी सब्जियां और टमाटर भी डालें, हल्दी नमक और मसाले डालकर इसको मिलाएं, ओट्स डालकर 1 मिनट तक और भुनें। अब पानी या दूध डालकर उबले इसमें उबाल आने दें, 3 से 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं, ये थोड़ा सा गाढ़ा होता चलता चला जाएगा, ये ओट की तासीर, आप जितना जितना पानी डालेंगे वो सोखता चला जाएगा, तो आप ये समझ लीजिए एक तरह की खिचड़ी की तरह ही हो गई। अब इसमें ओट्स के साथ आप चाहें तो थोड़ा हुआ भीगा हुआ इसी रेसिपी में भीगी हुई दाल डाल सकते हैं, जैसे मोगर की दाल या मूंग की दाल की जो छिलके वाली मूंग की दाल है वो भी डाल सकते हैं, तो ये अपने आप में एक पूर्ण आहार बन जाएगा।
0: और एक साथी ने लिखा है कि ओट्स को कढ़ाई में भून ले, उसे ठंडा कर ले, उस भुने हुए चने के साथ उसे पीस ले, आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है, और इसी आटे से आप नमकीन पराठे और रोटी बना सकते हैं, ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज लगती है। देखिए ना, ओट्स के बहुत सारे व्यंजन बनाए, ओट्स का चीला बनाया जा सकता है, ओट्स को सूखा ही हमें पीस लेना है, उसमें फिर आप थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा चावल का आटा मिला दे, उसमें अदरक लहसुन मिर्ची की पेस्ट डाल दे, और उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसका घोल बना के, और उसके चीले बना सकते हैं, गरम गरम भी अच्छे लगते हैं। उसके बाद में इसी मिश्रण में अगर आप थोड़ा सा रवा डाल के, दही डाल के उसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दे, और जब बनाना हो तब उसमें फ्रूट सॉल्ट डाल के उसका हम ढोकला भी बना सकते हैं।
1: बिल्कुल। तो एक और संदेश देखिए, ये एक छोटी सी रेसिपी आई है सोनाली, कहते हैं कि ओट्स का चीला बनाने के लिए आप 1 कप ओट्स लें और 1 कप बेसन दोनों मिक्स कर लें, इसमें लौकी प्याज टमाटर हरी धनिया, आप चाहें तो गाजर वगैरह भी कीस के कद्दूकस करके डाल सकते हैं, घी लगाकर इसको चीले बनाएं और हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, और जब ये चीले बनाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा घर में बच्चों को कि आपने इन्हें ओट्स का चीला खिला दिया है ना?
0: बहुत अच्छा लगता है ओट्स, और इसकी खीर भी बहुत अच्छी बनती है, कि घी में थोड़ा सा ओट्स को भून लिया और उसके बाद में उसमें दूध डाल दिया, अगर आप उसमें शक्कर नहीं डालना चाहते हैं तो उसमें खजूर है ना, खजूर को थोड़ा सा घी में ऐसा नरम करके और उसे मिक्सी में से चला के उसकी जो पेस्ट है खजूर पेस्ट डाल के उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के दे सकते हैं, तो ये बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, ऐसी पौष्टिक चीजें जब घर में बनती है ना, और जब घर उस खुशबू से महकता है, उसका हम वर्णन नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल सही। और ओट्स का सत्तू बनाना भी बताया है हमारे एक श्रोता ने, कहते हैं कि ओट्स को कढ़ाई में भून लें, उसे ठंडा कर लें, इसे भुने हुए चने के साथ पीस लें, आपके लिए स्वादिष्ट पौष्टिक सत्तू आटा तैयार है, इस आटे से आप नमकीन पराठे बनाइए या रोटी बनाइए, ये सुपाच्य भी है और खाने में बहुत लजीज है।
0: और अब क्या करना है,
1: देखिए क्या करते हैं।

0: दीपा हमारे एक साथी लिखते हैं कि साथे ओट्स में कुछ भी मिक्स नहीं होता, ये केवल जई ओट्स शुद्ध रूप होते हैं। हालांकि स्वाद और सेहत के लिए लोग इसमें दूध, फल और मसाले मिलाते हैं। मीठे ओट्स में मिलने वाली चीजें, उन्होंने कहा कि उसको पकाने भिगाने के लिए दूध या पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसमें केला, सेब, स्ट्रॉबेरी या आम, मेवे या बीज, बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, कद्दू के बीज या मीठेपन के लिए उसमें शहद, गुड़ या मैपल सिरप डाल दिया जा सकता है, और इस तरह से स्वादिष्ट ओट्स की रेसिपी बन सकती है।
1: तो आज तो बहुत सारे ओट्स बनाने के तरीके हमने भी सीख लिए हैं।
0: बहुत सारे सीखे, श्रोताओं से हम बहुत कुछ सीखते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। और देखो, अब वक्त कहता है कि आज तो हमें लेना होगा विदा।
0: पहले श्रोताओं को धन्यवाद कह देते हैं। सारे श्रोताओं को दिल से धन्यवाद इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स लिखने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। और अब लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं लेखक निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग।
1: मैं एक रेडियो स्टेशन गया, एफएम रेडियो तब नए नए आए थे। जीवन का मेरा पहला अनुभव था कि मैं एक रेडियो स्टेशन के अंदर गया और उन्होंने ऑडिशन के लिए बुला लिया। मैंने जस्ट एक मेल भेजी थी उनको कि मैं आना चाहता हूँ, ऑडिशन देना चाहता हूँ। उन्होंने ऑडिशन में बुला लिया। मैंने जीवन में उससे पहले कभी कोई रेडियो स्टेशन नहीं देखा था। मैंने वहां जाके विभत्स ऑडिशन दिया, एक बहुत ही भयानक, अभी भी सोचता हूँ तो मैं सिहर जाता हूँ। मैं एक किरण श्रीधर नाम के आरजे हुआ करते थे, अभी भी हैं, तो मैं अभी भी मतलब कभी कभी किरण को नतमस्तक हो जाता हूँ कि उसने मुझे आधे घंटे कैसे झेला था उस स्टूडियो के अंदर। मैं तो नहीं झेल सकता था अगर कोई मेरे जैसी हरकतें करता वहां पे। तो मैंने बहुत खराब ऑडिशन दिया, बहुत ही ज्यादा खराब। मतलब मैं स्टूडियो के बाहर जाते जाते ही समझ गया था कि ये लोग मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन यहाँ मेरी कहानी में एंट्री होती है विविध भारती की। तो विविध भारती मैंने सुनना शुरू किया मेरे ख्याल से जब मैं नवीं में फेल हुआ था उसके बाद, क्योंकि रात में छाया गीत और ये सब आते थे, मुझे बड़े अच्छे लगते थे, थोड़े सुकून वाले गाने होते थे।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि रात में आपको थोड़ा सा सुकून चाहिए था क्योंकि तपता हुआ दिन निकाला है सारे स्कूल से लेके पड़ोस तक। तो वहां मैंने विविध भारती सुनना शुरू किया, जहां मैं आप सबको सुनता था। कमल शर्मा थे, आप हैं और बहुत सारे उद्घोषक। मुझे अभी भी याद है आप लोगों का एक होली का कार्यक्रम आया था जो बहुत बहुत मजेदार था। मैंने उसको रिकॉर्ड करके रखा था एक कैसेट में। तो मैं बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड करता था। अमीन सायानी साहब को मैं मिमिक किया करता था। तो मुझे लगा था रेडियो में तो मैं जाके मतलब तूफान ही मचा दूंगा क्योंकि जैसे कार्टूनिंग में मैंने तूफान मचाया हुआ है अपने दिमाग में। तो जब रेडियो में गया और मैंने ये पूरा ऑडिशन खराब कर दिया, खराब करने के बाद जब मैं बाहर निकल रहा था तो जो आरजे थी, जैसा कि होता है, एक कुछ तो गलत इन्फॉर्मेशन गई एकदम फट करके ऑन एयर। और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये मन्ना दे की आवाज है। तो उनके जो क्रेडिट थे उसमें क्रेडिट गलत गया हुआ था। तो उन्होंने बोला पक्का? मैंने कहा आप चेक कर लीजिए, इंटरनेट था, उन्होंने तुरंत चेक किया, उन्होंने तुरंत मिस्टेक करेक्ट किया। और उसके बाद वो मन्ना दे पर कार्यक्रम था और मैंने उनको लगातार ट्रिविया देना शुरू किया, वो प्रोग्राम ठीक हो गया। और उनको लगा कि ये तो ठीक है, आया था ऑडिशन देने लेकिन आदमी काम का। लेकिन वो छह महीने तक मुझे हायर नहीं कर सकते थे। ऑडिशन में अगर आपने गड़बड़ कर दी, उनका कुछ तो रूल था, वो छह महीने तक हायर नहीं कर सकते थे। मैंने छह महीने से उंगलियों पे गिने हैं, छह महीने मुझे पता है मैंने कैसे गिने। और मैंने ये भी दिमाग नहीं लगाया कि छह महीने ऐसे नहीं होता है, छह महीने वर्किंग डेज के हिसाब से होता है। मैंने छह महीने डेट टू डेट लगा के
2: और दिन बढ़ गए उसके बाद।
1: नहीं नहीं कम हुए, क्योंकि वर्किंग डेज के हिसाब से तो छह महीना अगर काउंट करेंगे तो वो सात महीना हो जाता है, सैटरडे संडे हटा के, नेशनल हॉलीडेज हटा के। मैंने वो गिने ही नहीं। जस्ट जिस दिन छह महीने पूरे हुए, मैं बैठा, मैंने कॉमिक्स बनाई एक पेज की कि मैंने क्या क्या गड़बड़ किया रेडियो में आपके यहाँ आके, लेकिन मुझे दूसरा चांस चाहिए। वो कॉमिक्स बना के मैंने प्रिंट किया एक पेज का और मैंने उनको भेज दिया। तो मुझे किसी अनजान नंबर से कॉल आया कि अच्छा आप कार्टून बनाते हैं। मैंने कहा हाँ, तो आप आके मिलेंगे हमसे? मैं वेट कर रहा था रेडियो स्टेशन से कॉल आएगी, लेकिन ये किसी एड एजेंसी से कॉल थी। वो रेडियो से किसी एड एजेंसी को चला गया था मेरा मेरी कॉमिक। तो वो रेडियो की जो प्रोग्रामिंग डायरेक्टर थी, उनके हस्बैंड थे, उनकी एड एजेंसी थी, उन्होंने मुझे फ्रीलांस दे दिया। वो फ्रीलांस निपटाते निपटाते तक मुझे रेडियो से कॉल आया कि अभी छह महीने पूरे हुए तुम्हारे, अब आ जाओ। तो वो कॉमिक्स की बदौलत मुझे थोड़ा कॉमिक्स का काम मिला, थोड़ा रेडियो को मिला और मेरा रेडियो में पदार्पण हुआ इस तरह से। और फिर मैंने रेडियो शोज भी किए। फिर एक वही है ना कि एक फेलियर के बाद जो चमड़ी मोटी हो जाती है वो,
2: करेक्ट,
1: हाँ वो चमड़ी मोटी हो गई। तो रेडियो शोज भी किए, प्रोड्यूस किया बहुत कुछ, वॉइस ओवर्स किए, फिर तो शर्म भी झिझक भी चली गई माइक के सामने की।

0: तो इस तरह से रेडियो का करियर शुरू हुआ मेरा।
1: तो यहाँ से रेडियो शुरू हो गया
0: जी,
1: है ना। और ये यात्रा मुंबई तक कैसे आई?
0: रेडियो से रेडियो। हाँ, मुझे मुंबई आना ही था, क्योंकि क्या हो रहा था बैंगलोर में, धीरे धीरे जो वहाँ की प्रादेशिक भाषा है कन्नड़ा, उसका संगीत बढ़ रहा था, जो कि बढ़ना ही चाहिए था। वहाँ कंपटीशन भी बढ़ रहा था, नए स्टेशन आ रहे थे, और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब मुझे मुंबई चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं बैंगलोर में भी नेशनल प्रोग्रामिंग हैंडल करता था उस स्टेशन में, और यहाँ से मैं बैंगलोर से वॉइस करके उनको भेजता था मेरी वॉइस हिंदी में। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जगह शायद मुंबई है। तो हमारे स्टेशन में उस जमाने में लाफ्टर चैलेंज बड़ा चला हुआ था, तो रेडियो में भी एक ऐसा लाफ्टर चैलेंज का रेडियो वर्जन चल रहा था हमारे स्टेशन में, जिसके जज थे विनय पाठक। तो मैंने विनय पाठक का नंबर मेरे पास था, क्योंकि उनका मैं सैटरडे के सैटरडे रिकॉर्ड किया करता था। उसके अलावा जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था, और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी, क्योंकि हिंदी सिनेमा मैं बेहतर तरीके से समझता था। तो इस बीच मुझे मन्ना दे साहब का एक पूरा 1.5 घंटे का कार्यक्रम प्रोड्यूस करने मिला, जिसमें मन्ना दे साहब खुद आए थे। तो वो मेरे लिए मेरा पहला जो कहना चाहिए सेलिब्रिटी मोमेंट था वो।
1: बिल्कुल
0: हाँ, मन्ना दे साहब से मिलना, मधुशाला के CD पे उनसे साइन कराना, और प्रोग्राम के बाद जब मैं उनके साथ बैठा कुछ आधे घंटे, उनके साथ थोड़ी बात बात की, तो उन्होंने बोला यार ये सब सवाल तो अंदर करने चाहिए थे, अंदर वालों ने तो किया ही नहीं। तो उससे और मेरे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा बूस्ट आ गया। उसके बाद में उनके साथ बराबर टच में बना रहा। मेरे ख्याल से 1 मई को उनका जन्मदिन होता है,
1: और
0: हर 1 मई के 1 मई में उनको कॉल किया करता
1: था। क्या बात है, मैं भी
0: तो और मुझे लगता है कि उनके जैसा गायक ना कोई आया ना कोई आएगा। तो ये हुआ था। इसके अलावा जितनी भी फिल्में रिलीज होती थी या कोई कलाकार आ रहा होता था, तो मुझे वो जिम्मेदारी दे दी गई थी कि भाई तू इनका इंटरव्यू कर लिया कर, तुझे जो जो पूछना है पूछ लिया कर, और बाद में पैकेज करके हम लोग इसको चला लिया करेंगे स्टेशन। तो मुझे एक बार आशा भोसले जी का इंटरव्यू करने मिला, और मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने आधे घंटे इंटरव्यू किया, और जब फोन कटा मैंने देखा मैंने रिकॉर्ड बटन दबाना ही मैं रिकॉर्ड बटन दबाना ही भूल गया था। और वो बड़ी खुश थी कि अरे तुम्हारी तो रिसर्च बड़ी अच्छी है। मैंने कहा मैंने ऑल इंडिया रेडियो सुन के ये रिसर्च आई है। तो फिर मैंने उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्यार से डांटा, फिर बोली अभी 10 मिनट, अभी आधे घंटे नहीं मिलेंगे। फिर वो दोबारा हमने रिकॉर्ड किया।
1: मुझे लगता है कि यहाँ एक गाने की गुंजाइश बनाई जाए, तो बोलिए कौन सा गाना होगा?
0: तो मन्ना दे साहब का मेरा सबसे प्रिय जो गीत है, मेरे ख्याल से सबका ही होगा, जब हम मन्ना दे साहब के बारे में सोचते हैं, तो तू प्यार का सागर है, सीमा फिल्म शंकर जयकिशन।
1: हाँ बिल्कुल,
0: शैलेंद्र।
1: सुनते हैं ये गाना
0: जी।

0: तो ये सब एडवेंचर चल रहे थे। इस बीच में मुझे ऐसा लगा कि मुझे बंबई आ जाना चाहिए। बंबई में एक टीवी चैनल था, अभी भी है, उसमें फिल्मों के स्पूफ चला करते थे, फुली फालतू,
1: बिल्कुल।
0: तो वो मुझे बहुत पसंद था, वो मैं रेडियो में कर रहा था। मेरे पास एक मिमिक्री आर्टिस्ट था, मैं था, हम दोनों मिमिक्री कर करके कुछ एक
1: बना रहे,
0: 10-12 मिनट का प्रोग्राम बना लेते थे संडे के संडे। तो मुझे ऐसा लगा कि अब जो अगला कदम है वो यही है कि अब मैं वहां जाऊं, उस चैनल में जाऊं और मैं बोलूं मैं ये करता हूं। तो मैंने मेरे सैंपल्स बनाए, वॉइस ओवर्स किए, ये वो करके पैकेज करके उनको भेजा। मुझे वहां से बुलावा भी आ गया, तो मैं यहां आया। यहां आया तो जिसने मुझे बुलावा भेजा था उसने नौकरी छोड़ दी थी। तो मैं यहां आया और मैं भटकता रहा 3 दिन बंबई में। विनय पाठक को मैंने कॉल किया, विनय जी ने मुझे बुलाया। वो लोग द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो किया करते थे, तो उन्होंने बोला यहाँ आओ, राइटर्स से मिलो। वरुण ग्रोवर वो लिखा करते थे,
1: बिल्कुल उस समय
0: राहुल और वरुण की जोड़ी हुआ करती थी उस टाइम। राजेश देवराज हेड राइटर होते थे, तो अब राजेश देवराज बहुत अच्छे दोस्त मित्र हैं, लेकिन उस समय उनसे मिलना नहीं हो पाया था मेरा। मैंने सिर्फ सुना था कोई देवी नाम के एक लेखक हैं जिनसे तुमको मिलाना है, लेकिन वो है नहीं। मेरा बड़ा एक रहस्यमय ऐसा किरदार बन गया था मेरे दिमाग में, देवी कौन होंगे। बाद में मुझे पता चला राजेश से मिलने के बाद कि यही है देवी। तो और विनय सर बहुत सपोर्टिव थे, तो मतलब जरा भी मुझे दिक्कत नहीं आई। उन्होंने बुलाया, मैं स्टूडियो गया, मेरी लाइफ का मैंने पहला शूट देखा। कीकू शारदा थे वहां पे, बहुत सारे लोग थे, और मुझे लगा यार ये जगह है जहां मुझे आना है, ये चीज मुझे करनी है। वो कभी हो नहीं पाया, कॉमेडी शो में कभी नहीं कर पाया विनय सर के साथ में। हम मिलते रहे, 2-3-4 बार मिले उसके बाद। अभी तो मुझे लगता है उनसे मिले मुझे 20 साल हो गए। तो वो सब करके मैं यहाँ से गया और मुझे लगा कि मुझे बंबई चल पड़ना चाहिए, बैग पैक कर लेने चाहिए बैंगलोर से। तो बैग पैक किए, यहाँ एक दूसरा रेडियो स्टेशन था जहाँ से मुझे ऑफर थी और ठीक ठाक ऑफर थी, तो मैं वो छोड़ के यहाँ आ गया और मैंने कहा मैं रेडियो करता हूँ। तो रेडियो में फिर बहुत सारी मज़ेदार चीज़ें हुई। सुनील ग्रोवर के साथ मैंने बहुत काम किया उस समय में, लल्लन नाम का एक हमारा शो हुआ करता था। वो जो सारी चीज़ें मैं टीवी में करना चाहता था वो मैं फिर रेडियो में करने लगा और मेरा पेट भर गया उस चीज़ से 4-5 महीने में। मैंने कहा अगर यही करना है तो
1: क्या
0: मजा नहीं आएगा। हाँ, ये वही सर्कल वाली बात हो गई ना कि उसी सर्कल में आप फिर से भागने लग गए, तो अब इससे ज्यादा क्या होगा। तो फिर ऐसा लगा कि मुझे एनिमेशन करने का बहुत मन था और किसी के थ्रू, एक जान पहचान के थ्रू मैं वहां पहुंचा। मुझे करीब 8-9 घंटे बाहर बिठा के रखा गया स्टूडियो के, बिठा के नहीं रखा गया बोलना चाहिए उसको, वो लोग बिजी थे और मैं बिना खाए पिए मैं बैठा रहा बाहर। और फिर वो आए, वेंकटेश गायकवाड़ नाम था उनका, है अभी भी, वेंकटेश गायकवाड़ नाम है उनका। उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया था वेंकटेश ने,
1: वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर,
0: बहुत ही जबरदस्त कैरेक्टर। तो वेंकटेश गायकवाड़ अपने आप में एक लेजेंड, लेकिन मुझे ही नहीं पता था। तो और वो जीनियस, मतलब मैड जीनियस जो बोलते हैं ना, मैड जीनियस थे वो। तो रैंडमली आए, बोले कुछ खाया तूने? मैंने कहा मैंने खाया है, तो सैंडविच खाते हैं चलो। उन्होंने सैंडविच खाते खाते बात की, उन्होंने बोला तू क्या कर सकता है? तो मैंने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। तो वो मुंबई के साथ मेरा पहला साक्षात्कार। फिर उन्होंने बोला तू करना क्या चाहते हैं? मैंने कहा मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे और गालियां दी। उन्होंने कहा फिल्म मेकर क्या, प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना

0: चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्ममेकर क्या होता है? तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, मैं लिखना भी चाहता हूँ, और मौका मिला तो प्रोड्यूस भी करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मेरा बहुत मजाक बनाया, उन्होंने बोला ये सब हम भी चाहते हैं लेकिन हम
1: नौकरी कर रहे हैं
0: नौकरी कर रहे हैं हम लोग, तू यहाँ क्या करने आया? अगर तेरा ये सपना है तो जा वहां पे बन किसी का थर्ड असिस्टेंट, उठा सबके जूते चप्पल, वहां से शुरू होती है जर्नी, हम तो ये करके आए हैं। उन्होंने काफी बड़े डायरेक्टर्स को असिस्ट किया हुआ था उस समय तक, तो ये करना पड़ेगा, ये रास्ता है। मैंने कहा ये तो नहीं हुआ मेरे से, क्योंकि रेडियो में मैं बहुत अच्छा काम करके आ चुका था, कॉमिक्स में ठीक ठाक काम कर चुका था, तो दम्भ नहीं था, गर्व था अपने काम पर। तो ये भी था कि यार ये मैं पता नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। मतलब मैंने देखे किस तरीके से लोग असिस्टेंट डायरेक्टर्स के साथ बर्ताव करते हैं, मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि लाख चमड़ी मोटी सही लेकिन इतनी मोटी अभी भी नहीं हुई है। और हम छोटे शहर से आते हैं तो हमारा गर्व का जो परसेंटेज है थोड़ा ज्यादा भी होता है। तो मैंने कहा ये तो नहीं करूंगा मैं, तो आप बताओ क्या करना है? तो उन्होंने कहा प्रोमो बनाना जानता है तू? तो मैंने कहा जानता तो नहीं लेकिन बना लूंगा मैं। तो उन्होंने एक एनिमे आता था उस समय में, उसका मुझे एक दो तीन एपिसोड दिए, उन्होंने कहा कि इसका प्रोमो बना के लिया। तो मुझे ना एडिटिंग आती थी ना कुछ आता था, मुझे साउंड आता था क्योंकि मैं रेडियो से था। तो मैंने सबसे पहले किया कि मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसको मैंने अशोक कुमार की आवाज में खुद ही रिकॉर्ड किया, और फिर उसके ऊपर एक एडिटर के साथ बैठ के उसको एडिट लगाया एक रात में, और दूसरे दिन सुबह मैं पहुंच गया वापस। मैंने कहा ये प्रोमो हो गया, इतनी जल्दी? मैंने कहा मुझे आना है तो मेरे पास टाइम नहीं है ज्यादा, अगर मैं यहां नहीं आऊंगा तो मुझे रेडियो में फंसे रहना पड़ेगा। उन्होंने देखा, उन्होंने कहा एक आवाज किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। उन्होंने कहा स्क्रिप्ट किसकी है? तो मैंने कहा मेरी है। अरे ठीक है, तू हायर हो गया। तो इस तरीके से मैं टीवी में आ गया। बहुत बहुत घिसाई हुई टीवी में भी, ऐसा नहीं है कि चीजें आसान थी, मगर ये था कि मजा था उस काम में, बहुत मजा था। और लोग सब हम लोग जैसे ही थे, सब पागल थे, सब यंग लड़के थे, और सबके दिमाग अलग अलग तरीके से चलते थे। किसी को म्यूजिक बहुत अच्छा समझता था, किसी को एडिट बहुत अच्छा समझता था, मैं थोड़ा बहुत वॉइस करता था, लिखता था, मुझे एडिट नहीं समझ में आता था। तो ये सब हम लोग एक दूसरे के पूरक हो गए, और वो किया मैंने, वो करीब 1-1.5 साल किया मैंने।
1: यहां एक गाना सुनते हैं।
0: जी बिल्कुल।
2: Thank you.

0: और जावी जाफरी वाला शो कैसे आया?
1: वो तो बहुत बाद, वो तो इसके थोड़े बाद में तो वो उसकी भी बड़ी मजेदार सी कहानी है। तो ये करते करते क्या हुआ कि पूरी टीम बाहर चली गई और एक नया चैनल आया। इस नए चैनल में अलग तरीके की प्रोग्रामिंग थी, क्योंकि मैं प्रोमोस करता था और मैं बहुत आलसी हो चुका था तब तक, तो मैं प्रोमोस बनाना बंद कर चुका था। मैं लिखता था सिर्फ, मैं प्रोमोस लिख देता था और जाके सिर्फ एडिट चेक कर लेता था जो मेरे दोस्त बना रहे होते थे उसका। तो इन्होंने मुझे बोला यहाँ एडिट कर, यहाँ भी आ जा प्रोमो करने के लिए। तो मैं वहाँ प्रोमो करने के लिए गया, वहाँ बातचीत चल रही थी, एक वो लोग एक थ्रिलर बना रहे थे, पीरियड थ्रिलर, दरिबा डायरीज। तो दरिबा डायरीज का ये हो रहा था कि आइडिया बहुत सॉलिड था लेकिन उसकी स्क्रिप्ट उनको वैसी नहीं मिल रही थी। तो वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि अरे कोई थ्रिलर लिखने वाला मिल जाए तो। तो मेरे कान खड़े हो गए, मैंने कहा मैं लिखता हूँ, मैं लिख के दूँ। तब तो मैंने लिखा नहीं था थ्रिलर कोई भी,
0: ऐसी बोल दिया।
1: हाँ मतलब क्या होगा, रिजेक्ट करेंगे, उससे ज्यादा क्या है, ऑडिशन देना है ना। तो उन्होंने कहा तू लिखेगा, तू तो बच्चों का शोज वगैरह करता है, तू तो बच्चों के चैनल से आ रहा है। तो मैंने कहा उससे आपको क्या मतलब है, मैं लिख के देता हूँ, नहीं पसंद आए तो मत यूज कीजिएगा। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे शर्लक होम्स बहुत पसंद है, मुझे पीरियड सेटिंग बहुत पसंद है, दरिबा मुझे समझ में आता है। तो मैंने एपिसोड नंबर

0: 16 लिखा उसका, जो उसका पायलट बना बाद में।
1: ओके
0: हाँ, उनको इतना पसंद आया कि उसमें कोई नोट्स नहीं था। अभी भी मैंने वो डॉक्यूमेंट मेरे पास रखा है जिसमें लिखा है कि दिस इज हाउ स्क्रीन प्ले शुड बी रिटन।
1: वाह वाह,
0: ये नोट के साथ मेरे पास वो वापस आया। वो एक्चुअली आना नहीं चाहिए था मेरे पास वापस। वो कोई बीच में एग्जीक्यूटिव था जिसने बिना पढ़े फॉरवर्ड कर दिया ये सोच के कि इसमें नोट्स होंगे। और मैंने कहा यार इसमें तारीफ आ गई है गलती से। तो अब उसके बाद उसके जो प्रोड्यूसर्स थे उनका ये था कि तू और लिख ले इसमें। तो मैंने 3 एपिसोड्स लिखे, 2 एपिसोड किसी और के लिखे हुए डॉक्टर किए, किसी एपिसोड में डायलॉग्स लिखे। तो उनको मेरा लिखा हुआ काम पसंद आने लग गया जो मैं शो के लिए कर रहा था। तो मुझसे पूछा गया कि तुम कुछ शो पिच करना चाहोगे क्या हमको। तो मेरे पास एक शो था जो मैं, वो काफ़ी बड़ा शो था, वो या तो एनिमेशन होता या कॉमिक्स होता, लेकिन इस पर्टिकुलर चैनल में बड़े शोज बन रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है मेरे पास 2 शोज हैं, मैं आता हूँ आपको पिच करता हूँ। तकदीर ऐसी थी कि मैंने जो पहला शो पिच किया, हम एंटर कर रहे थे स्टूडियो में मीटिंग रूम में, 20 सेकंड में शो चैनल ने खरीद लिया मेरे से। 20 सेकंड मैं अंदर भी नहीं पहुंचा था, मैं बैठा भी नहीं था। उन्होंने कहा हम लोग ये कर रहे हैं, दूसरा सुना भी मत, हम यही करते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं तो अभी सोच के चल रहा था कि 3 महीने तो जदोजहद में गुजरने वाले हैं, ये सारा शॉर्टकट हो गया एकदम से।
1: बिल्कुल।
0: तो मुझसे पूछा गया कि एक्टर्स कौन रहेंगे इसमें। मैंने एक्टर्स के नाम दिए कि ये नसीर साहब कर सकते हैं। विलन के लिए मेरे दिमाग में हमेशा जावेद जाफरी का नाम था। तो वो जावेद भाई का मैंने नाम लिया कि, तो उन्होंने बोला कि जावेद इज डूइंग अ शो विद अस, हमारे साथ एक शो कर रहे हैं जावेद भाई, लेकिन हमें लगता है कि इसको थोड़ा एडिट की जरूरत है, तू देखेगा क्या। तो इतना कॉन्फिडेंस उनको मेरे पे आ गया था। एक तो उनको ये पता था कि मैं रेडियो से आ रहा हूँ, मुझे सिनेमा समझ में आता है, मुझे पुराने फिल्म और पुराने गानों की समझ है, ये सब उनको पता था। तो मुझे उनका एक एपिसोड दिखाया गया, डिस्को डांसर का एपिसोड था।
1: बिल्कुल, वो सिनेमा की बातें कर रहे थे प्रॉपर, वही शो की बात हो रही है,
0: वही शो की बात हो रही है। तो डिस्को डांसर का एपिसोड था जो मैंने देखा, जो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि मुझे जावेद भाई के 2 शोज, एक शो उनका हुआ करता था फ्लैशबैक और एक काउंटडाउन शो हुआ करता था, ये 2 मैं देख के बड़ा हुआ था। मैं ऐसा कुछ करना चाहता था जो मैं रेडियो में कर रहा था।
1: Right.
0: अचानक मेरे सामने ऐसे थाली में सजा के एक शो आता है और बोलते हैं ये जावेद जाफरी कर रहे हैं, तुम क्या करना चाहोगे इसमें। तो फिर तो मैं लालची हूं, मैं सब करना चाहता था। मैं लिखूंगा भी, मैं डायरेक्ट भी करूंगा, मैं एडिट पे भी बैठूंगा। और नसीब से वो चीज मेरे प्लेट में आके गिर गई। तो मैं जावेद भाई को मिला जाके, उनको लगा ये नया लड़का है, इसको क्या ही पता होगा। तो उन्होंने कुछ बहुत ऑब्स्क्योर फिल्मों के रेफरेंस के साथ में मेरे साथ डिस्कशन शुरू किया। तो उसमें एक फिल्म है जिसका नाम है फिल्म ही फिल्म।
1: बिल्कुल बिल्कुल। हाँ।
0: उन्होंने ऐसे बात शुरू की कि राज कपूर की एक फिल्म है जिसमें एक डॉग है जो राज कपूर से बात करता है। मैंने कहा वो राज कपूर की फिल्म नहीं है, वो एक्चुअली फिल्म ही फिल्म नाम की फिल्म है जिसमें मोन्टाजेस हैं अनमेड फिल्मों के फुटेज लेके। तो उन्होंने बोला तुमको पता है। तो मैंने कहा मुझे पता है, मैंने देखी है फिल्म। ऐसे 2-3 बहुत भयानक अंदरूनी फिल्मों की उन्होंने बात की, वहां हमारा आइस ब्रेक हो गया। वहां उनको लगा कि
1: आता है इसको,
0: इसको कुछ तो पता है, अगर सब पता नहीं भी है तो। तो उन्होंने भी फिर टेस्ट दिया मुझे, धर्मवीर मनमोहन देसाई की फिल्म है, तो उनको धर्मवीर का एपिसोड करना था। उन्होंने कहा इसका तू स्क्रिप्ट लेके आ, फिर देखते हैं। तो मैंने धर्मवीर देखी कुछ 6-7 बार, मुझे बहुत मजा आया, पहले भी देखी हुई थी। और मनमोहन देसाई साहब के बारे में मुझे पता था, मुझे बहुत सारी उस फिल्म के बारे में ट्रिविया वगैरह पता थे। तो मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी, उसके साथ में थोड़ा बहुत जो एनिमेटेड जोक्स हैं वो जोक्स डाले उसमें, कि कैसे टिकर आएगा, टिकर में जब उस समय में बाघों की गिनती कम हो गई थी, 1411 बच्चे थे इंडिया में, तो उसमें वो शेर को प्राण मार देते हैं। तो हमने ऐसे काउंटडाउन रखा था कि जितने शेर मरते हैं ना हम 1411 से कम करते हैं ग्राफिक्स में।
1: अच्छा तो हाँ, ये पंच,
0: हाँ, तो ये सब पंचेज उसमें मैंने भरे। और ये पंचेज थोड़े नए जमाने के थे ना, क्योंकि हाँ टिकर विकर नहीं थे पहले, जब फ्लैशबैक वगैरह आ रहे थे तो टिकर में ये सब मस्ती नहीं हो सकती थी, एनिमेशन नहीं हो सकता था उनमें। तो मैंने उनको बताया ये ऐसे करेंगे, फिर ये होगा, फिर वो समुराई सोर्ड है तो हम उसका एक टेलीशॉपिंग नेटवर्क का एड बना देंगे कि वो समुराई नहीं बोलते ना प्राण साहब, समुराई कला बोलते हैं। तो मैंने कहा समुराई कला कैसे सीखे, रैपिडेक्स समुराई कोर्स का एक हम ये बनाएंगे एड। हाँ तो ऐसे करके मैंने उनको 5-6 गैग्स बताया कि ये गैग्स हम लोग हर ब्रेक के पहले करेंगे।
1: हाँ,
0: तो एक फेक एड आएगा, उसके बाद असली एड,
1: असली एड आएगा।
0: हाँ, तो उनको आइडिया जम गया, वो आइडिया मेरे लिए लैंडमाइन साबित हुआ, क्योंकि वो आइडिया उनको इतना जम गया कि वो अब हर एपिसोड में हमें करना पड़ता था। तो किसी एपिसोड में मिलते हैं ब्रेक के बाद था ही नहीं हमारे शो में, 26 एपिसोड में, 26 एपिसोड, हर एपिसोड में 4 ब्रेक्स, तो 100 ऐसे एड्स
1: लिखने
0: इन आउट

0: जाते हैं आके, तो वो जो एक रिश्ता बना मेरे ख्याल से उस शो से बना, वो शो बनता रहा 1.5 साल तक। तो 1.5 साल तक मेरे ख्याल से मैं मेरे घर में कम रहा हूँ और उस सेट पे ज्यादा रहा हूँ। तो इस तरीके से ये शो बना। ये शो बनते बनते उस चैनल के साथ ये हुआ कि उनके बजट्स खत्म हो गए, तो जो मेरा शो उन्होंने खरीदा था वो तो बना नहीं। मैंने उनसे वापस खरीदा, जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे मैंने उनको वापस किए और शो वापस खरीदा, क्योंकि मैं वो शो कहीं छोड़ना नहीं चाहता था। और मेरा ये भी मानना रहता है कि चीज़ों को लीगली लॉफुली ठीक से क्लीन करके उनको क्लोज करना चाहिए, उनको लटकने नहीं देना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूँ हम जो राइटर्स हैं और जो क्रिएटर्स हैं वो अपनी क्रिएटिविटी में इतना उलझे होते हैं ना कि वो लीगैलिटीज को नहीं समझते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और कानूनी
1: लूज एंड्स छूट जाते हैं
0: जो बाद में अपना मतलब आप दो लोगों के बीच ऐसी कड़वाहट है जिसका कोई सेंस बनता ही नहीं है। तो हमेशा ये अच्छा है कि आप जाएं और उस लूज एंड को बंद कर दें।
1: बिल्कुल।
0: या तो आपके हाथ में हो या सामने वाले के हाथ में हो, मन में कड़वाहट ना रहे, रिश्ते बने रहें। तो मैंने वो चैनल के पास जाके उनसे वापस खरीदा, वो उनको पैसे वापस किए। जावेद भाई के साथ मैंने फिर दूसरा शो किया। तो दो शोज हमने किए, उसके बाद काफी काम किया हमने साथ में। ये करते करते एनिमेशन तो चल ही रहा था, तो एनिमेशन में मैंने बहुत काम किया, बहुत इन द सेंस कि बहुत वो शोज किए जिन पे मुझे बहुत गर्व है। तो वो कुछ 3-4 साल का एक कालखंड है जिसमें मैं विविध भारती भी आता था वाणी कोर्स करने, और एक फैंटेसी शो था जिसमें मैं क्रिएटिव डायरेक्टर था, जावेद भाई का एक शो था और दो एनिमेटेड शोज थे। तो टाइम ही नहीं होता था, मैं घर पे ही नहीं होता था। और मतलब ये पर्सनल बात है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो क्रिएटिव लोग हैं कई बार पागल हो जाते हैं, क्योंकि जो कुछ चाहिए वो सब कुछ मिल रहा होता है, उस चक्कर में अपने स्वास्थ्य का वो ध्यान नहीं रखते हैं। तो मुझे इस बीच स्ट्रेस लेवल्स, नींद बराबर नहीं हो रही है, आराम बराबर से नहीं हो रहा है, लगातार भाग दौड़ है, खाने का कोई ठिकाना नहीं है, समय का कोई ठिकाना नहीं है। मुझे बहुत कम उम्र में डायबिटीज हुई इस वजह से, क्योंकि काम इतना था, चीजें इतनी हो रही थी, चारों दिशाओं में आप भाग रहे थे कि अपने लिए समय नहीं था। और मुझे लगता है कि क्रिएटिव लोगों को अपने लिए समय निकालना चाहिए, अपने स्वास्थ्य को थोड़ा ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य जो आपके साथ लंबे समय तक रहेगा। प्रोजेक्ट्स क्या हैं वो आते हैं और जाते हैं।
1: यस, सही बात है। बहुत देर से हम बात कर रहे हैं और गाने नहीं सुने। बातचीत को यहां पर रोकते हैं आलोक और एक गाने की जगह बनाते हैं। चूंकि जावेद जाफरी का जिक्र चल रहा है तो एक ही गाना है जो जावेद जाफरी की सबसे बड़ी पहचान है,
0: उनका पहला गाना
1: मेरी जंका।
0: मेरे ख्याल से उससे पहले डांसिंग सिंगिंग विलन कोई आया ही नहीं था मेरी जंका।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो बोल बेबी बोल
1: वो सुनते हैं
0: जी।
2: वेलकम फ्रेंड टू द शो दैट नेवर एंड्स, टेकिंग द चांस टू मेक यू डांस, यू विल मूव योर फीट एंड ग्रूव। दोस्तों कौन सा डांस पसंद करेंगे आप? रॉम्बा?
3: नो।
2: सांबा?
3: नो।
2: रॉम्बा?
3: नो।
2: सांबा?
3: नो।
2: टेक्विला?
3: नो।
2: टैंगो?
3: नो।
2: चार्ल्सटन?
3: नो।
2: पोल्का?
3: नो।

0: आलोक, ये तमाम चीजें चल रही थी और जाहिर है कि उसके बाद काम आगे बढ़ा, तो आगे के कुछ महत्वपूर्ण कामों के बारे में बताइए।
1: शोले की 40वीं वर्षगांठ थी 2015 में। मुझे शोले के एनिमेटेड वर्जन पर काम करने मिला, जिसका मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर भी था और राइटर भी था। कुछ हिस्से मैंने डायरेक्ट भी किए थे। मेरे लिए ये बड़ा खुशी का सबब था। ये फिल्म मेरी सबसे पसंदीदा फिल्मों में से एक है। और जब इसका प्रमोशन शुरू हुआ इस एनिमेटेड फिल्म का, तो कई जगहों पे सलीम साहब का एक छोटा सा कोट है, फिर जावेद साहब का एक छोटा सा कोट है, उसके आसपास मेरा एक छोटा सा कोट है।
0: वाह वाह।
1: तो वो मेरे लिए बड़ा, उसको बोलते हैं किक, तो मेरे लिए बड़ी किक थी वो देखना। ये करते करते मैंने ग्राफिक इंडिया ज्वाइन किया, जहां मुझे सबसे पहला जो शो मिला वो था अमिताभ बच्चन साहब का पहला एनिमेटेड शो।
0: वाह वाह।
1: जो मैंने डेवलप भी किया, लिखा भी, डायरेक्ट भी किया, प्रोड्यूस भी किया। वो करते करते मुझे अमित जी के साथ काफी समय बिताने का मौका

0: मौका मिला। मैंने करीब उनके साथ 3 से 4 महीने डबिंग किए और जो चीज़ मुझे वहाँ से सीखने को मिली वो मैं अभी भी कोशिश करता हूँ कि मेरे साथ रहे, वो है समय का पाबंद होना।
1: जिसके लिए वो बहुत मशहूर है,
0: बहुत ज़्यादा। वो 6 बजे की रिकॉर्डिंग सुबह करते थे, 5:55 वो स्टूडियो पे होते थे, तो हम लोगों को भाग के समय पे पहुंचना पड़ता था। अगर उन्होंने 6 बोला है तो 5 मिनट पहले ही पहुंचेंगे। वो 6:01 पे कभी नहीं आए,
1: बिल्कुल,
0: इतने महीनों में। दूसरी चीज़ है जो उनकी अपने काम के प्रति लगन है। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग ये बात बार बार बोलते हैं, लेकिन मेरे लिए ये एक बिल्कुल अलग तरीके का अनुभव था कि मैं बच्चन साहब के सामने कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अगर मैंने उनसे 7, 8, 9, 10 टेक भी मांगे हैं तो मुझे 10वां टेक तक मिला है। उन्होंने कभी सवाल नहीं किया कि क्यों मांग रहे हो। हाँ, ये बोला है कई बार कि मुझे एक बार बता दीजिए आपको कैसा चाहिए, तो मैं, आप मुझे बोल के बताइए, मैं एग्जैक्टली वैसा बोल के बता दूंगा। तीसरी चीज जो मैंने वहां सीखी वो ये थी कि जितने टेक्स फाइनल होते थे, अब तो डिजिटल है तो आप टेक्स को फाइनल मार्क कर लेते हैं, लेकिन बच्चन साहब एनालॉग स्क्रिप्ट के ऊपर में लगातार लिख रहे होते थे कौन सा टेक मैंने फाइनल बोला है, 6th टेक, 2nd टेक, 1st टेक। जब डबिंग खत्म हुई उन्होंने मुझे पूरे स्क्रिप्ट का ऐसा पुलंदा दिया, उन्होंने कहा कि इसमें सारे टेक्स लिखे हुए हैं। मैंने कहा सर हम मार्क कर रहे थे। बोले फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेना, गलती की गुंजाइश ना रहे। तो उतना डिटेल रखना। चौथी चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो ये थी, पहली बार मुंबई में मेरे से किसी ने देवनागरी में स्क्रिप्ट मांगी थी।
1: वाह वाह वाह वाह, वरना
0: सब सब सब रोमन सब रोमन में पढ़ते हैं, सब रोमन में पढ़ते हैं
1: जी।
0: बच्चन साहब ने देवनागरी में मांगी क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरे संवाद हैं वो देवनागरी में होंगे तो मैं बेहतर तरीके से पढ़ के बेहतर तरीके से अदा कर सकता हूँ। वहाँ एक बहुत अच्छी चीज हमारे साथ ये हुई कि उन्होंने पहले 2 दिन जब डबिंग कर ली, उसके बाद वो बाहर निकलते निकलते उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ के नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ लेकिन बहुत सालों से यही हूँ। उन्होंने कहा नहीं आप यहाँ के नहीं है क्योंकि मुझे हिंदी में कोई भी वर्तनी में त्रुटि नहीं मिली है। तो वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था हमारी टीम के लिए, हमारे लिए। मेरी सिस्टर ने ये सारी देवनागरी में ये संवादों को देवनागरीकरण किया था रोमन से। तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं अगर देखें तो, लेकिन ये इतनी छोटी चीजें हैं नहीं। तो ये सीखने की चीज थी। एक समय था जब मैं 11 बजे की मीटिंग के लिए घर से 11:30 बजे निकलता था। लेकिन एक बार अमित जी के साथ ये पूरा शो करने के बाद मुझे नहीं लगता मैं कभी भी समय पे नहीं पहुंचने वाला काम कर रहा हूं। मैं आमतौर पे कोशिश करता हूं या तो मैं समय पे पहुंच जाऊं या मैं कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले लोगों को बता दूं कि मैं समय पे नहीं पहुंच पाऊंगा। पहले बहुत बहुत केयरलेस था मैं। तो ये चीजें आप देखें तो यही चीजें हैं जो इन लोगों को इतना बड़ा बनाती हैं। और मैं जैसा मैं कह रहा हूं कि ये सब क्लिशे है, सब हजार बार आपने ये चीजें सुनी होंगी, लेकिन मेरे लिए वो 1-on-1 पर्सनल चीज है जो उनसे सीखने की थी।
1: ऑफ कोर्स।
0: तो वो किया हमने, अस्सा फोर्स नाम था उस शो का, साइंस फिक्शन था और बहुत अच्छा उस पर हमें रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद दूसरा शो जो हमने किया वो SS राजामौली के साथ किया। बाहुबली आई थी तब, पहली बाहुबली आई थी, वो दूसरी बना रहे थे। तो हमने उनको एक एनिमेटेड शो पिच किया कि दोनों बाहुबली के बीच में एक एनिमेटेड शो आ जाएगा तो लोगों के बीच में वो एक उत्साह बना रहेगा माहिष्मती के बारे में। तो वो भी एक सीखने वाली बात थी कि हम जब पहुंचे तो राजामौली साहब ने हमको 3 घंटे का समय दिया था और वो 11 बजे आने वाले थे। वो 11:30 बजे आए, उन्होंने बाथरूम स्लीपर पहनी हुई थी, एक हल्की सी टी शर्ट पहनी हुई थी जो अगर आप देखें तो नितांत साधारण कपड़ों में स्लीपर पहन के वो अंदर आए, जिन्होंने 1.5 साल पहले देश की सबसे बड़ी हिट फिल्म डायरेक्ट,
1: बिल्कुल, बिल्कुल
0: पूरे धूल में सने हुए थे वो, क्योंकि वो कोई तो एक्शन सीन देखने गए हुए थे और पूरा सेट का जायजा लेकर आए थे। उनके पिताजी थे वहां पे और वो दोनों तेलुगु में बात करते थे, फिर राजामौली साहब हम लोगों को ट्रांसलेट करके बताते थे। फिर उनको पता चला कि मुझे कॉमिक्स बहुत पसंद है तो उन्होंने बोला इधर आओ मैं तुमको कुछ दिखाता हूँ। उन्होंने अपने फोन पे मुझे अमर चित्रकथा के कुछ पैनल्स दिखाए जिनमें से डायलॉग्स उन्होंने बाहुबली में इस्तेमाल किए थे और कुछ डायलॉग्स वो आगे बाहुबली में इस्तेमाल करने वाले थे। उसमें एक शिवाजी का डायलॉग है छत्रपति शिवाजी महाराज पे जो अमर चित्रकथा है, उसके 2 संवाद थे, ऐसे बहुत सारी चीजें। तो वो उस दिन मुझे पता चला कि राजामौली असल में बहुत बड़े कॉमिक बुक फैन है। तो वो एक जो चीज थी, उस चीज ने हमारे बीच का जो आइस ब्रेकिंग था बहुत ईजी कर दिया। तो वही है जैसे अरेबियन नाइट्स में होता है, आप छोटी छोटी चीजें करते चलते हैं और वो आगे जाके
1: बड़ी
0: में कहीं कहीं काम आती हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जर्नी में ऐसा लग रहा था कि कॉमिक्स कहीं छूट रही

0: ये, मगर फिर कॉमिक्स इस तरीके से वापस मेरे जीवन में आ जाया करती थी। तो इसकी वजह से हमें वो शो करने को मिला, हमने वो शो किया। पहला सीज़न मैंने डेवलप करने में को डेवलप किया था लोगों के साथ में। इसके बाद कुछ और एनिमेशन की चीज़ें हुई, एनिमेशन छोड़ के फिर मैं बाहर आया। मैं एनिमेशन से थोड़ा सा एक रास्ता आ गई थी एनिमेशन में, तो मैं उससे बाहर आना चाहता था। दूसरी चीज़ थी कि मैंने मेरे जो हीरोज हैं जिनके साथ काम करने का एक सपना होता है हमारा, वो मैंने करीब करीब पूरा कर लिया था। मैंने राजामौली साहब के साथ काम कर लिया है, अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम कर लिया, स्टैनली के साथ काम कर लिया है। तो अब इससे बड़ा क्या, या तो इससे बड़ा कुछ हो।
1: बिल्कुल,
0: शोले कर ली थी तो इससे नीचे जाने का कोई मतलब नहीं बनता था। तो मुझे लगा कि अब इंडस्ट्री बदलनी चाहिए मुझे, नहीं तो फिर वही हो जाएगा, फिर मैं वो साइकिल में दौड़ता रहूंगा। तो मैंने लाइव एक्शन में हाथ आजमाना शुरू किया। मैं निर्देशक बनना चाहता था, तो मैंने कहा कि मैं निर्देशन करूंगा। इस बीच मैंने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी बहुत पहले, तो वो फिल्म की स्क्रिप्ट घूम रही थी स्टूडियो। वो 2018 के आसपास एक स्टूडियो ने ले ली और उन्होंने बोला इसको वेब सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक मिडिल क्लास ह्यूमर था, मुझे ऋषिकेश मुखर्जी साहब की फिल्में बहुत पसंद है, तो ये उस स्पेस में था और समय तक कोई मिडिल क्लास ह्यूमर कर नहीं रहा था, तो बहुत रिस्की माना जाता था ये। अब तो क्या है कि बहुत सारे शोज आ गए, बहुत सारी चीजें आ गई हैं, उस समय में बहुत रिस्की माना जा रहा था। और तकदीर से मुझे वो डायरेक्ट करने भी मिला, और मुझे कुछ मेरे बहुत पसंदीदा एक्टर्स हैं जिनको डायरेक्ट करने मिला मुझे, तो मैंने डायरेक्ट किया। फिर मुझे लगा कि, और वो हुआ क्या कि मेरे डायरेक्ट करते करते मैं वो सीरीज जो है पहले 6 एपिसोड की थी, फिर उन्होंने उसको 12 बना दिया, फिर उसको 24 कर दिया। अब 24 एपिसोड मैं लिखूं भी और डायरेक्ट करूं वो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। तो पहले 6 एपिसोड करके मैंने वो सीरीज लिखी और धीरे धीरे करके मैं लाइव एक्शन की तरफ मुड़ने लगा।
1: इस सीरीज का क्या नाम था?
0: सीरीज का नाम है बब्बर का टब्बर। नाम क्योंकि मैंने नहीं दिया है तो आप मुझे जज ना करें।
1: ठीक है। इन दिनों क्या चल रहा है?
0: इन दिनों एक शो है जो मैं लिख रहा हूँ, लिमिटेड शो है 5 एपिसोड का, वो लिख रहा हूँ। एक फिल्म लिखी है जो एक बड़े स्टूडियो ने ले ली है। एक फिल्म मैं खुद डायरेक्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे ख्याल से 1 महीने के बाद मैं उसको लिखना शुरू करूंगा, मगर उसकी कहानी मेरे पास है तो मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा समय मुझे उसको लिखने में लगेगा। एक कॉमिक्स अभी खत्म किए करके जो अभी मुंबई में लॉन्च हुई थी, वो एक फिल्म पर बेस्ड कॉमिक है, 1 नाम की एक फिल्म आ रही है, तो उसका एक स्पिन ऑफ कॉमिक है वो, तो वो काफी बढ़िया लॉन्च हुआ अभी पिछले हफ्ते। मैं चाहता हूँ इस साल मैं 2 किताबें और करूँ।
1: अच्छा।
0: हाँ, एक मेरी कॉमिक है जो किसी भी समय इस साल आ जाएगी, वो बन के रेडी है। हाँ, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जुलाई अगस्त तक आ जाएगी वो किताब। इसके अलावा मुझे पता नहीं, कुछ और छूट रहा हो तो।
1: यहाँ एक गाने की जगह बनाते हैं,
0: मुकद्दर का सिकंदर।
1: बिल्कुल, बिल्कुल।
0: टाइटल ट्रैक कल्याण जी आनंद जी इंदिवर।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये गाना सुनते हैं।

0: आलू, क्या आपको लगता है कि कॉमिक्स का दौर अब बहुत सुनहरा दौर बीत चुका है?
1: जो मेरे अंदर का कॉमिक्स प्रेमी है वो इसको कभी नहीं मानेगा। लेकिन कॉमिक्स या किसी भी मीडियम का दौर मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीतता है। ये एक साइकिल है, चक्र है। तो ये खत्म होता है और फिर आता है। तो जैसे भारत में जो फैंस थे उन्होंने अपने या तो पब्लिकेशन शुरू किए हैं या किताबें बनानी शुरू की हैं। हम भी उनमें से एक हैं। हमने भी अपनी एक कॉमिक बुक कंपनी शुरू की है। तो उसमें आइडिया ये था कि हम वो किताबें करेंगे जो हम पढ़ना चाहते हैं, और हमें पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिल रही हैं फिलहाल। तो वो कर रहे हैं, हम बच्चों के लिए किताबें कर रहे हैं, और बहुत अच्छा रुझान है। और एक दूसरी चीज़ जो कॉमिक्स के लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकती है वो है कॉमिक्स का अडेप्टेशन शोज में, फिल्म्स में, एनिमेशन शोज में। और मुझे लगता है कि वो दौर हमारे यहाँ करीब करीब आ चुका है। अगर अमेरिका भी देखें तो मार्वल या डीसी को अपनी पहली फिल्म बनाने के पहले, सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है, 77 या 78 में, तो करीब 40 साल लगे, है ना। स्पाइडरमैन 1963 या 62 का है, 63, और पहली स्पाइडरमैन 2002 में आई है। तो इतना समय तो लगता है, 40 साल का समय तो लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा कॉमिक्स उद्योग है वो अपने 40वें वसंत में प्रवेश कर चुका है करीब करीब। तो अब

0: दो चीज़ें हैं, एक तो जो अब नए फिल्म मेकर्स हैं या जो नए क्रिएटर्स हैं, ये वो लोग हैं जो ये कॉमिक्स पढ़ के आए हैं,
1: बिल्कुल
0: वो फैंस हैं पहले, क्रिएटर्स बाद में। बहुत लोगों का ऐसा है कि उनका सपना है कि एक नागराज पे कॉमिक बने या डोगा पे कॉमिक बने,
1: बनते
0: चाचा
1: बनते
0: चौधरी
1: रह
0: पे
1: जाती
0: शोभा।
1: है,
0: हाँ,
1: मतलब कई बार
0: डोगा
1: अनाउंस होता है।
0: डोगा की तो मैंने भी लिखी है फिल्म,
1: हाँ।
0: एक ड्राफ्ट तो मैंने भी लिखा है। हाँ, तो वो बनी नहीं, लेकिन चाचा चौधरी पे शो बन गया है, लेकिन चाचा चौधरी पे मुझे लगता है कि फिल्म बन सकती है। चाचा चौधरी और राका बहुत अच्छे किरदार हैं जिन पे कुछ बन सकता है। तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जिन पे मुझे लगता है कि चीज़ें आज नहीं तो कल बननी शुरू हो जाएंगी, मेरी जनरेशन तो ये फिल्में देखेगी।
1: बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया।
0: तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि दौर चला गया है, मुझे ये लगता है कि इस मीडियम को थोड़ा सा इवॉल्व होने की ज़रूरत है, जो इवॉल्व वो हो रहा है। बस ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने का
1: दौर
0: जो
1: है,
0: दौर है।
1: बिल्कुल। तो हम उम्मीद करें कि ये चीजें जल्दी सामने आएंगी। आलोक, बहुत अच्छा लगा आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और हमसे इतनी सारी बातें की।
0: शुक्रिया यूनुस भाई, मैं जैसा कह रहा हूँ कि ये मेरे लिए एक अलग तरीके का मोमेंट हो गया है, क्योंकि मैं स्कूल में था तब से मैं आपको सुनता आ रहा हूँ, आपसे मिलना भी होता रहा है, मैं यहाँ
1: बिल्कुल।
0: आके मैंने वाणी कोर्स भी किया है तो मेरे लिए घर वापसी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: हाँ, और क्या कहूँ मैं,
1: बहुत बहुत
0: शुक्रिया
1: शुक्रिया, फिर मिलते हैं।
0: जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे लेखक, निर्देशक और कॉमिक क्रिएटर आलोक शर्मा से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम का संपादन किया मनीषा सिंह ने और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
3: आज के मेहमान।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती कार्यक्रम। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

0: साथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा रमकोला भेलकक्ष बड़वारी धुरिया अरचोका बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन

0: मंडल के प्रतापपुर और रामानुज नगर में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरहरी, केवरा, करंजवार, दरहोरा, सिमई, खरसोता, परमेश्वरपुर, सतकोना, मेंढरा, प्रेमनगर, कैलाशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के राजपुर, रामानुजगंज, धमनी और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 15 है। ये खुखनिया, बदौली, जामदोहर, रेवतपुर, जवाखाण, धंधापुर, उधवा कटरा, नरसिंहपुर, पकरीडांड, जमुनिया, रामपुर, कनकपुर, चीनिया, शिवपुर, इंद्रावतीपुर, कामेश्वर नगर, सिलाजू, आनंदपुर, कोटराही, पेंडारी, तनवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा और सीतापुर में हाथियों की कुल संख्या 31 है। ये असकला, दोरना, जरहाडी, जोरी, बिल्मा, रघुपुर, ढेकी डोली, एरन, नवापारा, गिरहुल डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये नारायणपुर, चरईमारा, रानी कोम्बो, सारंगडांड, कुंजारा, श्री टोली, ढोंगा आंबा, मयूर चूंदी, उपका पानी, जाम चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 102 है। ये प्रेमनगर, पोटिया, इंचपारा, कुड़ेकेला, बोजिया, जमाबीरा, आमापाली, पंडोपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कोरबा में हाथियों की कुल संख्या 2 है। ये पसरखेत, घोटमार, बताती के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा, तमनार और खरसिया में हाथियों की कुल संख्या 68 है। ये बंगूरसिया, धुमा बहाल, पूंजी पथरा, तराई माल, नागदरहा, पंडरी पानी, बटुरा कछार, चिमटा पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 27 है। ये तालदादर, अचानकपुर, नवा गांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। महासमुंद वन मंडल के महासमुंद में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये केसरडी, नांदबारू, सुकुलबाय, खिरसाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारीपानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, शिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमार हाथी हमार गोट।
2: प्रायोजित कार्यक्रम हमार हाथी हमार गोट अभी आपने सुना। प्रायोजक थे CF वन विभाग सरगुजा। FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम विवरण। हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का 5:10 पर आप सुन सकेंगे पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। युवा साथियों के कार्यक्रम युववाणी का समय होगा 5:30 का। यू वॉन्ट

0: कार्यक्रम में आज की बात के अंतर्गत सुनिएगा, उत्पादक और सकारात्मक सोच से बनेगा एक बेहतरीन विश्व, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। साथ ही आप सुनेंगे क्रम घटना चक्र और तरुणों की पसंद। फिल्म संगीत हमारे केंद्र से आप सुन सकते हैं शाम 6:20 पर और शाम 7:00। किसान भाई कार्यक्रम चौपाल सुनेंगे शाम 7:20 पर। चौपाल कार्यक्रम में आज की बात का विषय है पशुओं में बांझपन के कारण एवं निवारण। आज की नसीहत में सुनिएगा कृषि रसायनों की खरीदी एवं प्रयोग में सावधानी आवश्यक। साथ ही आप सुनेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। संसद समीक्षा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रिले करेंगे रात्रि 8:00 8:30 पर और रात्रि 10:00 आप सुन सकते हैं हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम। रात्रि 10:30 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता। ये था कार्यक्रम विवरण। हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रमों का।
1: अब FM रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम FM रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र, छोटे अतरमुड़ा, रायगढ़।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।

बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड।

आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए पॉप गीतों का कार्यक्रम पॉप टाइम। आइए सबसे पहले सुने अलीशा चिनाई को।

अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे तीन विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल तीन विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं, जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, ये योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है।

बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं, मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
1: मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुदर्शन।
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

अलीशा चुनाय की गाय इस गीत के साथ ही पॉप टाइम कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, आज का युवावाणी प्रोग्राम लेके हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो दोस्त और होस्ट वर्षा, जिसमें सभी श्रोता साथियों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों बताइए कि आज का मूड कैसा है,

खास तौर पे हम युवाओं के नाम हैं, उनके जिनके पास सपने हैं, कुछ करने का जुनून है, अपने करियर को लेके उम्मीदें हैं और कभी कभी इन्हीं सपनों के बीच कन्फ्यूजन भी है। हमें अपना समय, अपनी एनर्जी और अपनी क्षमता ऐसी चीजों में लगाना है जिससे हमें और हमारे भविष्य को फायदा हो। आज का युवा बहुत कुछ करना चाह रहा है, कोई सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, कोई प्राइवेट जॉब की तलाश में है, कोई बिजनेस करना चाहता है, तो कोई अपना स्टार्टअप खोलना चाहता है। और इनमें से कुछ लोग ये तय नहीं कर पा रहे कि आखिर करना क्या है, और ये कन्फ्यूजन गलत भी नहीं है। हर किसी को शुरुआत में सब कुछ पता हो ये जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि हम उस कन्फ्यूजन में रुक ना जाएं, क्योंकि हर बार हम अपने भविष्य के लेके इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि पॉजिटिव सोच नहीं पाते और एक्शन लेना ही भूल जाते हैं। दोस्तों, फेल होने का डर सब में रहता है, बस उस डर से आगे निकलना है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? खुद को बेहतरीन बना के, कुछ नया सीख के, नया स्किल्स अपना के, नई जानकारियां लेके, खुद को अपडेट रख के, खुद के लिए समय निकाल के और फोकस रह के, साथ ही लाइफ की प्राथमिकताओं को तय करके। अगर एक बार फेल भी हो गए तो दोबारा ट्राई कीजिए, जब तक मंजिल हासिल ना हो, लक्ष्य प्राप्त ना हो। दोस्तों, आज का जमाना इतना तेज है कि किसी भी क्षेत्र की जानकारी, उससे जुड़े स्किल्स और उससे जुड़े करियर विकल्प हम सीख सकते हैं और जान सकते हैं, साथ ही उसकी उत्पादक क्षमता कहाँ लगानी चाहिए, इसके अलावा हमें अपनी उत्पादक क्षमता कहाँ लगानी चाहिए ये भी ज़रूरी है। उत्पादक यानी प्रोडक्टिव होने का मतलब ये नहीं है कि हम पूरे दिन सिर्फ काम ही करते रहें। प्रोडक्टिव होने का मतलब ये है कि हम अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा सही जगह लगाएं, उसका सही से इस्तेमाल करें। पढ़ाई करनी है तो पूरे मन से पढ़ाई करें, कोई स्किल सीखनी है तो उसे सीखने के लिए थोड़ा समय निकालें, अपने करियर को लेके रिसर्च करें ताकि भविष्य की ओर एक कदम और हम बढ़ा सकें। दोस्तों, इस साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम विभिन्न परिस्थितियां साझा आकांक्षाएं रखी गई हैं। ये विषय दुनिया भर के युवाओं की अलग अलग सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं और एक बेहतर भविष्य के लिए उनकी एक जैसी उम्मीदों को रेखांकित करता है। दोस्तों, अपने सपनों को हल्के में मत लीजिए, अपने समय की वैल्यू समझिए, अपने टैलेंट को पहचानिए, अपनी गलतियों से सीखिए और अपने सोच को पॉजिटिव रखिए। आपका भविष्य आपके हाथ में है, आपके आज के फैसले, आपकी आदतें और आपकी मेहनत मिलके आपका आने वाला कल बनाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पे सभी युवा साथियों को ढेरों शुभकामनाएं। आपके सपने बड़े हों, आपकी सोच पॉजिटिव हो, आपके कदम सही दिशा में हो और आपका आने वाला कल आज से भी बेहतर हो। इसी उम्मीद और कामना के साथ ये थी हमारी आज की बात। अब करते हैं कुछ चर्चा। दोस्तों, उम्मीद है कि स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां आपके स्कूल, कॉलेज, दफ्तरों और घरों में शुरू हो गई होंगी। इसी खुशी में संस्कृति मंत्रालय का हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त 2026 तक पूरे देश में मनाया जा रहा है। ये अभियान नागरिकों को अपने घरों व कार्यस्थलों पे राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्र के प्रति एकता व देशभक्ति
की भावना को मजबूत करने के लिए

प्रेरित करता है। इस साल ये वंदे मातरम के 150वें वर्ष के जश्न के साथ भी जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि तिरंगा लगाना सिर्फ एक दिन की एक्टिविटी बन के ना रह जाए, इसके साथ देश के प्रति जिम्मेदारी की भी भावना होनी चाहिए। अगर हम अपने घर, बाइक, कार, साइकिल, सड़क किनारे पेड़ों, खंभों पे तिरंगा लगाते हैं तो उसकी गरिमा और सम्मान का भी ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय ध्वज को सही तरीके से लगाना और अभियान के बाद उसे सम्मानपूर्वक संभालना भी हमारी जिम्मेदारी है। आइए तिरंगे को सिर्फ घर की छत पे नहीं बल्कि अपने व्यवहार और अपनी सोच में भी जगह दें। एक जिम्मेदार और अच्छे नागरिक बनके तिरंगे का और देश का मान और ऊंचा करें। दोस्तों, ये थी हमारी आज की चर्चा और आज है महीने का तीसरा बुधवार। महीने के हर बुधवार को क्रम रहता है, क्रम घटना चक्र और तरुणों की पसंद का। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्रम घटना चक्र की ओर में।

सभी श्रोता साथियों का स्वागत है हमारे आज के क्रम घटना चक्र में, जिसमें हम जानेंगे देश विदेश और खेल से संबंधित समसामयिक घटनाओं के बारे में। अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 15 अगस्त को इंडिया डे घोषित किया है। गवर्नर मौरा हिली ने घोषणा पत्र जारी किया, जबकि बॉस्टन की मेयर मिशेल वू ने नए भारतीय वाणिज्य दूतावास का स्वागत किया। फैसला अमेरिका में रहने वाले 50 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोगों के योगदान को सम्मान देने के लिए लिया गया है। ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन पे खेलों का आधिकारिक ध्वज भारत को सौंपा गया। इसे पीटी उषा, हर्ष संघवी और नीरज चोपड़ा ने स्वीकार किया। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया जाएगा। 2026 खेलों में भारत ने 39 पदक जीत के पदक तालिका में चौथा स्थान हासिल किया है। 10 अगस्त को भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के बीच एक्सप्लोजिव ऑर्डनेंस डिस्पोजल ईओडी 2026 एक्सरसाइज शुरू हुई है। ये एक्सरसाइज 10 अगस्त से 14 अगस्त तक कोच्चि के साउदर्न नेवल कमांड में किया जा रहा है और ये इस एक्सरसाइज का 8वां संस्करण है। इस एक्सरसाइज में मुख्य फोकस एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल की पहचान करना, उसे सुरक्षित तरीके से निष्क्रिय करना शामिल है। 8 अगस्त को भारतीय लेखक गुरुचरण दास को लाइफ टाइम लिबर्टियन अवार्ड मिला। गुरुचरण दास को ये अवार्ड काठमांडू में लिबर्टी इंटरनेशनल की वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में दिया गया। 82 वर्षीय दास ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय लेखक हैं। ये अवार्ड दास को साहित्यिक योगदान की नींव के तौर पे दिया गया है। दास की किताबों में इंडिया अनबाउंड, द डिफिकल्टी ऑफ बींग गुड और अनदर सॉर्ट ऑफ फ्रीडम शामिल है। दास ने पेंगुइन्स के लिए भारत के आर्थिक और बिजनेस इतिहास पे 17 वॉल्यूम वाली एक सीरीज को एडिट भी किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु के निदेशक प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है। वे इस सम्मान को पाने वाली देश की पहली महिला वैज्ञानिक और चौथी भारतीय बन गई हैं। ये पदक इसरो और

अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा हर 2 साल में खगोल वैज्ञानिकों को दिया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। यह झील लोहित जिले के कमलांग टाइगर रिजर्व के अंतर्गत स्थित है और अरुणाचल का पहला रामसर स्थल है। ये ताजे पानी की उच्च ऊंचाई वाली झील है जहां ऑर्किड की 49 और पेड़ों की 150 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के वैज्ञानिकों ने भारत में पाए जाने वाले तितलियों और पतंगों की एक विस्तृत सूची प्रकाशित की है। भारत में कुल 13,703 प्रजातियां पाई जाती हैं, जो दुनिया की कुल प्रजातियों का 8.25% है। इसमें 1,417 तितलियां और 12,286 पतंगों की प्रजातियां शामिल हैं। एयर इंडिया ने इथियोपियन एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख टेवोल्डे ग्रेबेमारियम को नया CEO और MD नियुक्त किया है। वे कैंपबेल विल्सन की जगह लेंगे। उनके नेतृत्व में इथियोपियन एयरलाइंस अफ्रीका की सबसे बड़ी और लाभदायक एयरलाइंस बनी। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा के तहत अब तक 21 विधानसभाएं पूरी तरह डिजिटल हो चुकी हैं। 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 33 ने इस परियोजना के लिए MOU किया है। केंद्र ने 138.17 करोड़ रुपए दिए हैं। अब भाषिणी टूल से सदन की कार्यवाही का 22 भाषाओं में अनुवाद भी किया जा सकेगा। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी है। नए कानून के अनुसार यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण घटना के 2 साल बाद कराया जाता है तो अब प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। इससे मतदाता सूची अधिक सटीक बनेगी और फर्जीवाड़े पे रोक भी लगाई जा सकेगी। मिडफील्डर खाइदेम शालेमा चानू चीन के मोकी में 30 अगस्त से 13 सितंबर तक होने वाले जूनियर एशिया कप में भारत की 18 सदस्यीय जूनियर महिला टीम की कप्तानी करेंगी। स्क्वैश खिलाड़ी सूरज कुमार चांद ने FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप स्क्वैश में पुरुषों का फाइनल जीता है। वे इस प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तमिलनाडु की 11 साल की चेस मास्टर AS श्रवणिका ने 11 साल 4 महीने की उम्र में महिला फिडे मास्टर WFM खिताब पा लिया है। ये लाइव क्लासिकल रेटिंग को भी 2,200 के पार पहुंचाने वाली देश की सबसे कम उम्र की चेस मास्टर बन गई हैं। इसके साथ भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रगानानंदा ने सेट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज खिताब अपने नाम किया। कोरिया मास्टर्स सुपर 300 टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में वर्ल्ड नंबर 50 अस्मिता ने चीन की चौथी सीड हान कियान शी को मात देके अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीत लिया है। दोस्तों, हमारे आज के क्रम घटना चक्र में बस इतना ही।

सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे आज के क्रम तरुणों की पसंद में, जिसमें आप हमें पत्रों और ईमेल के जरिए लिख भेजते हैं अपने पसंदीदा गीतों का नाम। तो चलिए बढ़ते हैं क्रम की ओर में इस गीत के साथ, जो है फिल्म अर्थ से। इस गीत को गाया है जगजीत सिंह ने। गीतकार हैं कैफी आजमी, संगीतकार हैं जगजीत सिंह। और दोस्तों, इस गाने की फरमाइश की है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा ने। इस गीत को पसंद किया है अटल रेडियो श्रोता संघ, वार्ड 26।

कांगड़ा सोमनी जिला राधनांद गांव से नारायण लाल साहू, कुलवंती देवी, देवेंद्र प्रताप नेहा, मिलिंद प्रणय, रुद्रांश प्रताप साहू ने इस गीत को पसंद किया है। दतरंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा ने। लीजिए सुनवाते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

दोस्तों, इस गीत के बाद आपको सुनवाते हैं अलका याग्निक की आवाज में फिल्म स्वदेश का ये गाना। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत दिया है A.R. रहमान ने। और दोस्तों, इस गाने की फरमाइश भेजी है पत्र के जरिए श्री श्रृंगी ऋषि महानदी सिहावा पर्वत अंचल ग्राम बीलर गांव से मिथिलेश देवांगन, मधु हिमांशु, अंकित देवांगन ने। मछली गोदाम कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा, प्रियंका, पूजा, लीलू, ऋतु, ऋषभ सिंह ने इसी गीत को पसंद किया है। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सिंह, प्रभादेवी, लक्की, विकी, नानू, रौनक सेन ने। लीजिए सुनिए इनकी पसंद का ये गाना।

दोस्तों, इस गीत के बाद आपको सुनवाते हैं राजा मेहंदी अली खान का लिखा फिल्म मेरा साया का ये गाना। इसे गाया है आशा ने, साथ ही इस गीत को संगीत दिया है मदन मोहन ने। और दोस्तों, इस गाने के फरमाइश करता है बनियापारा धमतरी छत्तीसगढ़ से रामचंद माखीजा, श्रीमती सविता बेबी स्वाति, माही पूजा छुटकी, शरद कुमार डोडवानी। इस गीत को पसंद किया है अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन बंशीला और दिव्यांश श्रीवास्तव ने। रॉबर्टसन दर्रामुरा से लंबोदर प्रसाद, फैलेंद्र कुमार, तरुण सुरेंद्र, पीयूष हेमंत, रामलाल, तुलाराम आर्यन।

0: आयन रूप बसंत, मानस देवा पटेल और सीताराम निषाद ने। लीजिए सुनिए इनकी पसंद का ये गाना।
1: झुमका गिरा रे

दोस्तों अपनी पसंदीदा गीतों का नाम हमें ईमेल कीजिए shrotarayagad@gmail.com पे। सब्जेक्ट में तरुणों की पसंद जरूर लिखें। इसी के साथ मुझे अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ संध्या।

युववाणी कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे आज मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। निगम किसी भी सहकारी समिति या सहकारी विकास में लगी संस्था को सीधे ऋण और अनुदान भी प्रदान कर सकता है। सहकारी राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सुसज्जित बनाना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया है। विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में और संशोधन करना है। ये विधेयक विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाएगा। सरकार ने आज बताया कि राष्ट्रीय

0: एआई कौशल विकास पहल के प्रथम चरण में 60,253 नामांकन प्राप्त हुए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुर्गुन ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि कुल 4,620 प्रतिभागियों ने प्रथम चरण के 2 मॉड्यूल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि 552 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम के प्रथम चरण के सभी 4 मॉड्यूल पूरे किए हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे नीट परीक्षा के पेपर लीक मामले पर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं। संसद परिसर में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया। श्री मोदी ने नई दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की आत्मकथा भारतीय गणराज्य की विजय मेरा जीवन मेरा संघर्ष का विमोचन करते हुए ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने, पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया है। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों तथा सेवाओं को वैश्विक बाजार में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का भी आग्रह किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि 9 मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
2: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में योगदान देगी। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब हम आपको हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ मुख्य शेष कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। अब से थोड़ी देर बाद 6:20 पर और शाम 7 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। किसान भाई चौपाल कार्यक्रम सुन सकते हैं शाम 7:20 पर। चौपाल कार्यक्रम में आज की बात का विषय है पशुओं में बांझपन के कारण एवं निवारण। आज की नसीहत के अंतर्गत सुनिएगा कृषि रसायनों की खरीदी एवं प्रयोग में सावधानी आवश्यक। साथ ही आप सुनेंगे आज का टिप, कृषक प्रश्न मंच, आज का मंडी भाव और आज का मौसम। संसद समीक्षा हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे रात्रि 8:00। 8:15 पर आप सुन सकते हैं चौपाल कार्यक्रम का शेष भाग। फिल्म संगीत सुनिएगा रात 8:30 पर और रात्रि 10:00 से। 10:30 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता। ये था कार्यक्रम विवरण। हमारे केंद्र से आज की सभा से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कुछ मुख्य शेष कार्यक्रमों का।
4: अब एफएम रायगढ़ से विज्ञापन देना हुआ बेहद सस्ता और किफायती। अब एक विज्ञापन के खर्च में आपको मिलेंगे 3 विज्ञापन, यानी खर्च एक विज्ञापन का और रेडियो से बजेंगे कुल 3 विज्ञापन। आपकी दुकान, बिजनेस, एजेंसी, शोरूम या अन्य सेवाएं जो आप प्रदत्त करते हैं,

0: जैसे ट्यूशन, टिफिन इत्यादि का प्रचार करने के लिए सबसे बड़ी पहुंच वाला माध्यम एफएम रायगढ़। तो जल्दी कीजिए, यह योजना केवल कुछ ही समय तक के लिए है। संपर्क करें आकाशवाणी केंद्र छोटे अतरमुड़ा रायगढ़। श्रोताओं, आकाशवाणी रायगढ़ की ईमेल सेवा के माध्यम से अधिक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। आप भी हम तक अपने सुझाव और फरमाइश ईमेल के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। कार्यक्रम आपकी फरमाइश, अनुरोध, तरुणों की पसंद, पत्र मिला और लोक रंजनी के लिए हमें ईमेल भेज सकते हैं। जिस कार्यक्रम के लिए आप ईमेल भेजते हैं उसका नाम सब्जेक्ट फील्ड में लिखना आवश्यक है। कार्यक्रम के नाम के बिना ईमेल शामिल नहीं किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी है shrotarayagad@gmail.com, shrotarayagarh, यानी shrotarayagad@gmail.com।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
4: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
1: मन का सुकून, दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।

हम आकाशवाणी के रायगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं। 6:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

0: और FM बैंड पर आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 6:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। अब सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ के लोक और जनजातीय विरासत के विशेष प्रस्तुति दे जाही। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बस्तर संभाग में आज बस्तर तिरंगा यात्रा के शुरुआत होगे और छत्तीसगढ़ के लोक परब हरेली आज राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में पारंपरिक उत्साह के संग मनाए जाते। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ के समृद्ध लोक और जनजातीय सांस्कृतिक विरासत ला 15 अगस्त के राष्ट्रपति भवन में आयोजित होवैया स्वतंत्रता दिवस स्वागत समारोह एट होम में विशेष स्थान मिली। भारत के स्वतंत्रता के 80वां वर्षगांठ के मौका में राखे गए समारोह में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र के जीवंत लोक और पारंपरिक कला परंपरा के माध्यम ले संस्कृति, समुदाय और प्रकृति के बीच गहरा संबंध रेखांकित करे जाही। छत्तीसगढ़ को तिले, गेड़ी और गौर माड़िया नृत्य प्रमुख आकर्षण होही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र के लगभग 35 कलाकार आने आने लोक नृत्य और पारंपरिक संगीत प्रस्तुति में हिस्सा लीही। समारोह के संगीत प्रस्तुति ला भारत के आने आने लोक परंपरा के एक ठिन सांस्कृतिक यात्रा के रूप में तैयार करे गए है। एक शुरुआत बस्तर के पारंपरिक अनुष्ठानिक परंपरा में आधारित मंगल धुनले होही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवा

0: मन ले आग्रह करीन हैं कि ओमन अपन प्रिय मनखे के आत्मकथा पढ़ें और रील्स के संग्रह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाए ले बांचे। ओमन विकसित भारत के मिशन ल आगू बढ़ाए बर समर्पित युवा मन के सरलग जरूरत ऊपर घलो बल देन। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप आज नारायणपुर ले बस्तर तिरंगा यात्रा के शुरुआत करीन। ए यात्रा ल आने आने समाज प्रमुख मन हरा झंडा दिखा के रवाना करीन। ए मौका में श्री शर्मा हा कहिन कि ए यात्रा ओ जगह मनले होके जाही जिहां पहली नक्सली घटना हा लोगन मन ल प्रभावित करे रहीस। ओमन कहिन कि यात्रा के माध्यम ले देश और दुनिया ल ए संदेश दे जाही कि ए क्षेत्र में अब नक्सलवाद सिरागे है। उप मुख्यमंत्री हा कहिन कि जनवरी 2024 ले लेके अब तक बस्तर के बहुत अकन दुर्गम गवई मन में राष्ट्रीय पर्व में ध्वजारोहण करे गए है। इस स्वतंत्रता दिवस में बस्तर संभाग के 90 ले ज्यादा गांव मन में आजादी के बाद पहली घाव तिरंगा फहराए जाही। आज पहली दिन तिरंगा यात्रा नारायणपुर ले शुरू होके मुंजमेटा झारागांव धौड़ाई कन्हार गांव कड़ेनार बोदली सातधार बारसूर होवत दंतेवाड़ा पहुंचिस। उहें काली दुसरैया दिन यात्रा दंतेवाड़ा ले सुकमा और बीजापुर जिला के आने आने नक्सल प्रभावित क्षेत्र ले होके जाही। तीसरैया और आखिरी दिन 14 अगस्त के ए यात्रा बीजापुर ले आवापल्ली उसूर गलगम नंबी ताड़पाला होवत कर्रेगुट्टा पहाड़ी पहुंची जहां यात्रा खत्म हुई। आज विश्व हाथी दिवस है। ए मौका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहिन कि हाथी भारत के पारिस्थितिक विरासत के अभिन्न हिस्सा रहे है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री है कहिन कि दुनिया के 60% ले ज्यादा जंगली एशियाई हाथी भारत में पाए जाते। उमन कहिन कि देश में 33 ठीन एलिफेंट रिजर्व हवे जौन हाथी मन ल सुरक्षित आवास देते और ओखर दीर्घकालिक संरक्षण के प्रयास ल मजबूत करते। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ह बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार अंक बढ़ाए या अनुत्तीर्ण विद्यार्थी मन ल उत्तीर्ण कराए के नाव में अवैया फर्जी काल ले सावधान रहे के अपील करे है। मंडल हा कहे है कि उत्तर पुस्तिका मन के मूल्यांकन जारी है और ऐसन मामला में धनराशि के मांग करैया लोगन मन के मंडल ले कोनो संबंध नहीं है। विद्यार्थी और अभिभावक ऐसे काल ऊपर भरोसा झन करें, कोनो तरह के लेन देन झन करें और फर्जी काल मिले मा तुरते नजदीकी पुलिस थाना में शिकायत दर्ज करावें। हज 2027 बर पहला किस्त जमा करे के आखिरी तारीख बढ़ा दे गए है। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मिर्जा एजाज बेग बताएं कि राज्य के चयनित आवेदक 1,52,300 रुपया प्रति हाजी के पहला किस्त 17 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी पर रायपुर के बैरन बाजार स्थित छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के फोन नंबर 0771426664 में संपर्क करे जा सकते हैं। इही बीच हज यात्रा में जवैया हज यात्री मल्ला प्रशिक्षण दे बर हज प्रशिक्षक मल्ले ऑनलाइन आवेदन 23 अगस्त तक मंगाए गए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमर समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमर फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमर यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो माचे समाचार कुती। छत्तीसगढ़ के लोक परब हरेली आज प्रदेश भर में पारंपरिक उत्साह के संग मनाए जाते। सावन महीना के अमावस्या में मनाए जाने वाला हरेली परब में किसान अपन कुल देवता और खेती में बोरे जाने वाला औजार के पूजा करें। संग्रह लयिका और युवा मन गेड़ी चघे के आनंद लेन। नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में घलो हरेली तिहार के कार्यक्रम के आयोजन करेगीस। ए मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भगवान शिव गौ माता और कृषि औजार के पूजा पाठ करके प्रदेश में अच्छा वर्षा भरपूर फसल किसान मन के समृद्धि और जम्मो परिवार के सुख खुशहाली के कामना करें। मुख्यमंत्री है प्रदेशवासी मन ल हरेली तिहार के बधाई दिन।
2: आप सबला पूरे छत्तीसगढ़ के हमार दाई दादा सियान जवान भाई बहनी सबला हरेली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई बहुत बहुत शुभकामना।
0: ए मौका में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री निवास परिसर में पारित

0: जात के पौधा लगाई। मुख्यमंत्री ह कार्यक्रम स्थल में लगाए गए कृषि और दूसर विभागीय स्टाइल के अवलोकन घलो करें। ओमन रायपुर के किसान इंद्र कुमार वर्मा ल हार्वेस्टर में मिलने वाला सब्सिडी के रूप में 16 लाख रुपया के चेक दिन। कार्यक्रम में लोक कलाकार मन मांदर ढोलक और पारंपरिक वाद्य यंत्र के थाप के बीच छत्तीसगढ़ी गीत और नृत्य के प्रस्तुति दिन। उन्हें ठेठरी खुरमी बरा समेत आने आने छत्तीसगढ़ी व्यंजन के स्टाल घलो लगाए गए रहीस। प्रदेश के आने आने जिला में घलो हरेली पर्व उछा के संग मनाए जाते। हरेली अमावस्या के मौका में पाठ यात्रा पूजा विधान के संग आज ले 75 दिन तक चलैया विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व शुरू हो गए है। ये रस्म के तहत बस्तर के आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर के आगू ग्राम बिलोरी के जंगल ले लाए गए साल रुख के शाखा के विधि विधान पूर्वक पूजा पाठ करेगी। ये मौका मां महापौर संजय पांडे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बलदेव मंडावी, कलेक्टर आकाश छिकारा समेत बस्तर दशहरा समिति के सदस्य, पारंपरिक मांझी चालकी, मेंबर मेंबरीन, पुजारी पटेल, नाइक पाइक और सेवादार मौजूद रहें। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिला में गाज के चपेट में आए ले 2 महिला मजदूर मन के मौत हो गए है। उन्हें 20 जन ले ज्यादा महिला झुलस गए हैं। ये जम्मू छत्तीसगढ़ के जशपुर जिला के रहवासी हरें। मिले जानकारी के अनुसार जशपुर जिला के तुमला थाना क्षेत्र के बरडीह समेत तीर्थखार के गांव मन ले महिला मजदूर धान के रोपाई बर ओडिशा गए रहीन। जब एमन तलसरा थाना क्षेत्र के बालीशंकरा स्थित भाटीपाड़ा के खेत में धान के रोपाई करत रहीन, इस दौरान अचानक मौसम बदल गए और गरज चमक के संग खेत में गाज गिर गए, जेखर चपेट में आए ले 2 महिला मन के मौत हो गए। उन्हें 20 ले ज्यादा महिला झुलस गए हैं, जेमाले कुछ के हालत गंभीर बने हुए है। जम्मू झलना उपचार बार सबडेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराए गए है। बिलासपुर जिला के ग्राम रहंगी बिल्हामा 100 बिस्तर वाला कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC अस्पताल के स्थापना बर 5 एकड़ भूमि ल मंजूरी मिल गई है। यह 100 करोड़ रुपया ले ज्यादा के स्वास्थ्य परियोजना है। अस्पताल बने ले बिलासपुर और तीर्थखार के क्षेत्र ले ESIC ले जुड़े पंजीकृत श्रमिक और ओमन के परिवार ला बेहतर और अच्छा स्वास्थ्य सुविधा मिल सकी। पहली ले जेल में बंद कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष राम गोपाल अग्रवाल ला प्रवर्तन निदेशालय ईडी हा शराब घोटाला मां गिरफ्तार करके कड़ा सुरक्षा व्यवस्था के बीच रायपुर कोर्ट में पेश करीस, जहां ले ओमल्ला 5 दिन के कस्टोडियल रिमांड में भेज दे गए है। अब ईडी अवैया 5 दिन तक उखरले शराब घोटाला और उखरले जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामला में पूछताछ कर ही। आखिर में प्रमुख समाचार एक घंव फेर। राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ के लोक और जनजाति विरासत के विशेष प्रस्तुति दे जाही। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बस्तर संभाग में आज बस्तर तिरंगा यात्रा के शुरुआत हो गए और छत्तीसगढ़ के लोक पर्व हरेली आज राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में पारंपरिक उछाह के संग मनाए जाते। इकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इहे सिरावत है। जय जोहार।
1: ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रुपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं निशा भारद्वाज और आप सुन रहे हैं आजादी का जय घोष, वंदे मातरम। श्रोताओं, वंदे मातरम गीत भारत के राष्ट्रगीत के रूप में अपनी एक गहरी और महत्वपूर्ण विरासत रखता है और आज इस विरासत के 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसे में इस विषय पर हमसे अधिक जानकारी साझा करने के लिए जुड़ रहे हैं श्री हितेंद्र पटेल, जो कि रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कोलकाता में इतिहास के प्रोफेसर हैं। नमस्कार हितेंद्र जी, आपसे जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम गीत की रचना किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुई थी और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का क्या दृष्टिकोण था।
1: वंदे मातरम गीत जो है वो 1870 के दशक में लिखा गया था। शुरू में इसको संस्कृत में लिखा गया था, इसका दो स्टैंजा, और उसके बाद में इसको बढ़ाया गया, 6 स्टैंजा इसका किया गया, और 1882 में पहली बार इसको महत्वपूर्ण उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ में शामिल किया गया है, जिस उपन्यास में एक सन्यासी विद्रोही भवानंद जो है इसको गाता है और देश प्रेमियों को आह्वान करता है कि अपनी मातृभूमि के लिए वो सोचे, उसके लिए कुर्बानी दे। बाद में 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया हेमचंद्र द्वारा, और 1896 में रविंद्रनाथ ने इसकी एक धुन बनाई और ये इसको कांग्रेस अधिवेशन में गाया भी था। 1901 में कलकत्ता में श्रीचरण दास ने भी इसे गाया था, और इस समय तक ये देखा जा रहा है कि भारत के विभिन्न हिस्सों के जो बड़े नेता हैं, जैसे तिलक वगैरह जो हैं, वो इसको एक मंत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, देश प्रेम के एक मंत्र के रूप में। 1905 में बनारस में सरला देवी चौधरानी ने इसको गाया था, और जैसा मैंने कहा कि इसकी जो धुन जो है वो रविंद्रनाथ ने 1896 में बनाई थी, ये बात कई जगह अन्य लोग भी कहते हैं कि यदुनाथ भट्टाचार्य थे जिन्होंने इसकी धुन बनाई थी, लेकिन जो भी हो ये तय है कि स्वदेशी आंदोलन के समय आते आते ये राष्ट्रीय एक मंत्र बन चुका था, जो अंग्रेज विरोधी राष्ट्रीय भावना थी उसका एक नारा बन चुका था। और इसका परिणाम ये होता है कि 1906 में जब बरिसाल में कांग्रेस की एक जुलूस निकली तो उसमें इसको बैन कर दिया गया कि आप वंदे मातरम स्लोगन नहीं दे सकते हैं। भीखाजी कामा ने 1907 में स्टुगार्ट में जब तिरंगा झंडा फहराया तो वहां भी वंदे मातरम जो है वो एक नारे के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। और इस तरह से हम देखते हैं कि 1906-07 तक आते आते वंदे मातरम जो है वो हमारे देश के जो लड़ने वाले थे, जो चाहते थे कि अंग्रेजों से लड़ाई की जाए और अपने देश के देशवासियों को स्वदेश प्रेम के लिए उत्प्रेरित करते हुए कुछ कहना चाहते हैं, उसका रैलिंग सॉन्ग बन गया। सब्यसाची भट्टाचार्य इतिहासकार ने एक किताब लिखी है इसके ऊपर, उसमें उन्होंने दिखलाया है कि इस गीत मात्र से पूरे देश में किस तरह की भावना जो है उत्पन्न होने लगी थी, और बाद में धीरे धीरे इसको लेकर के कोई संदेह नहीं रहा कि वंदे मातरम जो है भारतीय राष्ट्रवादियों का, विशेषकर क्रांतिकारियों का एक स्लोगन बन गया था। रामप्रसाद बिस्मिल जब आत्मकथा लिखते हैं 1929 में तो वहां भी वंदे मातरम का उद्घोष होता है, और ये जो वंदे मातरम है यह निश्चित रूप से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे महत्वपूर्ण गीत बना था, और इसको गाने का मतलब था कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय लोग एकजुट होकर अपनी राष्ट्रीय भावना को प्रस्तुत कर रहे हैं। 36-37 में यह तय हो गया कि इसका दो स्टैंजा जो है जिसमें कि देश प्रेम की बात की गई है उसको ही हम लोग राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार करेंगे। बाद में ये कहा गया कि हम राष्ट्रीय गान के रूप में रविन्द्रनाथ के जन गण मन अधिनायक जय हे को रखेंगे, और वंदे मातरम की चूंकि ख्याति थी, लोकप्रियता थी, इसलिए इसको राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकृति मिली। तो गान और गीत दोनों को बराबर मान्यता दी जाए, इसके लिए एक विशेष बात हम लोगों को ध्यान में रखनी

0: जो इसकी इसी की जो स्पिरिट है उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, पूरे देश में इस गान और इसकी स्पिरिट को याद किया जाना चाहिए। जब जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की स्पिरिट की बात करेंगे तो वंदे मातरम की बात करनी ही होगी, और ये हमारा एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गीत है जो हमारी राष्ट्रीयता की भावना को स्पष्ट रूप से सामने रखता है, और इसके साथ हमारे क्रांतिकारी आंदोलन की स्मृतियां भी पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं।
1: धन्यवाद प्रोफेसर हितेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। एक बार पुनः आपका धन्यवाद।

फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुने फिल्म कच्चे धागे से। स्वर है अलका याग्निक और हंसराज हंस के, गीतकार आनंद बख्शी और संगीत दिया है नुसरत फतेह अली खान ने।

बड़ी मियाँ छोटी मियाँ, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे अलका याग्निक, उदित नारायण और अमित कुमार को। शब्द रचना थी समीर की और धुन बनाई थी वीजू शाह ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। 6:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: रीमा सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
4: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
5: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
4: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
5: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
4: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
5: क्यों?
4: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
6: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
4: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ की लोक और जनजाति विरासत की विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बस्तर संभाग में आज से बस्तर तिरंगा यात्रा की हुई शुरुआत। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली आज प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पाट जात्रा पूजा विधान के साथ आज से बस्तर दशहरा शुरू। और ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जशपुर जिले की 2 महिला मजदूरों की मौत, 20 से अधिक महिलाएं घायल। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक और जनजाति सांस्कृतिक विरासत को 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस स्वागत समारोह एट होम में विशेष स्थान मिलेगा। भारत की स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की जीवंत लोक तथा पारंपरिक कला परंपराओं के माध्यम से संस्कृति, समुदाय और प्रकृति के बीच गहरे संबंध को रेखांकित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की ओर से गेड़ी और गौर मड़िया नृत्य प्रमुख आकर्षण होंगे। छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लगभग 35 कलाकार विभिन्न लोक नृत्यों और पारंपरिक संगीत प्रस्तुतियों में भाग लेंगे। समारोह की संगीत प्रस्तुति को भारत की विविध लोक परंपराओं की एक सांस्कृतिक यात्रा के रूप में तैयार किया गया है। इसकी शुरुआत बस्तर की पारंपरिक अनुष्ठानिक परंपराओं पर आधारित मंगल धुन से होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की आत्मकथा पढ़ें और रील्स तथा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के युग में शॉर्टकट अपनाने से बचें। उन्होंने विकसित भारत के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित युवाओं की निरंतर आवश्यकता पर भी बल दिया।
6: भविष्य में कोविंद जी जैसे अनेकों युवा चाहिए जो परेशानियों से परास्त न हो, जो मुश्किलों से मायूस न हो, बल्कि अपनी मेहनत से हर मंजिल को आसान बनाने का हौसला रखे। इसी बदलाव से सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। यही से आत्मनिर्भर और विकसित भारत का रास्ता बनेगा।
5: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और वन मंत्री केदार कश्यप ने आज नारायणपुर से बस्तर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा को विभिन्न समाज प्रमुखों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि ये यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां पहले नक्सली घटनाओं ने लोगों को प्रभावित किया था। उन्होंने कहा कि यात्रा के माध्यम से देश और दुनिया को ये संदेश दिया जाएगा कि इन क्षेत्रों में अब नक्सलवाद समाप्त हो चुका है।
7: बस्तर तिरंगा यात्रा आज नारायणपुर से प्रारंभ होकर के कल और परसों, ऐसे 3 दिनों की यात्रा है। ये यात्रा सभी ऐसे स्थानों से होते हुए जाएगी जहां नक्सलियों ने बड़े तांडव किए थे पहले, जहां पर लोग हमारे शहीद हुए थे, जहां पर आर्म्ड फोर्सेस के लोग शहीद हुए थे, जहां पर आम नागरिक मारे गए थे, मिशंस हत्याएं नक्सलियों की थी, वहां लोगों से चर्चा करने वाले हैं। उन क्षेत्रों में अब नक्सलवाद पूर्ण समापन हो चुका है, इस बात का संदेश देश और दुनिया को देने वाले हैं।

0: उपमुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर बस्तर संभाग के 90 से अधिक गांव में आजादी के बाद पहली बार तिरंगा फहराया जाएगा। आज पहले दिन तिरंगा यात्रा नारायणपुर से शुरू होकर मुंजमेटा, झारागांव, धौड़ाई, कन्हारगांव, कड़ेनार, बोदली, सातधार, बारसूर होते हुए दंतेवाड़ा पहुंची। वहीं कल दूसरे दिन ये यात्रा दंतेवाड़ा से सुकमा और बीजापुर जिले के विभिन्न नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। तीसरे और अंतिम दिन 14 अगस्त को ये यात्रा बीजापुर से आवापल्ली, उसूर, गलगम, लंबी, ताड़पाला होते हुए कर्रेगुट्टा पहाड़ी पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली आज प्रदेशभर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। सावन माह की अमावस्या को मनाए जाने वाले हरेली पर्व पर किसानों ने अपने कुलदेवता और खेती में उपयोग किए जाने वाले औजारों की पूजा की। साथ ही बच्चों और युवाओं ने गेड़ी चढ़ने का आनंद लिया। नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भी हरेली तिहार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को हरेली तिहार की बधाई देते हुए कहा कि ये पर्व हमें अपनी धरती, पशुधन, कृषि उपकरणों और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है।
1: आप सबला पूरे छत्तीसगढ़ के हमार दाई दादा, सियान जवान, भाई बहने सबला हरेली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई, बहुत बहुत शुभकामना।
0: कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने मांदर, ढोलक और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की थाप के बीच छत्तीसगढ़ी गीत और नृत्यों की प्रस्तुतियां दी। प्रदेश के अन्य जिलों में भी हरेली पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। वहीं हरियाली अमावस्या के अवसर पर आज देश में सामूहिक पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में आज नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम के पास वृक्ष मित्र परिवार के साथ 31 राज्यों में 50,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। हरेली अमावस्या के मौके पर पाट जात्रा पूजा विधान के साथ आज से 75 दिनों तक चलने वाला विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व शुरू हो गया है। इस रस्म के तहत बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने ग्राम बिलोरी के जंगल से लाए साल वृक्ष की शाखा की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर महापौर संजय पांडे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष बलदेव मंडावी, कलेक्टर आकाश छिकारा सहित बस्तर दशहरा समिति के सदस्य, पारंपरिक मांझी, चालकी, मेंबर, मेंबरीन, पुजारी, पटेल, नाइक, पाइक और सेवादार मौजूद थे। आज विश्व हाथी दिवस है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दुनिया के 60% से अधिक जंगली एशियाई हाथी भारत में पाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि देश में 33 एलिफेंट रिजर्व हैं जो हाथियों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराते हैं और उनके दीर्घकालिक संरक्षण के प्रयासों को मजबूत करते हैं। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 महिला मजदूरों की मौत हो गई है। वहीं 20 से अधिक महिलाएं झुलस गई हैं। ये सभी महिला मजदूर छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले की रहने वाली हैं। मिली जानकारी के अनुसार जशपुर जिले के तुमला थाना क्षेत्र के बरडीह सहित आसपास के गांव से महिला मजदूर धान की रोपाई के लिए ओडिशा गई थी। तलसरा थाना क्षेत्र के बालीशंकरा स्थित भाटीपाड़ा के पास धान की रोपाई के दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिर गई। घायल महिलाओं को उपचार के लिए सबडेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। हज 2027 के लिए पहली किश्त जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी के चेयरमैन मिर्जा एजाज बेग ने बताया कि राज्य के चयनित आवेदक पहली किश्त 17 अगस्त तक जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए रायपुर के बैरन बाजार स्थित छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी से संपर्क किया जा सकता है। इस बीच हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों को प्रशिक्षण देने के लिए हज प्रशिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन 23 अगस्त तक आमंत्रित किए गए हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षा परिणाम में सुधार, अंक बढ़ाने या अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को उत्तीर्ण कराने के नाम पर आने वाले फर्जी कॉल से सावधान रहने की अपील की है। मंडल ने कहा है कि उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन जारी है और ऐसे मामलों में धनराशि की मांग करने वाले लोगों का मंडल से कोई संबंध नहीं है। विद्यार्थी और अभिभावक ऐसे कॉल पर विश्वास न करें, किसी प्रकार का लेन देन न करें और फर्जी कॉल मिलने पर तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने छत्तीसगढ़ के आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम से कल नई दिल्ली में हुई मुलाकात के दौरान अधिकारियों को बलरामपुर और रामानुजगंज शहरों को बायपास मार्ग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। रायपुर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय केटीयू और गोंडवाना विश्वविद्यालय गढ़चिरौली के बीच ग्रामीण पत्रकारिता शोध और जनसंचार को बढ़ावा देने के लिए एमओयू किया जाएगा। बिलासपुर जिले के ग्राम रहेंगे बिल्हा में 100 बिस्तरों वाले

0: ईएसआईसी अस्पताल की स्थापना के लिए 5 एकड़ भूमि को मंजूरी मिल गई है। श्री रामलला दर्शन योजना के तहत आज राजनांदगांव रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन श्रद्धालुओं को लेकर अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई। पहले से जेल में बंद कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार कर रायपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 5 दिन की ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। जांजगीर चांपा जिले की चांपा पुलिस ने एक पोस्ट ऑफिस एजेंट को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 150 से अधिक खाता धारकों से रिकरिंग डिपॉजिट खाते में रकम जमा कराने के नाम पर पैसे की वसूली की और राशि पोस्ट ऑफिस में जमा नहीं की। शुरुआती जांच में 1 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और राजनांदगांव जिला पुलिस बल के जवान महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित होने जा रहे नेशनल ट्रायथलॉन गेम्स में भाग लेने के लिए रवाना हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति भवन में स्वतंत्रता दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ की लोक और जनजाति विरासत की विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बस्तर संभाग में आज से बस्तर तिरंगा यात्रा की हुई शुरुआत। छत्तीसगढ़ का लोक पर्व हरेली आज प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पाठ जात्रा पूजा विधान के साथ आज से बस्तर दशहरा शुरू और ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जशपुर जिले की 2 महिला मजदूरों की मौत, 20 से अधिक महिलाएं घायल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। आइए सबसे पहले सुने सोनू निगम और अलका याग्निक का गाया फिल्म सोल्जर का ये गीत। गीतकार हैं समीर और संगीत दिया है अन्नू मलिक ने।

0: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
4: देश की सुरीली धड़कन
5: विविध भारती,
3: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
4: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
3: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
4: वीर सैनिकों की जय माला
3: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
4: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
6: सखी सहेली,
4: बॉम्बे टॉकीज और
7: सेल्यूलॉइड के सितारे,
4: हम क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा,
8: मुझे याद सब है जरा जरा,
3: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
4: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
3: मन का सुकून, दिल की आरती,
4: सुरीली संदली।
9: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
0: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
9: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
9: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।

0: उदित नारायण और साधना सरगम को अभी आप सुन रहे थे। फिल्म थी जो जीता वही सिकंदर में। गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी और संगीत जतिन ललित का था।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत, कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज और
5: सेल्यूलॉइड के सितारे।

0: क्या कहें, आपको याद सब है जरा जरा।
1: मुझे याद सब है जरा जरा।
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
0: DTH और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
0: सुरीली संदली।
3: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
4: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
3: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
4: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
3: आकाशवाणी से।
5: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
6: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
7: कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुने दस्तक फिल्म से। आवाज उदित नारायण की है, गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीतकार राजेश रोशन।

उदित नारायण के गाए इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब समाप्त होता है। एफएम बैंड पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुनिए जमो संगी संगवारी मल्ला आप मन के संगवारी रामविलास पटेल के राम राम जय जुहार संगवारी हो आप सबोला हरेली तिहार के गाढ़ा गाढ़ा बधाई है शुभकामना है संगियो ये तिहार ला आज हमन पूरा संगवारी हो हमारे छत्तीसगढ़ भर में मनाए जाते और खेती किसानी के काम शुरू हो के हमार अभी के बेरा में संगवारी हो जो चारों कोती हरियर वातावरण रहते हमार डहर जो लगाए रथन संगवारी हो जो भी हमन पौधा लगाए रथन बीज बोए रथन सब हरा भरा हो जा रहे थे और प्रकृति के प्रति जो है आभार व्यक्त करे की दिन हर आज होते संगी हो अगर हरेली के बारे में बात करबो तो अलग अलग रीति रिवाज है पकवान है चीला बनाए जाते और हमर जो भी औजार है खेती किसानी के जो औजार है चाहे नांगर हो कोपर हो ट्रैक्टर हो या अन्य जो संगवारी हमार कृषि यंत्र हावे ओ मन के बिहनिया ले साफ सफाई किए जाते कुदारी है राफा है गैती है माने जतका भी हमार यंत्र हावे या हमार कहना चाहिए औजार हावे सब बोला हमन संगवारी हो धो मांज के बढ़िया से एक जगह में घर में राखथन और वहाँ पूजा पाठ करथन तिलक लगाथन चाउर के आटा के हमन का बनाथन संगवारी हो ओकर झोर बना के बढ़िया से बना लेथन और ओकर थापा भी लगाथन और आज पूरा हमर छत्तीसगढ़ भर में एकर करत भी हैं पूजा पाठ ला और मवेशी मन के जो भी हमर गाय गरुआ रहते अहू मन की भी पूजा करे के परंपरा है संग में गोरंगी ले पशु मन के चित्र भी बनाए जाते दीवाल में चित्रकारी भी किए जाते संग में ये भी है कि नीम के पत्ता लग भी घर के मुहटा में टांगा जाते और लोहरा जोन होते संगवारी लोहार होते वो घर के जो कहना चाहिए संगवारी चौखट होते वहाँ कील भी एक ठन ठोकते ये भी माना जाते कि और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में काम करते तो अलग अलग मान्यता है कई जगह में बांस के गेड़ी खपाते हैं गेड़ी खेलते हैं और गेड़ी चढ़ते भी नारियल फेंक प्रतियोगिता होते नाना प्रकार के होते और ये तिहार की जो मुख्य रूप से संगवारी हो कहना चाहिए सुरता आते वो गुड़ की चीला पर आते चावल के आटा ला बढ़िया से तैयार करके उमा गुड़ ला डाल करके संगवारी हो चीला बनाए जाते जो ना ज्यादा एकदम बहुत ही बढ़िया मिठास ले भर रही थे संगवारी हो हरेली के तिहार

हमला एकजुट होकर के प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करे के दिन ल दर्शाते और आज हमने मनाथन। तो हमर जतका भी श्रोता संगवारी है सबोला हरेली तिहार के गाढ़ा गाढ़ा बधाई है और शुभकामना है। संगियो देखा पशु मन में बांझपन के कारण और निवारण के बारे में बात करथन, तो पशु मन में बांझपन के का कारण हो सकत है। संगियो देखा पशुपालन के काम आप मन करिया तो आप मनला साल में कम से कम एक ठन बच्चा मिलना जरूरी है। अगर एक ठन बच्चा भी नहीं मिला थे तो संगवारी हो आप मन के समस्या बड़खा रूप ले सका थे। काबर काबर की संगी हो पशु मन में संक्रमण के कारण होते या हार्मोनल असंतुलन होते या कहन ओकर पोषक तत्व के पूर्ति सही नहीं हो पाए, एकर कारण से पशु जो है बांझपन के कारण में चले जाते। तो हमला देखना है कि पशु हर बांझपन के कारण में काबर जाते। सबले पहली हमन देखथन कि गांव घर में गर्मी में आते ऋतु चक्र में आते तो हमन कृत्रिम गर्भाधान कराथन, लेकिन कई क्षेत्र मन में कृत्रिम गर्भाधान के तकनीक नहीं हावे तो सांड से ही क्रॉस कराते और होते भी ओकर से भी, लेकिन ये में का होते सांड से क्रॉस होते लेकिन हमला समझ नहीं आ पाए कि जो संगवारी हो ठहरीस कि नहीं ठहरीस, ये सब हर समस्या हो जाती है। अगर हमन कृत्रिम गर्भाधान कराथन तो हर 21 दिन में अगर आते फिर से तो हमन समझ जाथन कि वह ठहरीस नहीं है। तो एकर बर हमला का है संगवारी हो पोषण के जो समस्या है ओला हमला ध्यान में रखना पड़ी और ध्यान में रखना पड़ी का है पोषण के कमी झन हो। आहार जोन भी हमन देथन ओमे खनिज तत्व विटामिन कापर्स जिंक और जो भी विटामिन ए डी ई होते ये मन पशु मनला बहुत ही कारगर रूप से फायदेमंद करते। खास तौर से ओवरी ला ओकर अंडाशय ला विकसित होए मा ओकर विकास मा संगवारियों विटामिन ए डी और ई हर काफी लाभप्रद रहते। तो ऐसे स्थिति में संगवारियों हमला ध्यान में रखना है कि पशु ला पोषण के कमी झन हो। पोषण के कमी ले ही बांझपन के होते तो आप मतलब पोषण के कमी हो नहीं देना है। जो जनन अंग है उमा संक्रमण भी होते कबू कबू संगवारी हो ओकर जेर हर सही नहीं गिर पाए तो एकर से भी गर्भाशय में मवाद बन जाते या रुक जाते, एकर से भी जो उमन के जनन अंग है वहाँ संगवारी हो इन्फेक्शन हो जाते। तो एकर बर हमला ध्यान में रखना है कि जब भी बच्चा देते तो ओकर जेर हर पूरा बढ़िया से गिरे, ओकर बाद बढ़िया से सफाई करके हमन वहाँ से का कर सकथन आगे ब्याज पर अच्छा से हमन फिर नियमित समय में बच्चा प्राप्त कर सकथन। एक होते हार्मोनल असंतुलन शरीर में का होते संगवारी हो प्रोजेस्टेरोन करके एक हार्मोन रहते और एस्ट्रोजोन करके रहते, दोनों के संतुलन हर अगर बिगड़ते तो संगी हो गर्मी में नहीं आए। और एक कारण ये भी होते कि ओवरी जो रहते अंडाशय रहते ओकर ऊपरी भाग में सिस्ट बन जाते तो एकर से फिर संगवारी हो एआई करे में भी दिक्कत होते और जो भी एआई करता रहते वो बीजा डालते लेकिन संगवारी हो वह ठहर नहीं पाए। तो एकर पर भी हमला ध्यान में रखना है। खास तौर से और जो समस्या होते वह है प्रबंधन में एआई की गलती, यानी एआई की गलती के मतलब ये है कि कृत्रिम गर्भाधान करने वाला जो गलत तरीका से अगर कृत्रिम गर्भाधान करत है तो ओमा भी दिक्कत होते। कैसे दिक्कत होते, सबसे पहली देखा गर्मी में आते पता चला थे तो 12 घंटा के बाद संगवारी हो का करना चाहिए एआई कराना चाहिए। अगर 12 घंटे के बाद अगर कराते हैं तो ओमा रुके के संभावना ज्यादा रहती। अगर गर्मी आते तुरते अगर हमन एआई करा देते हैं कृत्रिम गर्भाधान करा देते हैं तो ओकर से ठहरे के संभावना कम हो जाते, ये भी समस्या है। रोग और परजीवी, जो परजीवी रहते परजीवी यानी दूसरे के ऊपर आश्रित रहते तो पेट के कीड़ा भी रहते भीतर में और बाहर में भी रहते, तो एकर से संगी हो का होते पशु के बढ़वार और विकास नहीं हो पाए। एकर पर हमला चाहिए कि हमन कृत्रिम गर्भाधान के तकनीक अपनाथन या सामान्य रूप से हमन पशुपालन करथन तो हमला कृमि रहित करना जरूरी है। कृमि रहित करे बर पेट में कीड़ा मारे के जो दवाई आते गोली आते एल्बेंडाजोल फेनबेंडाजोल आते तो ओकर हमला डॉक्टरी सलाह परीक्षण और मार्गदर्शन अनुसार दवाई ले खिलाना चाहिए, नहीं तो संगवारी पशु और संक्रामक रोग ब्रुसोलोसिस के समस्या ले जूझ जाते। यानी ब्रुसोलोसिस में समस्या ये है संगी हो कि वो बच्चा गाभिन नहीं हो पाए,
यानी बांझपन के समय

से हो जाते। तो एक टीका भी लगते पशु विभाग के डहाल ले, तो आप मन पशु विभाग के डॉक्टर से संपर्क करू तो आप मन के समाधान हो जाही। संग म नियंत्रण में हमला बांझपन के नियंत्रण पर संतुलित आहार और मिनरल मिक्सचर देना चाहिए। पशु ला रोजाना सूखा चारा और हरा चारा के संग में 50 ले 100 ग्राम बढ़िया गुणवत्ता वाला मिनरल मिक्सचर खनिज लवण देना चाहिए। दूसरा बात यह है संगियों की डिवार्मिंग 3 से 6 महीना के अंतराल में कराना चाहिए और प्रसव जब हो थे बच्चा जब दे थे ओकर 21 दिन के अंदर डिवार्मिंग होना बहुत जरूरी है। अगर 21 दिन के भीतर कर देथन तो संगवारी हो पशु का होते दूध उत्पादन बढ़िया देते। संग में संगवारी देखा गर्मी के सही पहचान 12 से 18 घंटा के जो समय रहते और गोल्डन हावर रहते ये बीच में अगर आप मन कृत्रिम गर्भाधान कर रहा तो संगवारी हो पशु में रुके के संभावना जो है बच्चा देह के संभावना बाढ़ जाते। संग में संगवारी हो गर्भाशय के उपचार अगर पशु गंदा या सफेद मवाद जैसे स्राव करते तो सफाई भी होते ओकर पशु विभाग के डॉक्टर मतलब बताइए कि ऐसे ऐसे होते तो ओकर से भी ओमन दवा डाल के वाला सफाई कर लेते हैं। हार्मोनल थेरेपी भी होते डॉक्टर अपन के हाथ ले इंजेक्शन के माध्यम से भी करते तो एकर से भी होते। और जब भी पशु प्रसव करते तो साफ सुथरा जगह में ओमला करवाओ जेल बढ़िया से निकलन देवा नहीं निकला थे तो डॉक्टर ला बतावा और समस्या के समाधान ला पावा। संगवारी वो समस्या के समाधान जब तक नहीं करिया आप मन के कृत्रिम गर्भाधान के तकनीक ला नहीं अपनाहा और पशु के बांझपन के कारण ला नहीं जानिया तो आप मन के पशुपालन ले लाभ नहीं हो पाए। पशुपालन में हर एक साल में एक ठन बच्चा मिलना चाहिए ऐसे विषय विशेषज्ञ मन कहते हैं। तो आप मन ये चीज ला ध्यान रखिए कृत्रिम गर्भाधान के जो तकनीक है तेला अपनाना चाहिए एकर से उन्नत नस्ल के बछिया हमला प्राप्त होते। आजकल ऐसे भी तकनीक आ गई ना कि बछिया ही उत्पन्न होते तो आप मन ये चीज ला भी अपना करके पशुपालन ला बेहतर लाभ में ले जा सका था। संगियो आज के हमार प्रश्न हावे पशु ला कृत्रिम गर्भाधान गर्मी आय के कतका घंटा के अंतराल में कराना चाहिए। संगियो प्रश्न ला सुना पशु ला कृत्रिम गर्भाधान गर्मी आय के कतका घंटा के अंतराल में कराना चाहिए। आप मन सही जवाब लिख भेजिए उत्तर के अगोरा रही। अब चला हमन चलबो संगवारी हो और सुनबो एक ठन सुघर एकन के लोकगीत ला कटे झाड़ी कटे जंगल विदुषी ममता चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकर की युगल स्वर्मा आवश्यक।

तो संगवारी हो देखा बढ़िया गीत ला सुनेन विदुषी ममता चंद्राकर और कुलेश्वर ताम्रकर की युगल शर्मा। ऐसे गीत और संगीत के क्रम जारी रही हमार क्रम में चौपाल में। संगीत देखा बात करथन तो हमार जो खेती किसानी के काम होते संगीत, खेती किसानी के काम में कृषि रसायन बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हमार उत्पादन।

उत्पादन ल बढ़ाए म घटाए म और अगर एकर हमन थोर कुन भी अनदेखापन करत हन या लापरवाही पूर्वक एकर उपयोग करत हन तो संगी हमर उत्पादन पूर्ण रूप से प्रभावित होते। कीटनाशक के फफूंद नाशक है या खरपतवार नाशी है ये मन के उपयोग हमन करथन रोग बीमारी ल भगाए बर, तो ये सब ल भगाए बर करथन लेकिन उल्टा के पुल्टा अगर दवाई ला ले लेथन तो संगवारी हो रोग बीमारी के संग में फसल भी चौपट हो जाते। तो एकर बर हमन कहना चाहबो आज के नसीहत में आप मल्ला कि कृषि रसायन की खरीदी करा था तो मैं सावधानी जरूर अपनाओ। कैसे सावधानी अपना हा? अब भैया आज पूरा सावधानी के बात ला करा थे कहिया तो का करिए संगवारी हो सावधानी ही अपनाना पड़े काबर की अभी खरपतवार नाशी दवा के छिड़काव के बेराहर चला थे। किसान संगी जोहरिया मन अभी खरपतवार नाशी दवा के छिड़काव भी कराते हैं। एमे का है संगवारी हो पक्का बिल और लाइसेंस आप मन जहाँ ले भी कृषि रसायन के खरीदी करा था तो प्रयास करा कि जो अधिकृत विक्रेता हावे लाइसेंस प्राप्त करता हावे जीएसटी वाला बिल पक्का देने वाला है वहाँ से लेवा ओकर से पूरा लिहा। तो संगवारी हो का है उपयोग करिया काम निया ही या उकर गलत उपयोग यानि उकर गलत प्रभाव दिखी तो आप मन वाला शिकायत भी कर सका था। लेबल और एक्सपायरी डेट ला भी आप मतलब ध्यान में रखना है। कभू कभू का है संगवारी हो आज के चाका चौन भरे जीवन में स्टिकर लगा देते हैं या पेन से लिख देते हैं या नाना प्रकार के आगे जेमा उत्पादन तिथि बोतल जो रथे पैकेट रथे ओमा निर्माण तिथि मैन्युफैक्चरिंग डेट रथे और एक्सपायरी डेट रथे तो दोनों ला हमला ध्यान में रखना पड़ी। नहीं तो संगियों का होते कि हमर जो ले रथन वो दवाई हर सही काम नहीं करे। हमन एकरे बार कोई भी दवाई लेथन चाहे हमर घरेलू उपयोग पर जैसे दवाई लेथन सर्दी खांसी जुकाम बल लेथन तो भी हमन देखथन कि एक एक्सपायरी कब तक आवे देने वाला भी देखते। तो वैसने हमला संगी हो खेती किसानी के काम है तो बहुत जगह का होते एकर एक्सपायरी डेट हर एक महीना भाग घिसेगा यार 500 के ले ला 250 रुपया दे देबे और ले जा छिड़काव कर देबे फसल में तो काम आबेज कर ही मन भरा में ऐसे करके भी रही थे। लेकिन संगी हो आप मन ऐसे करके छिड़काव करिया तो आप मन के खरपतवार नहीं मर ही तो वही स्थिति में आप मन दोबारा टंकी लेके स्प्रे करना पड़ी लेबर बुला के फिर निंदवाना पड़ी। तो एकर बर आप मन लेबल और एक्सपायरी डेट ला जरूर ध्यान में रखा। संग में केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड के पंजीकरण संख्या ला भी देखा ओकर सुरक्षा के त्रिकोण रथे जैसे लाल रथे पीला रथे नीला रथे हरा रथे और लाल हर सबले ज्यादा जहरीला रथे तो इला भी आप मतलब ध्यान में रखना है और रोग के अनुसार से दवाई ला उपयोग में करना है। का होते बहुता संगी जोहरिया मन दवाई में उपयोग तो करते हैं लेकिन अपन मन मर्जी के पाछू बचर तो मैं ऐसे कर रहे हैं तो छोड़ दिस। तो एकर बर का है संगी हो कि आप मन के विशेषज्ञ जोन है या जानकार हावे या आप मन के प्रगतिशील कृषक हावे ओ मन से संपर्क करो। आजकल ऑनलाइन के माध्यम से भी आप मन देख सकता हो ओकर बारे में जांच परख कर सकता हो और ओकर हिसाब से आप मन दवा के उपयोग करिया तो आप मन के फसल हर बढ़िया सुघर ठिन्ना हो ही और रोग बीमारी ले बाँची जी। आप देखा का होते प्रयोग करे के बेरा भी सावधानी अपनाना पड़ते तो आप मन छिड़काव के बेरा चेहरा में मास्क आँखी में चश्मा हाथ में दस्ताना और पूरा शरीर ढके वाला कपड़ा पहरा जूता पहरा सही मात्रा में घोल बनावा दवा के अनुशंसित मात्रा ला खुराक में उपयोग करा घोल बनाए के बेरा खाली हाथ में झन करा या जो भी आप मन छड़ी ले लेवा या लकड़ी के ले लेवा ओमा बढ़िया हिला डुला लेवा। मौसम ला ध्यान में रखा कि मौसम कैसे है मौसम अगर पानी गिरे के लागत है संभावना लागत है तो ऐसने में अगर छिड़काव करिया तो आप मन के दवा हर काम नहीं करे हवा की दिशा के हिसाब से आप मतलब छिड़काव भी करना पड़े। खास तौर से संगी हो खरपतवार नाशी दवा के छिड़काव में हवा हर बहुत महत्व रखते यार काबर की दिखते जोन दहार में पाही वो डहार के खरपतवार मर जाते और जोन हराई है छूट जा रहे थे और जोन ठाउर में नहीं पाए रहते हवा के कारण से या आप मन के पाही धरे में तो और बांच जाते तो पता चल जाते कि वो क्षेत्र में दवा स्प्रे नहीं हुई से। तो एकर बर

0: खरपतवार नाशी दवा छिड़काव करत हा तो छोटे पाही बनावा, छोटे हराई बनावा, छोटे पट्टी बनावा और उमा देख ताक के स्प्रे करा। संग में घोल बना था तो बढ़िया से घोल बना ले, वह बढ़िया साफ पानी का उपयोग करा। मौसम के भी ध्यान में रखना है कि ज़्यादा धूप भी करी या ज़्यादा हवा भी करी या ज़्यादा बारिश भी संभावना रही तो उमा भी समस्या है, तो एक बार आप मन सही मौसम देख के आप मन आकलन लगा के कर सका था। खान पान ये भी रामा करना नहीं है आप मन ला, गुटखा तम्बाकू चोंगी कई प्रकार के हमारे गाँव घर में दादा परदादा मन किसान मन धूम्रपान है, तम्बाकू है, सिगरेट है, गुटखा है, या कहना चाहिए का कहते हैं संगवारी हो बहुत सारा उपयोग करते हैं ओमन, गुड़ाखू करते हैं, भुला जात रहे देखा गुड़ाखू करते हैं, तो एयर भी गलत आवे। आप मतलब परहेज करना चाहिए कब कौन दवा असर कर दी का, आप मन के शरीर कैसे आवे उकर हिसाब से आप मतलब देखना पड़ी। और जब भी आप मन प्रयास करत है कर छिड़काव के भुरकाव के तो मुँह में दस्ताना लगा ले, मास्क लगा ले संगवारी हो। एकर से कहा होते एक दस्त मास्क भी नहीं लगा था तो कपड़ा भी लपेट दिया तो अतकी से कहा है सीधा हवा के एकदम तेज हवा करते तो और सांस के माध्यम से भीतर नहीं जाए। और जब भी आप मन ये दवा मन के उपयोग करा था तो भंडारण सुरक्षित ठौर में करा, और सुरक्षित ठौर में करिया तो आप मन के बढ़िया रही, पशु मन भी एकर से बची, लड़का मन भी पहुँच से धुरिया रही और खाली डिब्बा के आप मन सही उपयोग कर सका था। तो संगी हो ये सब चीज़ आप मन ध्यान में रखिया तो आप मन के फसल बढ़िया रही। अब चला हमार ग्राम कटौत विकास खंड खरसिया के प्रगतिशील कृषक नारायण गवेल से धान उत्पादन की बेहतर तकनीक श्री पद्धति एवं रोपा के विषय में बातचीत करबो। अब सुनी उमन के भेंटवार्ताला।
1: संगवारी हो राम राम जय जुहार। खेती किसानी के काम बारह महीना आठों काली चलत रही थे और खेती किसानी के काम में उन्नत तौर तरीका तकनीक ला अपनाना बहुत ही जरूरी रही थे। ऐसे में हमन भेंटवार्ता के जो क्रम रही थे तेमा भेंट करथन युवा प्रगतिशील किसान मन ले जे मन के विचार ला रेडियो के माध्यम ले कार्यक्रम के माध्यम ले साझा करथन। तो ऐसे ही क्रम में हमर बीच में प्रगतिशील किसान भाई उपस्थित है। सबले पहली किसान भाई ला हमर कोती ले राम राम जय जोहार।
2: जय जोहार, मैं नारायण कुमार गवेल तहसील खरसिया बरगढ़ खोला।
1: अच्छा, तो नारायण कुमार गवेल जी आप मन के गांव हावे रायगढ़ जिला मुख्यालय कतका धुरिया में है?
2: यहाँ ले 80 किलोमीटर दूर में है मोर गांव, और बरगढ़ खोला जो नाम है और जंगली जो पहाड़ है हमार गांव के चारों तरफ फैले है और गांव पहाड़ के बीच में 28 गांव है।
1: अच्छा,
2: वही में हमरो गांव है कटौद।
1: तो अभी के बेरा में आप मन धान के कैसे तकनीक से खेती करता, कहाँ का धान लगा है एकर बारे में बतावा।
2: मैं अभी धान लगाया हूँ स्वर्णा है और 1001 है।
1: हाँ हाँ,
2: और HMT है। और एक ठो दुबराज है जिला मैं कृषि विज्ञान केंद्र रायगढ़ ले लेके गए रहे
1: जी
2: पिछले साल।
1: हाँ हाँ,
2: उकर बीज तैयार करके ये साल फिर लगाया हूँ ताकि जो पूर्वज में हमारे नाना नानी मन के समय में जो धान उत्पादन होत रही से और जो खाए में जो स्वाद और लचीलापन मतलब एक अलग प्रकार से जो खुशबू आते वो धान जवा फूल और ओकरे बर वो धान ल में सुरक्षित करके ये साल फिर लगाए हूँ और श्री विधि में लगाए हूँ।
1: अच्छा अच्छा, यानी कि आप मन जो परंपरा से चले आदरी से जो धान की किस्म वो धान की किस्म सहजे पर आप मन आगू बढ़ा था वो श्री पद्धति से।
2: हाँ,
1: अच्छा, तो क्या होती श्री पद्धति?
2: श्री पद्धति लाइनिंग में जो लाइनिंग में लगाए जाते धान के बढ़वार और बीमारी ये बीमारी बहुत कम आते।
1: अच्छा,
2: धान के बढ़वार अच्छा होते और धान के पेड़ भी अच्छा रहते और गिरे नहीं।
1: अच्छा, ये तो सामान्य बातचीत है कि ये सब लाभ है, लेकिन ये मां कुछ ऐसे भी ध्यान रखना पड़ते का निश्चित दूरी भी रखना पड़ते पौधा से पौधा के दूरी और एकर नर्सरी प्रबंधन कैसे करना पड़ते, कैसे तैयारी करना पड़ते?
2: एकर पर हमन रोपा के तैयारी करथन नर्सरी के पहले। ओकर बाद में जब रोपा लगाथन उस समय आधा मीटर ले कुछ और कम में ओला हमन श्री विधि कथे उस श्री विधि के आधार से हमन लगाथन।
1: अच्छा,
2: और उमा उपज के साथ साथ बीमारी बहुत कम आती।
1: अच्छा अच्छा, उपज के साथ बीमारी भी कम आते और खरपतवार प्रबंधन।

0: बंधन भी एमा नहीं के बराबर होते।
1: अच्छा, तो बढ़िया बात है संगवारी की, आप मन श्री पद्धति से आप मन धान की उन्नत खेती करा था। एकर अलावा श्री पद्धति के अलावा और का किस्म ले है और कैसे तकनीक से करते हैं, जैसे खुर्रा बोनी करते हैं, लेही पद्धति करते हैं, रोपा करते हैं, तो का पद्धति ला आप मन अपना था?
0: हमार जो क्षेत्र है वो हर जंगली क्षेत्र है, रेतीला क्षेत्र है।
1: अच्छा,
0: तो हमारे यहाँ बुआई, खुर्रा बुआई, लहरा बुआई बहुत कम मात्रा में होते। तो हमन नर्सरी की तैयारी करथन, धान बीजा लेके नर्सरी लगाथन, ओकर बाद में हमन रोपाई करथन।
1: किस्म कारत है?
0: किस्म में स्वर्णा है, 1001 है, और HMT है, और जवा फूल के धान है।
1: अच्छा,
0: चार प्रकार के है। लगभग 10 एकड़ में खेती करे हूँ।
1: हाँ हाँ
0: तो चार प्रकार के धान ले हूँ मैं उमा।
1: अच्छा,
0: काबर खाए बर भी लगते, मार्केट में जो चावल आते वो हर अच्छा लगे नहीं, ओकरे बर हमन स्वयं HMT के जो वैरायटी है और जवा फूल के जो वैरायटी है वो अच्छा चयन करके कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन लेके वाला लगाए हैं हमन, ताकि स्वास्थ्य भी ठीक रहे और जमीन भी ठीक रहे।
1: अच्छा, तो बढ़िया बात है कि आप मन ये तकनीक से खेती किसानी के काम ला करा था। संग मा ये बता गवेल जी कि ये जो खेती किसानी के तौर तरीका ये मा हमला अभी देखा था, लगातार खेती किसानी में लागत बढ़ जाती, तो लागत ला बढ़ाए ले घटाए पर आप मन का प्रयास करता है, यानी लागत ला घटाए पर का प्रयास हावे आप मन के?
0: किसान हमेशा दूसर किसान ला पूछत रहते कि तोर खेत में का धान लगा थस, का खाद डाला थस, कतका खाद डाला थस, और का दवाई डाला थस। तो हमेशा दूसर के पीछे में भागना नहीं चाहिए।
1: हाँ हाँ,
0: ला अनुभव करके खेती किसानी से जुड़े हैं, पूर्वज मन भी खेती किसानी करत आत हैं।
1: हाँ हाँ,
0: तो ओला थोड़ा सा अपन ला स्वयं ला समझ के जो आज के जो लागत है वो लागत ला कम करके फसल और उत्पादन दोनों ला कम करे बर हमन काय करथन, हमन गोबर के खाद लेथन, गोबर के खाद ला हमन डाला थन, DAP कम बहुत कम रूप में डालथन, यूरिया भी बहुत कम रूप में डालथन, ताकि धान ला नुकसान मत हो। और जैसे किसान यूरिया डालिस ओकर बाद में कीड़ा मकोड़ा माहो ये सब आए के चालू हो जाते। ओकर कारण ये है कि यूरिया डाले के बाद में जो धान के बाली है, धान है के पेड़ है, वो हर नरम हो जाते।
1: अच्छा अच्छा,
0: नया पत्ता निकले के चालू हो जाते, तो नया पत्ता निकलते वो हर मीठा मीठा लगते।
1: अच्छा,
0: मीठा लगते तो कीड़ा लगते।
1: हाँ, मतलब खाए में सोलियत भी होते, कोमल भी रहते, तो अच्छा लगते। हाँ, तो हमें ऐसे प्रयास करना चाहिए कि जैविक तरीका से
0: खेती करना चाहिए, ताकि आमदनी भी ज्यादा हो।
1: हाँ,
0: नुकसान भी ज्यादा मत हो।
1: बिल्कुल सही कहा आप मन गवेल जी कि जैविक तरीका से खेती किसानी भी करना जरूरी है। और आप मन जैसे कि बतावा कि श्री पद्धति है, रोपा पद्धति है, ये तकनीक से आप मन खेती किसानी के काम ला करा था, धान उत्पादन ला लेवा था, बढ़िया बात है। और धान के कटोरा हावे छत्तीसगढ़, और ये मा आप मन के किसान मन के भी सहभागिता होना बहुत ही जरूरी है। तो गवेल जी, हमारे श्रोता संगवारी मतलब का कहना चाहिए आखिर में?
0: मोर यही है, छत्तीसगढ़ के जतका किसान संगवारी है सब लोग, तो मैं राम राम करा था पहले। मोर मैं बहुत छोटे से किसान हूँ, जे हर 5-7 साल हो थे ये खेती किसानी से जुड़े हूँ, और खेती किसानी से जुड़े के बाद में आज के जो मोर अनुभव है वो हर लेना है आप मतलब ही करना है। तो जब तक आप जैविक खेती नहीं अपने यहाँ, तक हमार छत्तीसगढ़ और हमार खेत सुरक्षित नहीं रहे, न हमार किसान सुरक्षित रहे।
1: जी,
0: और वही आप मन से निवेदन है कि आप मन भी जैविक खेती करा, ताकि भविष्य में जमीन बंजर ना हो और छत्तीसगढ़ बंजर ना हो।
1: जी,
0: आज धान के कटोरा ओकरे बर कथे कि आज सबसे ज्यादा धान छत्तीसगढ़ में उत्पादन होते।
1: जी,
0: एकर बर आप मन ला मोर निवेदन है कि आप मन भी छत्तीसगढ़ में जैविक खेती ला अपनाओ और सुघर खेती करो, स्वास्थ्य भी अच्छा रही और जमीन भी अच्छा रही।
1: तो गवेल जी, सुघर जानकारी हमारे बीच में आवा और परोसा देवा, एकर बर भी आप मन ला हमर डाले बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम, जय जोहार।
0: जय जोहार आप मन के रायगढ़ आकाशवाणी ला मोर तरफ से, और कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग ला। आज मोर यहाँ आप मन के जो बीच में

0: मोर सौभाग्य है, नहीं तो हमन 15 साल पहले छोटे छोटे आकाशवाणी के माध्यम से सुनन और हम मन लगे कि आकाशवाणी में हमार बात गोट बात जातीस। आवाज मोर सौभाग्य है कि मैं आप मन की स्टूडियो में आके बैठे हूँ, ओकर पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप मन ला। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
1: तो संगवारी बढ़िया भेंट वार्ता सुनन हमन नारायण गवेल कटौत विकासखंड खरसिया के कृषक के जुबानी। अब चला सुनबो भारत भुइयाला सुरता करत हुए श्रवण कुमार साहू और संगवारी के गाए सुघर गीतला।

संगवारी हो श्रवण कुमार साहू और संगवारी के गाय सुघर गीत ल सुनेन। अब बखत बेरा हुआ थे संसद समीक्षा सुने के, तो आवा सुनी संसद समीक्षा ला, फिर 8:15 में लहुट के आबो चौपाल के शेष भाग में।

आकाशवाणी है। अब आप मुकेश कुमार से संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले राज्यसभा, लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। संसद ने आज राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 को मंजूरी दे दी। इसमें राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने का प्रावधान है। राज्यसभा ने विधेयक पर हुई चर्चा पर सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल के जवाब के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। उच्च सदन में विधेयक पर विपक्ष द्वारा पेश संशोधनों को खारिज कर दिया गया। एक बार स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे सदन की बैठक फिर शुरू होने पर विधेयक पेश किया गया। विधेयक पर चर्चा शुरू होने से पहले नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात पर आपत्ति जताई कि इस विधेयक पर चर्चा के समय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह सदन में उपस्थित नहीं हैं। हालांकि उपसभापति ने उनकी ये आपत्ति खारिज कर दी। बाद में कांग्रेस सहित कई विपक्षी सदस्य विभिन्न मुद्दों पर विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए। विधेयक पर हुई चर्चा का उत्तर देते हुए सहकारिता राज्य मंत्री मोहोल ने कहा कि एनसीडीसी को सहकारिता क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और अन्य बदलावों के अनुरूप बनाने और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस विधेयक में कई प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने सहकारिता क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सदैव राज्यों की सरकारों से सुझाव लिए हैं और किसी भी राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। विधेयक के अंतर्गत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के अंतर्गत की गई थी। चर्चा में बीजू जनता दल की सोलता देव, डीएमके सदस्य के आर एन राजेश कुमार, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, भारतीय जनता पार्टी के रामराव सखाराम वडकुते, अमरपाल मौर्य, सदानंद महालू शेठ तानवड़े, बंशीलाल गुर्जर, डॉ अलका गुर्जर, एआईएडीएमके सदस्य एम थम्बीदुराई, डॉ एन धनपाल, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, शिवसेना की ज्योति नागनाथ बागमारे, टीडीपी के विजय चिंता कायला, जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गोल्ला बाबू राव ने भी हिस्सा लिया। विधेयक के पारित होने के बाद उच्च सदन में केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को चर्चा करने और पारित करने के लिए लिया गया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल की 15वीं विधानसभा ने 14 जून 2024 को संकल्प पारित कर केंद्र सरकार से अपील की थी कि संविधान के अनुच्छेद

तीन के अनुसार राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए तत्काल कदम उठाया जाए। इससे पहले विधेयक पर हुई चर्चा में केरल के सदस्यों ने अपनी बात मलयालम में रखी तथा केरल की संस्कृति की सराहना करते हुए इसे भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग बताया। कई सदस्यों ने ध्यान दिलाया कि ये कदम राज्य के लोगों की इच्छा के अनुरूप उठाया जा रहा है। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के तरुण चुग, सुधांशु त्रिवेदी, लहर सिंह सरोया, कांग्रेस की जेबी माथेर हिशम, मनोनीत सदस्य सी सदानंद मास्टर, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, डीएमके के तिरुचि शिवा, बीजू जनता दल के सुभाशीष खुंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के गुल्ला बाबू राय, एआईएडीएमके सदस्य एम थंबीदुराई, शिवसेना की ज्योति नागराज बागमारे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राजेंद्र हीरालाल जैन, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा, बीआरएस के रविचंद्र बद्दीराजू, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वी शिवदासन और ए रहीम, टीडीपी के विजय चिंता कायला, केसीएम सदस्य जोस के मणि, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सदस्य संतोष कुमार पी, आईयूएमएल के हारिस बीरन, यूपीपीएल के रवंगवरा नारजारी और डीएमके सदस्य एल के सुधीश ने भी भाग लिया। संविधान के अनुच्छेद 3 में मौजूदा राज्यों के नाम परिवर्तन का प्रावधान है। अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन की बैठक कल सवेरे 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन में दोनों विधेयकों को पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सुष्मिता देव ने कहा कि उन्होंने किसी राज्य की वेशभूषा पर कोई टिप्पणी नहीं की है और राज्यसभा से ऐसा कोई संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे भारत को सांस्कृतिक या धार्मिक आधार पर बांटने की भावना पैदा हो। ये स्पष्टीकरण उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के उस आरोप के सिलसिले में दी जिसमें उन्होंने कहा था कि सोमवार को सदन की कार्यवाही के दौरान भारतीय जनता पार्टी सदस्य ने उन्हें बार लुंगी वाला कहा था। सवेरे 11 बजे राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर इस मुद्दे को लेकर हंगामा हुआ था। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी थी। सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर सुष्मिता देव ने अपना पक्ष रखा। सदन के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने दोनों सांसदों के बीच पैदा हुई गलतफहमी को दूर करने की पेशकश की। इससे पहले दिन की कार्यवाही शुरू होने के बाद सूचीबद्ध दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के तुरंत बाद ब्रिटास ने ये मुद्दा उठाया। उन्होंने नाम लिए बिना कहा कि भाजपा के एक सदस्य ने उन्हें कथित तौर पर लुंगी वाला कहकर निशाना बनाया। विपक्षी सदस्यों ने ब्रिटास का समर्थन किया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि जब ये कथित घटना हुई थी तब वो सदन में मौजूद थे। उन्होंने सभापति से अनुरोध किया कि वो संबद्ध सदस्यों को अपने कक्ष में बुलाएं और उनकी बात सुनकर समाधान निकालें। सभापति राधाकृष्णन ने कहा कि सदन में एक सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला उनके संज्ञान में आया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों को टिप्पणियां करते समय ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि किसी की भावनाएं आहत ना हो। उन्होंने कहा कि हमारी संस्कृति अनूठी है और विविधता में एकता हमारी विशेषता है जो बनी रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी की संस्कृति को लेकर कोई भी आहत करने वाली बात कहना ठीक नहीं है। सभापति ने कहा कि वो संबंधित सांसदों को अपने कक्ष में बुलाकर इस मामले पर चर्चा करेंगे। सदन में सुष्मिता देव मौजूद थीं। इस बीच कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी सांसदों ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का अवसर देने की मांग की। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर के लिए दिए गए चंदे की कथित चोरी को लेकर नारेबाजी की। हंगामे के बीच सभापति राधाकृष्णन ने 12:20 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अब आप सुनिए लोकसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव महेश्वरी। लोकसभा में आज विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं सदन में हंगामे के बीच ही खान और खनिजों से संबंधित एक विधेयक पारित कर दिया गया और एफसीआरए विधेयक को विस्तृत समीक्षा के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजने को मंजूरी दी गई। अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा और दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होने के कुछ मिनट के भीतर अपराह्न 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों से सदन की कार्यवाही

प्रश्नकाल चलाने में सहयोग का आग्रह करते हुए कहा कि नीतियों और विचारों में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन देश सदन चलते हुए देखना चाहता है। श्री ओम बिरला ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होने का उल्लेख करते हुए कहा कि देश का युवा भी चाहता है कि उनके विषयों पर चर्चा हो, छात्रों के मुद्दों पर चर्चा हो। अध्यक्ष ने कहा कि सरकार ने छात्रों के मुद्दे पर चर्चा के लिए सहमति दे दी है, गृह मंत्री भी अपना वक्तव्य देने को तैयार हैं। उन्होंने आसन के समीप हंगामा कर रहे सदस्यों से कहा कि देश की भावनाओं को समझना चाहिए, देश चाहता है कि संसद चले। उन्होंने विपक्षी सांसदों से अपील की कि प्रश्नकाल चलने दें, इसके बाद सभी को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाएगा। दोपहर 2 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव रखा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और DMK ने विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में एक भी प्रावधान अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है तथा ये सिर्फ देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि विधेयक गैर सरकारी संगठनों और अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने FCRA विधेयक को अल्पसंख्यकों के खिलाफ बताते हुए तंज कसा कि यह सरकार आज तक ऐसा कौन सा विधेयक लाई है जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ नहीं है। DMK नेता TR बालू ने भी विधेयक को वापस लेने की मांग की। अल्पसंख्यक और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि इस विधेयक में ऐसा एक भी प्रावधान नहीं है जो अल्पसंख्यकों या किसी भी समुदाय के खिलाफ हो। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय को निशाना बनाने का सवाल नहीं उठता। श्री रिजिजू का कहना था कि कांग्रेस और कई विपक्षी दलों ने खुद मांग की थी कि विधेयक को संयुक्त समिति को भेजा जाए और अब जब इसे भेजा जा रहा है तो इस पर आपत्ति क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष को विधेयक के किसी बिंदु का विरोध करना है तो वो संयुक्त समिति के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष कुछ समुदायों को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद सदन ने विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच विधेयक को संयुक्त समिति को भेजने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। नियम के अनुसार इस संयुक्त समिति में 31 सदस्य होंगे, इनमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल होंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि समिति इस वर्ष शीतकालीन सत्र से पहले सप्ताह में लोकसभा को रिपोर्ट सौंपेगी। हंगामे के बीच पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने अपराह्न 2:27 पर सदन की बैठक 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बजे बैठक फिर शुरू होने पर केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने विपक्षी सदस्यों के विरोध के बीच खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। विपक्षी सदस्य अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावे की कथित चोरी पर चर्चा और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। इसके साथ ही कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और DMK सदस्य विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन FCRA विधेयक 2026 वापस लेने की मांग करते हुए भी हंगामा करते रहे। RSP के NK प्रेमचंद्रन ने खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 का विरोध करते हुए कहा कि संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है। हालांकि सदन के हंगामे के बीच ही बिना चर्चा के विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कुछ विपक्षी सदस्यों के प्रदर्शन के तरीके के इशारा करते हुए आसन से मांग की कि विपक्ष के वरिष्ठ साथियों को अनुशासन के साथ प्रदर्शन करने के लिए समझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता सही नहीं है, विपक्ष के सदस्य अपनी सीटों पर चले जाएं तो हम विद्यार्थियों के मुद्दे पर अभी चर्चा शुरू करने को तैयार हैं, 80% सदस्य चर्चा चाहते हैं। रिजिजू ने बताया कि गृहमंत्री अमित शाह ने आज एक पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष से फिर से अनुरोध किया है। नीट परीक्षा को लेकर छात्रों का जो आंदोलन हुआ है उस पर तत्काल चर्चा शुरू करने के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते विपक्ष के सदस्य शांति से बैठें। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने कहा सरकार इसके लिए तैयार है कि इस चर्चा को तत्काल प्रारंभ किया जाए। आपकी मांग थी कि गृहमंत्री इस पर जवाब दें, सरकार चर्चा के लिए तैयार है, गृहमंत्री हर बिंदु पर जवाब देने के लिए तैयार हैं। हंगामा नहीं थमने पर सदन की कार्यवाही 3:15 पर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल इसका अंतिम कार्य दिवस है।
राम मंदिर, चढ़ावा चोरी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई

0: समेत विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण पूरे सत्र में सदन में गतिरोध बना रहा और अब तक एक भी दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चला है। निचले सदन ने पिछले कुछ दिनों में हंगामे के बीच ही कुछ विधेयकों को ध्वनिमत से मंजूरी दी है। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने वाली समिति की रिपोर्ट आज लोकसभा में पेश की गई। न्यायमूर्ति वर्मा के आधिकारिक आवास से कथित तौर पर नोटों की अधजली गड्डियां मिलने के मामले में उन्हें पद से हटाने की कार्यवाही शुरू की गई थी। उस समय वो दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यरत थे। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने जांच समिति की दो खंडों वाली रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी। अभी आप संसद में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: संगवारी हो देखा बढ़िया, अब संसद में हुई कार्यवाही की समीक्षा ला सुनत रहें। कार्यक्रम में आगू बढ़बो और सुनबो एक ठन संदेश ला।
2: हेलो
3: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
2: फिर से?
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
2: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
2: 2 लाख
5: क्या हुआ पापा?
2: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
2: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
2: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
2: तो पैसे गवाओगे,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: संगवारी हो, जैव उर्वरक फसल और मृदा पर वरदान हावे, काबर की जो भी बैक्टीरिया रहते संगवारी हो, वो बैक्टीरिया ला सक्रिय करे मा या हमारे वायुमंडल में जो भी नत्रजन रहते वाला स्थिरीकरण करे मा या अघुलनशील फास्फोरस रहते तेला घोले मा जैव उर्वरक कर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। हमार प्रकृति के जो कहना चाहिए, देखा था हम दिन व दिन प्रकृति में जो माटी हावे, माटी में पोषक तत्व की कमी हो जाते। कारण का है संगी हो कि कई प्रकार के जीवाणु मन के सक्रियता घटत है, आताधुरा रासायनिक उर्वरक और खाद के प्रयोग हुआ थे, एकर कारण माटी के संगवारी हो पोषक तत्व भी घटत जाते। तो ऐसने में माटी के संरचना ला बढ़ाए बर, सूक्ष्म जीव मन के संख्या ला बढ़ाए बर, उमन के गतिविधि में वृद्धि करे बर, माटी ला भुरभुरा बनाए बर, पानी धारण करे के क्षमता ला बढ़ाए बर हमला संगी हो जैव उर्वरक के उपयोग करना पड़ी। एजेक्टोबैक्टर है, राइजोबियम है, PSB है, नीलहरी शैवाल है, एजो स्पेरिलियम है, ऐसे कई प्रकार के संगवारी हो जैव उर्वरक है जिला उपयोग में हमन लाबो तो हमार प्रकृति में हमार जो माटी हावे वह सुरक्षित रही। माटी के जो प्राकृतिक रूप से कहना चाहिए वातावरण में अगर हम देखथन तो pH मान है जो बिगड़त जाते, ओमा अगर हमन जैव उर्वरक ला डालथन तो संगवारी हो संतुलित होते, कार्बन के मात्रा हर भी बढ़ते और पानी जो रहते संगवारी हो ओहर भी का होते, एक अताधुरा उपयोग करबो तो ओकर प्रदूषण होए के संभावना रहते, ओमा जो गुण होना चाहिए गुण अच्छाए हो जाते, एकर से पौधा के वृद्धि और विकास भी प्रभावित होते। और ज़्यादातर हम देखथन कि जो यूरिया आते अगर उपयोग करथन तो पानी में बह के भी बहा जाते, कुछ और वाष्प के रूप में भाग जाते और बहुत ही कम मात्रा पौधा वाला ग्रहण कर पाते। एकर बर संगी हो कि तरल नैनो यूरिया के उपयोग करे बर भी कहा थे, अगर ऐसे नहीं कर पाता तो आप मन राइजोबियम जीवाणु कल्चर है तेकर प्रयोग करिए तो भी बढ़िया रही फसल है और उकर से भी माटी में पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़त जाए, लागत में घटौती हुई और फसल के रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी बढ़ोतरी और वृद्धि होते। तो आप मन जैव उर्वरक ला बीज के उपचार में, माटी के उपचार में, जेरी के उपचार में तीनों रूप में कर सकता हो तो आप मन जैव उर्वरक के उपयोग जरूर करो और कार्यक्रम में आगू बढ़वो और सुनबो एक ठन सुख घर एकन के गीत ला।

0: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: संगवारी हो, देखा आज हवे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। वैसे हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के हमन मनाथन, लेकिन संगी हो आज हवे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। तो संगी हो युवा मन ला सशक्त करे बर, वैश्विक विकास में उनके योगदान ला बढ़ाए बर और उमन ला समानता के अधिकार मिले, ये सबों के उद्देश्य से संगवारी हो आज के दिन ला अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाए जाते। संगी हो देखा जोन देश में युवा ताकत रही थे वो देश के विकास भी अतका ज़्यादा होते। और वैसे देखा जाए तो संगवारी हो युवा मल्ला आज के दौर में आगू आना पड़ी, तभी देश के विकास संभव हुई। संग में संगवारी हो आप मल्ला हमन कहना चाहबो कि जन जन के स्वास्थ्य के रक्षा पर प्रधानमंत्री जन औषधि योजना हावे। तो एकर उद्देश्य ये हावे कि किफायती कीमत में सुघर गुणवत्ता वाला दवाई, मेडिकल डिवाइस जो है या चिकित्सा में उपयोग होने वाला शल्य सामग्री है और उपलब्ध होना है। संग में जेनरिक दवाई के ऊपर निर्भरता ला बढ़ाना, लोकप्रियता ला ओकर बढ़ाना। और बहुत लोगन मन के धारणा रहते कि संगवारी जेनरिक दवाई कम दाम में मिलते तो अतका ज़्यादा काम नहीं करे, ये सब जो कहना चाहिए भ्रम है तेला धुरिया करना और ओकर बारे में जागरूकता लाना भी एकर पर भी प्रयास किए जाते। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हावे तो वहाँ से भी आप मन दवा ले सका था और हृदय के रोगी हावा या कैंसर रोधी जो दवा है, मधुमेह रोधी है, संक्रमण रोधी है, एलर्जी रोधी है, अलग अलग प्रकार के दवा आते, तो आप मन वो दवा के उपयोग करके अपन आप स्वस्थ और मस्त रख सका था। आवा सुनी कार्यक्रम में संदेश ला।

0: मजबूरी। बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउन

चौपाल कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। आइए अब सुने फिल्म संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में लीजिए सबसे पहले सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में ये गीत।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मनोरंजन शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना ओटीटी ऐप वेव्स, इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग, चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स ओटीटी ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
2: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक का गाया गीत फिल्म आरजू से। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत अनु मलिक का है।

फिल्म आरजू के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
2: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
1: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया।

0: गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
1: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
2: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनने नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
0: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
3: अरे
4: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
0: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से है, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
5: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली है।
0: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ सिंह ने कहा

0: कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
1: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को जयपुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजी लॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांति मोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए, वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं।

0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

गुमनाम फिल्म का ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफी शारदा की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म थी पाकीज़ा। आपके लिए ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। फिल्म माय लव, मुकेश की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, दान सिंह का संगीत।

नौशाद की तर्ज शकील बदायूनी का लिखा गीत था, आशा भोसले की आवाज में। फिल्म थी दिल दिया दर्द लिया।

रवि की तर्ज थी शकील बदायूनी का लिखा गीत आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म थी चौदहवीं का चांद, गेटवे ऑफ इंडिया। इस फिल्म का गीत है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी का गाया।

राजेंद्र कृष्ण की का लिखा ये नगमा था, मदन मोहन का संगीत, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी के गाए, फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया के इस गीत के साथ ही श्रोताओं कार्यक्रम आपके लिए अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन, एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: यशोदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे यशोदा आ गई सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह,

0: आज के फनकार कार्यक्रम में बातें उस अभिनेत्री की जिसने फिल्मी दुनिया में अपने अभिनय, अपने नृत्य और अपनी खूबसूरती से हंगामा मचा के रखा था।
1: हवा हवाई।

चार बरस की थी श्रीदेवी जब उन्होंने बतौर बाल कलाकार थुनैवन नामक फिल्म में काम किया था और इसके बाद बतौर बाल कलाकार उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। वो बेबी श्रीदेवी के नाम से जानी गई और केरला स्टेट का बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट अवार्ड मिला और आगे चलकर कई तरह के अवार्ड्स श्रीदेवी को मिले। फिर फिल्म जूली आई जिसमें श्रीदेवी ने अभिनेत्री लक्ष्मी की छोटी बहन का किरदार निभाया था। सन 1976 बतौर हीरोइन श्रीदेवी ने फिल्म संसार में कदम रखा तमिल फिल्म मुंडुरु मोडीचू के जरिए। निर्देशक थे महान निर्देशक के बालचंदर। दक्षिण भारत में श्रीदेवी का एक बड़ा ही जबरदस्त और कामयाब करियर रहा है, लेकिन यहां हम उस करियर की बातें नहीं कर रहे, हमें तो भाई हिंदी फिल्मों की बातें करनी है। तो आइए सन 1979 पर आते हैं जहां श्रीदेवी ने बतौर हीरोइन हिंदी सिनेमा के पर्दे पर अपना पहला कदम रखा। फिल्म थी सोलवा सावन।

इसकी 4 साल बाद श्रीदेवी ने जैसे मुंबईया फिल्म जगत में तहलका ही मचा दिया। ये फिल्म थी हिम्मत वाला। श्रीदेवी के हीरो थे जितेंद्र।

फिल्म हिम्मत वाला ने जबरदस्त धमाका किया। इस फिल्म के गाने बहुत चले, ये फिल्म भी बहुत चली और इसके बाद श्रीदेवी भी हिंदी सिनेमा में खूब खूब चली। आइए उस दौर की कुछ और फिल्मों की बातें की जाएं। फिल्म तोहफा।

जिसके बाद जितेंद्र और श्रीदेवी की जोड़ी ने उस दौर की कुछ नामी फिल्मों में काम किया। एक

0: बम बम।
1: सन 1986 में श्रीदेवी ने फिल्म नगीना में काम किया। ये अपने दौर की एक बहुत ही कामयाब फिल्म बन गई।
2: मैं

मिस्टर इंडिया एक कल्ट फिल्म बन गई और इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई। इस फिल्म में श्रीदेवी ने ये गाना भी गाया था पर्दे पर, जिसे असल में गाया कविता कृष्णमूर्ति ने।

जब मिस्टर इंडिया की बात हो तो एक गाने की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। सरोज खान की कोरियोग्राफी वाला गाना फिल्म मिस्टर इंडिया।

0: सन 1989 में ही श्रीदेवी ने यश चोपड़ा की एक बेहद महत्वाकांक्षी फिल्म में काम किया। इस फिल्म पर यश चोपड़ा बरसों बरस से काम कर रहे थे और आखिरकार कई हीरोइनों के नाम की संभावनाओं की खबरों के बीच ये तय हो गया कि श्रीदेवी ही हैं यश चोपड़ा की
1: चांदनी। ओ मेरी चांदनी, तू मेरी चांदनी।
0: जब फिल्म चांदनी की बात हो तो भला इस गाने की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है।

सन 1992 श्रीदेवी के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण साल बन गया। इस साल श्रीदेवी अमिताभ बच्चन के साथ नजर आईं। फिल्म थी खुदा गवाह।

साल 1993, श्रीदेवी की एक ऐसी फिल्म आई जिसे बहुत लोग आज याद नहीं करते। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नाकाम रही थी, रूप की रानी चोरों का राजा। इसके बाद श्रीदेवी संजय दत्त के साथ धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म गुमराह में नजर आई। निर्देशक थे महेश भट्ट। सन 1994 में श्रीदेवी अनिल कपूर के साथ फिल्म लाडला में दिखी। सन 1997 फिल्म आई जुदाई। इस फिल्म में श्रीदेवी के साथ अनिल कपूर और उर्मिला मातोंडकर थे।

0: इसके बाद श्रीदेवी ने जाने माने प्रोड्यूसर बोनी कपूर से शादी रचा ली और वो फिल्म संसार से लंबे समय तक दूर हो गईं। लंबे समय तक फिल्म संसार से दूर रहने के बाद श्रीदेवी ने रुपहले पर्दे पर वापसी करने का मन बनाया। साल 2011 में आई गौरी शिंदे की फिल्म इंग्लिश विंग्लिश।
1: My wife's English is not very good, so...
2: May I? Meera, Kevin, this marriage is a beautiful thing. It is the most special friendship. Friendship of two people who are equal. Life is a long journey. Meera, sometimes you will feel you're less. Kevin, sometimes you will also feel you're less than Meera. Try to help each other to feel equal. It will be nice.
0: इस फिल्म में श्रीदेवी के अभिनय की बहुत तारीफ हुई।

0: श्रीदेवी की आखिरी फिल्म बन गई फिल्म मॉम, और इस फिल्म के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार देने की घोषणा की गई। लेकिन जब तक ये घोषणा आई, श्रीदेवी इस फानी दुनिया से अलविदा कह चुकी थी।
1: हाँ।

24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी का निधन हो गया। जब राष्ट्रीय पुरस्कार बांटे गए तो अपनी मां की ओर से श्रीदेवी की बेटियों ने और उनके पति बोनी कपूर ने इस पुरस्कार को ग्रहण किया।

जानी मानी अभिनेत्री श्रीदेवी अपने चाहने वालों की याद में हमेशा रहेंगी और बनी रहेंगी वैसी ही शोख, चंचल और खूबसूरत अदाकारा।

0: था अभिनेत्री श्रीदेवी पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: आप सुन रहे हैं विविध
1: विविध भारती कार्यक्रम, अभी आप सुन रहे थे। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करते हैं। FM 100.7 MHz पर आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है। आइए अब सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत। सबसे पहले सुनिए कुमार सानू और चित्रा सिंह को फिल्म विरासत में। गीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीतकार अनु मलिक।

0: साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
1: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
0: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
2: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
3: मनोरंजन, शिक्षा और सूचना की लहर अब आपके हाथों में। जी हाँ, प्रसार भारती का अपना OTT ऐप वेव्स। इसमें आपको एक ही जगह पर मिलेंगे 65 से ज्यादा चैनल, लाइव टीवी, ऑन डिमांड फिल्में, आकाशवाणी और दूरदर्शन के क्लासिक शोज और प्रोग्राम, डिजिटल रेडियो, गेम्स के साथ साथ ई बुक्स व ई शॉपिंग। चाहे तो फ्री और प्रीमियम कंटेंट के लिए सिर्फ 50 रूपए महीने से शुरू। तो आज ही अपने मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर डाउनलोड करें वेव्स OTT ऐप, फैमिली एंटरटेनमेंट की नई लहर।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
0: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठ कर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
0: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
0: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
5: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
0: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
5: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
0: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
5: आकाशवाणी से।
2: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद

गुलदस्ता कार्यक्रम में, क्षमा कीजिए, फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अमीन साबरी और फरीद साबरी को फिल्म सिर्फ तुम में। कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुने फिल्म रिफ्यूजी से। आवाजें हैं सोनू निगम और अलका याग्निक की, गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत दिया है अन्नू मलिक ने।

श्रेया घोषाल की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे जहर फिल्म का गीत। गीत लिखा था सईद कादरी ने और संगीत था अनु मलिक का।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। यह आकाशवाणी का रायगढ़ केंद्र है। लीजिए पेश है कार्यक्रम गुलदस्ता। सबसे पहले आइए सुने सोनू निगम की आवाज में कार्यक्रम का ये पहला गीत।

जाने जान, ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही। और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है। मेरे दिल की हर धड़कन

0: मजबूरी।
1: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
2: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
1: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
3: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध है फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: बजाज जनरल इंश्योरेंस साथ लाए हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना।
1: तभी तो कहते हैं हम, तभी तो रहते हैं हम, आपकी रक्षा में पूरी, आपकी रक्षा में पूरी।
0: कृषि और बीमा की जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आज ही हमारा फार्म मित्र ऐप डाउनलोड कीजिए।
2: गुलदस्ता कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुने, सोनू निगम का गाया हुआ।

अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह की आवाज़ में ये गज़ल। शायर थे नवाज़ देवबंदी। आइए अब सुने निखिल विनय का लिखा गीत सोनू निगम की आवाज़ में।

सोनू निगम के गाए इस गीत के साथ ही गुलदस्ता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये रायगढ़ केंद्र है, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक

0: राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
1: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय, पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
0: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है। गृहमंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वर्चुअल माध्यम से ग्रामीण ज्ञान सेतु ऐप लॉन्च किया। ये ऐप गुजरात के गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र के ग्रामीण पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। श्री शाह ने बताया कि करीब 63 गांवों में पुस्तकालय शुरू किए जा चुके हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से हैं, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय साधन सहयोग्यता छात्रवृत्ति योजना को वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। बैठक में योजना के प्रमुख पहलुओं और देश भर के विद्यार्थियों के हित में इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। कनाग लक्ष्मी राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजिन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किया। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारेशन पद्मा गिशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Parliament has passed the National Cooperative Development Corporation Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Cooperation